0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे आस्था नमस्कार।
2: नमस्कार, 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कुछ मुख्य खबरें जिन्हें हम विस्तार देंगे 6:30 बजे के बुलेटिन में। कैबिनेट ने फाइनेंस बिल 2026 और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल 2026 को राष्ट्रीय सभा में पेश करने की मंजूरी दे दी है। इन विधेयकों के माध्यम से बजट 2026-2027 में घोषित टैक्स, वित्तीय और आर्थिक कदमों को लागू करने के लिए कुलती राशि कानूनों में सुधार लाया जाएगा। कैबिनेट ने जानकारी दी कि हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक ग्रांट स्कीम आज से शुरू हो गई है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को सोलर पीवी सिस्टम लगाने की लागत का 25% अधिकतम 75,000 रुपये का ग्रांट मिलेगा। इस योजना के लिए बजट में 227 मिलियन रुपये का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट ने संस्कृत स्पीकिंग यूनियन की नई कार्यकारी परिषद के पुनर्गठन की जानकारी दी और गिरीश प्रसाद को परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मॉरिशस के निर्यातकों के लिए अच्छी खबर, मॉरिशस से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर नया अमेरिकी अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा। आगुआ के तहत शुल्क मुक्त सुविधा जारी रहने से लगभग 8 बिलियन रुपया के अमरीकी बाजार तक मॉरिशस की पहुँच बनी रहेगी। मॉरिशस में पानी की स्थिति अब भी चिंता का विषय, कम वर्षा के कारण जलाशयों और भूजल का स्तर लगातार घटता जा रहा है। फिलहाल ऊंचे इलाकों पर पानी की कटौती की जा रही है, लेकिन यदि सूखा जारी रहा तो अन्य इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। मॉरिशस में समुद्र में डूबने की घटनाएं अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। नेशनल कोस्ट गार्ड के अनुसार इस वर्ष अब तक 24 लोगों की समुद्र में डूबने से मौत हो चुकी है। विश्व डूबने से बचाव दिवस के अवसर पर लोगों से समुद्र में जाने से पहले सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की गई है। विदेश स्तर पर स्पेन की राजधानी माड्रिड के पास लगी भीषण जंगल की आग लगातार फैलती जा रही है। 3 अलग अलग आग एक साथ मिलकर बड़े जंगल की आग में बदल गई है, जिस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा चुका है। और अब चले जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर है और उत्तर पूर्व से आ रहे अस्थिर बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। आज दिन के दौरान

0: दिन मुख्य रूप से देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। शाम को केवल सेंट्रल प्लाटू और दक्षिण में रह रहकर बरसात हो सकती है, अन्य जगहों पर मौसम सुहाना रहेगा। रात को उत्तर और सेंट्रल प्लाटू पर बरसात होने की संभावना जताई जा रही है। तापमान न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 13 से 15 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और न्यूनतम तापमान शहरी इलाकों पर 17 से 19, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहेगी। समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:43 पर और सूर्यास्त 5:50 पर होगा।
1: Your news on NBC Play. NBC Play.
2: 819 kilohertz. ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: देवियों, सज्जनों, प्यारे प्यारे श्रोताओं, आप सभी को अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। सुबह के 6:03 हो रहे हैं और आप जुड़े हुए एएम टू रेडियो मॉरिशस के साथ 819 किलोहर्ट्ज़ पर। यह है एमबीसी का म्यूजिकल चैनल रेडियो मॉरिशस। सभी का हम स्वागत करते हैं और आपको बता दें कि आज शनिवार का दिन, शनिवार 25 जुलाई 2026। परमपिता परमेश्वर से ही प्रार्थना है कि आज की सुबह और आज का पूरा दिन आप सभी के लिए अच्छी तरह से बीते। आज आप जहाँ भी रहें खुश रहें, सलामत रहें। सो हमारा आपका साथ है अभी से लेकर 9 बजे तक और आशा करते हैं कि आप लोग हमारा साथ देंगे। और आपको बता दें कि आप हमें रेडियो पर सुन रहे हैं और हमारे रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर हमें देख भी रहे हैं। सो देखने और सुनने के लिए शुक्रिया। नई सुबह है आज, नए दिन का आगाज़ कीजिए नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ कि आज जो भी होगा अच्छा ही होगा। और होनी तो होकर रहती है दोस्तों, लाख कोशिश कर ले इंसान पर होनी तो होकर रहती है। सो बस यही प्रार्थना करते हैं, यही दुआ करते हैं कि हर किसी के जीवन में प्यार हो, खुशियां हो, बाहर ही बाहर हो। आज आप जहां भी रहे खुश रहे, मुस्कुराते हुए इस शनिवार के दिन को बिताए। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस प्रातकालीन सभा को। गहलोत राजपूत महासभा के प्रोग्राम के साथ, प्रोग्राम है वैदिक नाथ।

0: सम्राट राजपूत महासभा की ओर से आइए सुनिए
1: आनंद मंगल करूं आरती जय गायत्री माता
2: आनंद मंगल करूं
0: वैदिक नाद
2: जय गायत्री माता
3: ओम वेदः प्रीतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा ति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रोताओ, गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रस्तुत इस वैदिक नाद कार्यक्रम में पंडिता सुनीति देवी प्रसाद मुगुल का सादर सप्रेम नमस्ते और आप सभी लोगों का स्वागत है। विषय सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ। श्रोताओं, यज्ञ का अर्थ समर्पण, त्याग और परोपकार है। सभी उत्तम कर्मों से है। परमात्मा यज्ञ स्वरूप है। संपूर्ण सृष्टि यज्ञमयी है। प्रकृति के पंच तत्वों से बना यह मानव शरीर भी यज्ञमय है। ईयम्ते यज्ञः तनुः यजुर्वेद। वैदिक मान्यताओं को पुष्ट करने वाले वेदों के अलावा साहित्य में भी मनुष्य जीवन को यज्ञमय स्वीकार किया है। पुरुषो वाव यज्ञः छांदोग्य। यज्ञ की मुख्य भावना है स्वार्थ का त्याग या परोपकार का ग्रहण। अग्नि, जल, वायु एवं आकाश आदि सभी जड़ देव जिनके माध्यम से ईश्वर को अनंत शक्तियां अभिव्यक्त होती है, निरंतर स्वभाव से ही परोपकार में संलग्न रहते हैं। इन देवों से प्रेरित होकर मनुष्य का भी कर्तव्य है कि निरंतर परोपकारमय जीवन व्यतीत करें, केवल स्वार्थ सिद्धि का प्रयास

न करता रहे। साधना के द्वारा आंतरिक दिव्य दृष्टि को उत्पन्न करके सर्वत्र व्याप्त परमात्मा के सूक्ष्म कर्मों को देखना तथा परमात्मा के कर्मों से प्रेरित होकर स्वयं निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। सन्यासियों के अतिरिक्त ब्रह्मचारी, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ सभी के लिए अग्निहोत्र करना आवश्यक कहा गया है। ये तीनों आश्रमी यदि योगाभ्यास से संयुक्त होकर साधक बनने का संकल्प करते हैं तो भी उन्हें साधना के कारण अग्निहोत्र से छूट नहीं मिल सकती, क्योंकि प्रारंभिक साधक या गृहस्थ नर नारियों को यज्ञ कर्मकांड भी आत्मनिरीक्षण करने में सहायक होता है। वेदांत और मीमांसा के अनुसार वेद मंत्रों में बताई हुई कर्तव्य कर्मों अर्थात इष्ट और आपूर्त कर्मों की शिक्षा का नाम कर्मकांड है। इष्ट वे कर्म हैं जो किसी विशेष इच्छा को लेकर किए जाएं तथा जिनकी विधि वेद मंत्रों में दी गई हो, जैसे वरशेष्टि, पुत्रेष्टि आदि। आपूर्त वे सामाजिक कर्म हैं जिनकी आज्ञा वेदों में हो किंतु विधि लौकिक हो, जैसे पाठशाला, गौशाला, कूप, अनाथालय आदि बनवाना। इन कर्मों के तीन भेद हैं। पहला नित्य कर्म, जो नित्य करने योग्य है, जैसे पंच महायज्ञ आदि। दूसरा नैमित्तिक कर्म, जो किसी निमित्त के होने पर किए जाएं, जैसे पुत्र का जन्म होने पर जात कर्म संस्कार। तीसरा काम्य कर्म, जो किसी लौकिक या पारलौकिक कामना से किए जाएं, जैसे स्वर्ग या सुख विशेष की कामना से यज्ञ करना लौकिक कर्म है। निष्काम भाव से यज्ञ, दान तथा जप तप का अनुष्ठान करना पारलौकिक कर्म है। इनके अतिरिक्त कर्मों के दो और भेद हैं। निषिद्ध कर्म, जिनके करने का शास्त्रों में निषेध हो, जैसे जुआ, चोरी, हिंसा करना आदि। प्रायश्चित कर्म अथवा विधि विरुद्ध कर्म करने और वर्जित कर्म करने से अंतःकरण पर जो मलिन संस्कार पड़ जाते हैं उनको धोने के लिए जो कर्म किए जाए। किसी कामना की सिद्धि के लिए किए गए कर्मों का फल मनुष्य को अवश्य ही प्राप्त होगा तथा निषिद्ध कर्मों का आचरण भी अशुभ फल देगा ही। अतः सकाम तथा निंदित कर्मों से हटना आवश्यक है। इसी प्रकार नित्य और नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान भी नितांत आवश्यक है। साथ ही वेद मंत्रों में बतलाई हुई मन की वृत्तियों को सब ओर से हटाकर केवल एक तत्व परमात्मा के लक्ष्य पर ठहराने की प्रक्रिया का नाम उपासना है। पूर्व मीमांसा में कर्म कांडियों के लिए यज्ञों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उसी ब्रह्म की उपासना बताई गई। मीमांसा की मान्यता में कर्मों को यज्ञ तथा महायज्ञों में बांटा गया है, जैसा कि मनुस्मृति में कहा है, महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्ममीयम् क्रियते तनुः। अर्थात महायज्ञों तथा यज्ञों द्वारा ब्राह्मण शरीर बनता है अथवा ब्रह्म को जानने योग्य शरीर बनता है। जैमिनी मुनि के मत अनुसार यज्ञों से ही स्वर्ग अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यज्ञ की महिमा गीता में तृतीय अध्याय के नवम श्लोक से 15वें श्लोक तक विशेष कही गई है कि यज्ञ के अतिरिक्त अन्य कर्म लोगों को बंधन में डालते हैं। यज्ञ से वृद्धि होती है, यही इष्ट फलों का देने वाला है। यज्ञ से जो देवताओं को संतुष्ट करता है उस लोक को वर्षा आदि के द्वारा देवता संतुष्ट करते रहते हैं, यही कल्याण का मार्ग है। अन्न प्राणी मात्र का उत्पादक है। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से तथा यज्ञ वैदिक कर्म से उत्पन्न होता है। यज्ञीय कर्म वेद से उत्पन्न होते हैं और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं।

इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद् गीता में ईश्वर को प्रत्येक यज्ञ का अधिष्ठात्री देव माना गया है, जिसकी उस विशेष यज्ञ द्वारा उपासना की जाती है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी उसकी पुष्टि की गई है। जैसे

भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना की जाती है वह वास्तव में उसी एक ब्रह्म की उपासना है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने चारों वेदों के मूल भाव को संगत बताते हुए स्पष्ट किया कि ज्ञान प्राथमिक अवस्था है, ज्ञान के पश्चात कर्म की अनिवार्य अवस्था है, ज्ञान क्रिया के बिना भार रूप है, ज्ञान के बिना कर्म अंधा है और कर्म के बिना ज्ञान भी लंगड़ा है। अतः दोनों का सामंजस्य नितांत आवश्यक है। ज्ञान और कर्म के साथ उपासना के बिना कर्म बंधन का तथा ज्ञान आलस्य और रोग का कारण बनता है। अतः कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए उपासना से निष्काम भाव की उत्पत्ति होना आवश्यक है। उपासना क्रम में यज्ञ कर्म को उपयोग साधन बनाने की दृष्टि से अष्टांग योग तथा पंचकोश शोधन का क्रम अपनाया है। ज्ञानियों में कर्म के प्रति उत्साह उत्पन्न करने के लिए श्रेष्ठ कर्म यज्ञ आदि व परोपकार के कर्मों का महत्व प्रदर्शित किया है। शरीर के विकास के लिए स्थूल शरीर के आत्मा रूप प्राणों को बलवान बनाना योग्य है। प्राण पुष्टि के लिए प्राणायाम आदि क्रियाओं से पूर्व शुद्ध वायु की प्राप्ति के लिए यज्ञ की महती उपयोगिता है। यज्ञ के समय प्राणों की महता को स्मरण करते हुए प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा आदि प्राणमय कोश के मंत्रों से दी गई आहुतियां प्राण को निश्चित रूप से पुष्ट करेगी। प्राणों का तथा मन का घनिष्ठ संबंध है। मनोनिग्रह के लिए प्राण का संयम प्राणायाम से हो तथा मनोनिग्रह की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना रूप आहुतियां दी जाएं तो सिद्धि शीघ्र संभव है। अतः परमात्मा की स्तुति परक मंत्रों का संग्रह आहुतियों के साथ ईश्वर का चिंतन करने में विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकेगा। इसी प्रकार बौद्धिक विकास के लिए भी अग्निहोत्र विशेष रूप से किया जाए जो कर्तव्य कर्मों की विशेषता बढ़ेगी तथा संकल्प शक्ति का उदय होकर क्रियाओं का विशेष महत्व बनेगा। अर्थात प्रार्थना परक यज्ञ की आवश्यकता है। जन्म मरण चक्र से छूटकर मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए भाव बनाना और भावों को सिद्ध करने हेतु इन भावों एवं कर्मों को यज्ञ से सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। हमें इन्हीं उदात्त भावनाओं को लेकर एकांत में स्वाध्याय तथा यज्ञ करते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देती हूँ। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांतिश शांतिश शांति।

सुबह के 6:17 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं AM2 MBC रेडियो मॉरिशस चैनल प्रस्तुत है। अब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति। हाईलैंड्स ओवादारी लेन मौसलमों राहमिया PHCE मार्केटिंग और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 25 जुलाई को सुबह के 11:30 से शाम के 4 बजे के बीच ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सेबिन से भी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से

0: एक जरूरी विज्ञप्ति।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
0: सुबह के 6:18 हो रहे हैं, सभी लोगों का पुनः फिर से स्वागत करते हैं रेडियो मॉरिशस के लहरों पे। और चलिए अब हम प्रभु का नाम लेते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं। कहते हैं कि सुबह पूजा पाठ करने से हमारा जो दिन है अच्छी तरह से बीतता है। तो जब भी सुबह आप नींद से जागे, सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर को याद करें और इस महामंत्र का जाप करें, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इस मंत्र का जाप करने से आप देखेंगे कि आप पूरा दिन खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आए, पर अगर आप प्रभु का नाम सच्चे हृदय से लेते हैं, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान आपकी सहायता अवश्य करते हैं।

प्रिय श्रोताओं, सास अरवास के हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, देवी और सज्जनों, इस महामंत्र का जाप करते रहिए, इस भक्ति गीत को सुनते रहिए, गाते रहिए। ठीक 6:30 बजे आप सुनेंगे पूरा समाचार बुलेटिन, शोक समाचार, सूचना, मौसम का हाल। उसके बाद हमारी आपकी मुलाकात होगी सुबह के 7 बजे इसी चैनल पर, इन योर मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजारा।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: शनिवार 25 जुलाई की सुबह इस समाचार बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। ये नया दिन हम सभी के लिए शुभ हो। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। कैबिनेट ने फाइनेंस बिल 2026 और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल को राज्यसभा में पेश किए जाने की मंजूरी दी। आगुआ के तहत मॉरिशस के निर्यातकों को बड़ी राहत, अमेरिका ने मॉरिशन सामानों पर नए अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाए। मैक्सा ने अगुआ फैसले का स्वागत किया। संगठन का कहना है कि इससे मॉरिशन सामानों की प्रतिस्पर्धा क्षमता और मजबूत होगी। कम वर्षा से पानी की स्थिति चिंताजनक, CWA पानी की आपूर्ति मजबूत करने के लिए कई समाधान पर काम कर रही है। आज से हाउसहोल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक ग्रांट स्कीम शुरू। पात्र परिवारों को सोलर PV सिस्टम लगाने पर 25% तक का ग्रांट मिलेगा। स्पेन और फ्रांस में भीषण जंगल की आग का कहर, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सबसे पहले कल कैबिनेट की बैठक में लिए गए कुछ प्रमुख फैसले। फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल को मंजूरी। कैबिनेट ने फाइनेंस बिल 2026 और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल को राज्यसभा में पेश किए जाने की मंजूरी दे दी है। इन विधेयकों के माध्यम से बजट 2026-2027 में घोषित टैक्स, वित्तीय और आर्थिक कदमों को लागू करने के लिए कुल 83 कानूनों में सुधार लाया जाएगा। कैबिनेट ने जानकारी दी कि हाउसहोल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक ग्रांट स्कीम आज से शुरू। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को सोलर PV सिस्टम लगाने की लागत का 25% अधिकतम 75,000 रुपए तक का ग्रांट मिलेगा। इस योजना के लिए बजट में 270 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट ने मॉरिशस और सेशल्स के बीच मस्करीन प्लाटो के संयुक्त समुद्री क्षेत्र में भूकंपीय सर्वेक्षण कराने के एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ये पता लगाना है कि समुद्र के नीचे तेल और गैस के भंडार मौजूद हैं या नहीं। इससे दोनों देशों को ऊर्जा, वैज्ञानिक अनुसंधान और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट ने गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पानी और सीवरेज शुल्क में संशोधन को मंजूरी दे दी है। बढ़ती लागत को देखते हुए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के शुल्क में अधिकांश गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 से 25% तक वृद्धि

0: वृद्धि की जाएगी। कुछ विशेष श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए ये वृद्धि इससे अधिक होगी। कैबिनेट ने संस्कृत स्पीकिंग यूनियन की नई कार्यकारी परिषद के पुनर्गठन की जानकारी ली। गिरीश पर्सन को परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्थानीय स्तर की अन्य खबरों में मॉरिशस में इजिप्ट के राष्ट्र दिवस के अवसर पर कल शुक्रवार शाम क्यूपिप नगर पालिका में एक आधिकारिक समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम, सरकार के सदस्य, राजनयिक समुदाय के प्रतिनिधि और अन्य आमंत्रित अतिथि उपस्थित थे। इस अवसर पर मॉरिशस और इजिप्ट के बीच मित्रता और सहयोगपूर्ण संबंधों को रेखांकित किया गया। इजिप्ट के राजदूत अबीर अलम एल दीन ने विशेष रूप से प्रशिक्षण और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। उन्हें सुनते हैं।
1: Together we have successfully navigated logistic challenges and implemented effective training course through the Egyptian Agency of Partnership for Development and the Ministry of Public Service and the Ministry of Foreign Affairs. Looking ahead, we plan to offer specialized courses tailored to specific need to the Mauritian side, aimed to enhance skill and capacity that benefit both nations. This partnership reflects Egypt's commitment to fostering collaboration, advancing sharing development goals, and promoting unity and progress. In the domain of economic collaboration, we are diligently working to facilitate trade, attract investment, and develop joint ventures that foster inclusive growth. Our aim is to establish innovative and sustainable economic relationship to serve the interests of our both nations.
0: मॉरिशस के निर्यातकों के लिए राहत की खबर है। मॉरिशस से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर नया अमेरिकी अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। आगुआ के तहत टैरिफ मुक्त सुविधा जारी रहने से लगभग 8 बिलियन रुपए के अमेरिकी बाजार तक मॉरिशस की पहुंच बनी रहेगी। इससे एशियाई कपड़ा उत्पादक देशों की तुलना में मॉरिशस को बड़ा लाभ मिलेगा। कई महीनों तक वॉशिंगटन में चली कूटनीतिक बातचीत के बाद ये सफलता सामने आई है। देश मंत्री धनंजय रामफल का कहना है कि इस फैसले से देश के निर्यात सेक्टर को नई गति मिलेगी। उन्हें सुनती हैं।
2: L'ancienne arrive de 10%, fin arrive à sous expiration et tout de suite après le président fin met ban tarif qui variait de 10 à 12% lo une soixantaine de pays et parmi dans ce tout de ban compétiteur. Right? Alors c'est une bonne nouvelle qui nous n'a pas fait impacter par ça nouveau tarif là. Alors pour le moment tout nouveau produit qu'on exporte sur le marché américain paie aucune taxe qui est applicable. Alors c'est une bonne chose pour le secteur de l'export.
0: मॉरिशस के निर्यातकों के लिए राहत की खबर पर मेक्सा ने भी संतोष व्यक्त किया है। निर्यातकों का प्रतिनिधित्व करने वाले इस संगठन का कहना है कि आगुआ के तहत टैरिफ मुक्त सुविधा जारी रहने से मॉरिशन उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। मेक्सा की निदेशिका लीलावती राजमन जुसरी का कहना है कि ये फैसला देश के निर्यात क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्हें सुनते हैं विवरण
3: पिछले वर्ष के अप्रैल महीने से अमरीकी मंडी में प्रवेश करने के लिए हमें एक अतिरिक्त सीमा शुल्क चुकाना पड़ रहा है, पर कस्टम ड्यूटी के संदर्भ में मॉरिशस के लिए ये जीरो है क्योंकि हमारे पास आगुआ है। इसके बावजूद भी हमें ये टैरिफ चुकानी पड़ी थी जो 40% से घटकर 10% हुआ है। मतलब ये है कि पूर्व में जब हम अमेरिका की ओर सामान निर्यात करती थी हमें 10% शुल्क चुकानी पड़ती थी जो सामान के मूल्य पर आधारित था, पर आज क्योंकि कोई टैरिफ हमारे सामानों पर लागू नहीं है तो मॉरिशस बिना किसी टैरिफ तथा किसी भी कस्टम ड्यूटी शुल्क के अपना सामान अमेरिका की ओर भेज सकता है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे कॉम्पिटिटर्स के समक्ष जैसे बांग्लादेश, चीन, भारत इत्यादि, उनकी तुलना में हमारे लिए ये लाभदायक है।
0: मॉरिशस पे पानी की स्थिति अभी चिंता का विषय बनी हुई है। कम वर्षा के कारण जलाशयों और भूजल का स्तर लगातार घट रहा है। फिलहाल ऊंचे इलाकों में पानी की कटौती की जा रही है, लेकिन यदि सूखा जारी रहा तो अन्य इलाकों में भी इसका असर पड़ सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी पानी की आपूर्ति को और मजबूत बनाने के लिए कई समाधान पर काम कर रही है। CWA के महानिदेशक श्याम तानू को सुनते हैं विवरण।

0: l'acheter à coup.
1: Mauvacoin arrive à environ 43,5% qui est à l'homme et nous pas pour.
2: Mauvacoin mais Jalster Tiralis, Dashmapanchpatisha. तक पहुंच गया है जो चिंताजनक है और हम और अतिरिक्त पानी नहीं निकाल सकते हैं ना ही उपलब्ध 43.5% पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 20% से नीचे हम पानी नहीं निकाल सकते क्योंकि यहीं पर कीचड़ होता है। नवंबर से दिसंबर के महीनों तक हमें लगभग 20-23% पानी का संचालन करना होगा। फिलहाल कुछ महीने सामने और हैं पर यदि हद से ज्यादा पानी का इस्तेमाल होगा तो पानी का स्तर और भी घट सकता है। हमें नवंबर दिसंबर महीनों तक एक अत्यंत ही खराब स्थिति तक पहुंचने से बचने के लिए सावधानी बरतनी होगी। बहोल्स में भी स्थिति चिंताजनक है जहां 30% पानी पहुंच गया है यानी बारिश नहीं हो रही है और हमारे भूतल जलाशयों में पानी का स्तर बर नहीं पाया है। हमें अपने भूजल और बोरहोल्स पर निर्भर होना पड़ता है तथा जलाशयों पर भी हम निर्भर हैं। अतः हमें जिम्मेदाराना तरीके से स्थिति को संभालनी होगी।
0: मॉरिशस में समुद्र में डूबने की घटनाएं अभी चिंता का विषय बनी हुई हैं। नेशनल कोस्ट गार्ड के अनुसार इस वर्ष अब तक 24 लोगों की समुद्र में डूबने से मौत हो चुकी है। विश्व डूबने से बचाव दिवस के अवसर पर लोगों से समुद्र में जाने से पहले सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की गई है। कोस्ट गार्ड के अनुसार बुजुर्ग, दिव्यांग व्यक्ति और सुरक्षा चेतावनी की अनदेखी करने वाले लोग सबसे अधिक खतरे में रहते हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट Police Jean-Stéphane Bouti ko sunte hain.
3: Quand un djimoun se redonne de l'eau, c'est pas son milieu naturel.
2: जब एक व्यक्ति समुद्र के भीतर जाता है तो उसे ज्ञात होना चाहिए कि ये उसके लिए एक सामान्य पर्यावरण नहीं होता है। उसे अच्छे स्वास्थ्य में होना चाहिए, बिना नशा किए जाना चाहिए तथा किसी भी दवाई के प्रभाव में नहीं होना चाहिए, ना ही उसे कोई दवाई लेना चाहिए तथा ना ही वह दिल की बीमारी का इलाज कर रहा हो, क्योंकि बाद में पता चलता है कि कोई व्यक्ति दिल की समस्या से ग्रस्त है और वह पानी में बिना निगरानी के गया है। सबसे पहले जो व्यक्ति तैरने के लिए समुद्र में जा रहे हैं उसे स्वस्थ होना चाहिए और मदद के लिए एक वयस्क का होना अनिवार्य है। संदेश यही है कि देश के चारों ओर जहां तैरने के लिए सुरक्षित जगह बताया गया है वहां ही तैरना चाहिए। ये एक निरंतर जागरूकता अभियान है कोस्ट गार्ड जो चला रहा है। विशेषकर हम उन लोगों की ओर बढ़ते हैं जो खतरे में पड़ सकते हैं। यदि कोई टोली शराब पी रही हो या बच्चे मौजूद होते हैं तो अभिभावक से हम बातचीत करते हैं।
0: स्पेन की राजधानी माड्रिड के पास लगी भीषण जंगल की आग लगातार फैल रही है। 3 अलग अलग आग एक साथ मिलकर बड़े जंगल की आग में बदल गई है जिस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। हालात को देखते हुए स्पेन सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया और लगभग 30,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उधर दक्षिण पश्चिमी फ्रांस में भी जंगल की आग तेजी से फैल रही है जहाँ 1,10,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है। आग अब बोडो की ओर बढ़ रही है और राहत कार्य में सेना की भी मदद ली जा रही है। चले जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर है और उत्तर पूर्व से आ रहे अस्थिर बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करते रहेंगे। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान देश भर में धूप खिली रहेगी और मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर बाद सेंट्रल प्लाटो और दक्षिण में रहकर कुछ बरसात हो सकती है। अन्य जगहों पर मौसम सुहाना रहेगा। रात को विशेषकर उत्तर और सेंट्रल प्लाटो पर बादल घिरे रहेंगे और संभावना है कि वर्षा हो सकती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 13 से 15 और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहली इलाकों पर 17 से 19, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:43 पर, सूर्यास्त 5:50 पर। तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। टेक्निकी सहायक हमारे साथ रहे कादिर, उनको हम धन्यवाद।

0: देती हैं। बढ़ती हैं शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। नंबर 12 सर सिलिकू एंटेल्म फॉरेस्ट साइड मी 70 साल की 70 इयर्स ओल्ड की मिसिज विजयंती माला तगाली की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम रूपन, लोग उन्हें माला के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 3:15 उनके बेटे सचिन तगाली के मकान फॉरेस्ट साइड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आली भ्रियों वाकुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 3:15 PM। इंटरनेशनल रोड रिविया जुरान पॉमे 89 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पुष्पा सोत्यापा की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सूर्या के नाम से अधिक जानती थी। उनकी अर्थी आज उठाई जाएगी और समय के और स्थान के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा। रॉयल रोड तेहरूज में 90 ईयर्स ओल्ड के धमन प्रसाद बिसेसर की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 3:00 उन्हीं के मकान तेहरूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वह मौसों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 3 PM। शिवाला रोड मौदुसखालिया में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के रविंद्रनाथ ओजोबा की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें मीका के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उन्हीं के मकान मौदुसखालिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 3 PM। तमिल टेम्पल रोड गुडलैंड्स में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के सुबीर तुगाबाली की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12:00 उन्हीं के मकान गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट नून। मोंप्लेजिया पॉपलेमूसेज में 86 साल के कसम उदेगत का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान पॉपलेमूसेज से निकाल कर दफनाने के लिए पॉपलेमूसेज का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। करमताली रेन लारू कुवों क्यूपिप में 69 ईयर्स ओल्ड के जनाब मोहम्मद इकबाल दुरगोही इंतकाल कर गए हैं। लोग उन्हें इकबाल के नाम से ज़्यादा जानते थे। उनका जनाजा आज दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान क्यूपिप से निकाल कर दफनाने के लिए बीघा का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। जुक्रे रोड नोत्र दाम में 75 ईयर्स ओल्ड की सलीमा बीबी सुब्राची इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज सुबह के 11 बजे उनके दामाद फरदीन महबूब के मकान जुक्रे रोड नोत्रदाम से निकाल कर दफनाने के लिए बुआ मौशों का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। स्कूल इन बुआदवाजो पुद्रदो विलेज में 40 साल की 40 ईयर्स ओल्ड के श्री राजीव राधाई की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2:30 उनके भाई सनन राधाई के मकान पुद्रदो विलेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2:30 PM। मोचरी हाउस सर अनिरुद्ध जगन्नाथ अस्पताल से 75 ईयर्स ओल्ड के वेंकटाचार्य लिंगालु की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें किसना के नाम से ज़्यादा जानते थे। उनके रथी आज सर अनिरुद्ध जगन्नाथ अस्पताल से उठाई जाएगी और अंतिम संस्कार के लिए सेकोस्टॉन सैंपिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2:30 PM। महात्मा गांधी रोड पिछिराफ्री में 58 ईयर्स ओल्ड के महावीर दिहोल की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें जॉन के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 10 बजे उनके भाई विशाल दिहोल के मकान पिछिराफ्री से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोमास्काल की शमशान भूमि ले जाए।

जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। मुस्के रोड रोजपेल में 95 साल की 95 ईयर्स ओल्ड की पुष्मावती भरत की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम राम जावन, लोग उन्हें इंद्रावती के नाम से ज्यादा जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे बल्कि आज दिन के 11 बजे उनके बेटे ससीराज भरत के मकान मुस्क रोड रोजबल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारे जाने की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। लामारे ओकुले में 67 ईयर्स ओल्ड के श्री धनराज बुलोक की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें दान के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकी पत्नी नीता बुलोक के मकान ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। रिविया बाटिस रोड ला लोगा सैंपियामे 61 साल की 61 ईयर्स ओल्ड की विमला गंगा मिसुन की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम बीफन, लोग उन्हें स्वतिका के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे बल्कि 1 बजे आज दिन के 1 बजे उन्हीं के मकान लालोगा सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई ब्लॉश की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रेलवे रोड रिविया जुपोस में 67 साल की 67 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती ललिता बीर सिंह की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम गणपत, लोग उन्हें बिमला के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे गिरीश बीर सिंह के मकान रिविया जुपोस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: La Global Healing Foundation vous invite pour son prochain événement Hanuman Katha, The Ultimate Devotion. Une session de Kundalini Awakening and Healing à Rivière des Anguilles, à côté du collège Rivière des Anguilles SSS, en face de la gare. Les prières se tiendront du samedi 25 juillet au jeudi 30 juillet par le Guru Sri Suraj Bihari. Vu la grande foule qui est attendue pour cette unique célébration, vous êtes prié de vous rendre sur les lieux à 19h15 précise pour vous assurer d'une place.
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: सुबह के 6:51 और 5 सेकंड हुए हैं।
3: स्पोर्ट्स न्यूज़
2: सुनने वाले को विकास रामधेनु का प्यार भरा नमस्कार आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। ये स्पोर्ट्स बुलेटिन शुरू करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों के साथ, जिसका ये संस्करण, ये एडिशन कल से स्कॉटलैंड में आरंभ हुआ और कल इसका पहला दिन भी था। परसों इसका उद्घाटन समारोह था। मॉरिशस के कई एथलीट्स एवं खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कल बता दें कि हमारे दो मुक्केबाजों ने पहले राउंड में भाग लिया और दोनों की जीत हुई। अब कल रविवार को फिर से ये दो रिंग पर उतरेंगे। एक तीसरा बॉक्सर भी मॉरिशस के लिए लड़ने के लिए उतर रहा है। कल संडे को रविवार को तीन बॉक्सर, तीन मुक्केबाज मॉरिशस का प्रतिनिधित्व करेंगे। एक पहले राउंड में दो मुक्केबाजों की जीत हुई, हार्दिक बधाई। बता दें कि कुल मिलाकर अभी ऑस्ट्रेलिया ने अब तक पहले दिन के खेलों के बाद 6 स्वर्ण पदक हासिल कर लिए हैं। नाइजीरिया दूसरे स्थान पर है 3 स्वर्ण पदकों के साथ और मेज़बान देश स्कॉटलैंड ने अब तक 2 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। इंग्लैंड ने अब तक केवल 1 गोल्ड मेडल हासिल किया है। इन सब के बारे में हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल वर्ल्ड कप तो समाप्त हुआ, अब प्रीमियर लीग की तैयारी जारी है। अखा यूरोप में चैंपियनशिप जारी की गई है। स्कॉटलैंड में स्कॉटिश प्रीमियर लीग और सेकंड डिवीजन सब आरंभ हो चुका है और इंग्लैंड की टीमों की ओर से फ्रेंडली मैचों का सिलसिला जारी है। कल मैनचेस्टर यूनाइटेड के युवा लाल भूतों ने रोजेनबर्ग को 5-0 से परास्त किया, यानी रोजेनबर्ग 0 मैनचेस्टर यूनाइटेड 5, एक पहला

0: मैच रेक्साम के खिलाफ 1-0 से हारने के बाद कल इनकी जीत हुई 5-0 से। अब अगला मैच 1 अगस्त को खेला जाएगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, फिर 8 अगस्त को पेरिस सेंट जर्मेन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, 15 अगस्त को एसी मिलान के साथ मुकाबला, और शनिवार 22 अगस्त को प्रीमियर लीग की शुरुआत जब मैनचेस्टर यूनाइटेड एवे जाएगी हल सिटी के मैदान पे। बता दें कि आज रात लिवरपूल के द रेड्स US2 में अपना पहला मैच खेलेंगे सन्डरलैंड के विरुद्ध, फिर बाकी मैच सप्ताह के दौरान खेले जाएंगे। सो लिवरपूल वर्सेस सन्डरलैंड, ये लाल भूतों लिवरपूल के द रेड्स के लिए पहला मैच होगा आज रात, बल्कि कल सुबह ये USA में ये मैच खेला जाएगा। और लिवरपूल की बात हुई तो उसके पुराने कोच यूर्गन क्लॉप ने जर्मनी के साथ नेशनल कोच के रूप में अपना राज शुरू करने से पहले ही छोड़ने की धमकी दी है। उन्होंने कल प्रेस वालों को धमकी दी कि यदि उन्होंने उसके परिवार को परेशान करना नहीं छोड़ा या उस इन सब में घसीटा तो वो सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। गुलियन नागेल्समान की जगह पर उसको रखा गया है और उसका पहला मैच अब 24 सितंबर को है नेदरलैंड्स के विरुद्ध, नेशन लीग्स का ग्रुप स्टेज होगा और ये यर्गन क्लॉप का पहला मैच होगा जर्मन नेशनल टीम के साथ। इस बीच पेप गार्डियोला ने इटली का मैनेजर बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। अभी सप्ताह के दौरान इटालियन फुटबॉल फेडरेशन ने कहा था कि बातचीत जारी है यर्गन क्लॉप के साथ नहीं बल्कि पेप गार्डियोला के साथ, और पेप ने बता दिया कि वो ये कोचिंग रोल नहीं निभाएगा। सो बता दें कि इस बीच कार्लो एंसेलोटी को भी ये प्रस्ताव दिया गया था, उन्होंने भी ठुकरा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आंद्रेया पियोलो ही इटली के कोच बनने के बहुत ही प्रबल दावेदार है। जहां तक तादेज पोगाचार का सवाल है, बात कर रहे हैं टू डे फ्रांस साइकिलिंग प्रतियोगिता की, और तो तादेज पोगाचार ने कल अपनी 5वीं जीत हासिल की इस वर्तमान टू डे फ्रांस में, और कल ये 19वां रेस था। इसको इसका मतलब है कि अब केवल 2 रेस बचे हुए हैं और वो कम से कम 7 मिनट आगे हैं। सो बहुत ही करीब हैं तादेज पोगाचार ये टू डे फ्रांस साइकिलिंग प्रतियोगिता जीतने के लिए। सो इतना सब कुछ फुटबॉल और साइकिलिंग को लेकर। बता दें कि क्रिकेट में भारत का मुकाबला कल रविवार को जिम्बाब्वे से होगा, दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। पहले में भारतीय टीम की जीत हुई थी, अब दूसरा खेला जाएगा कल। जहां तक फुटबॉल में रोड्री का सवाल है, जो बना है वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, उसके नए कोच मारेस्का ने कहा कि अभी सोमवार को ही उसकी सर्जरी होने वाली है, लेकिन उन्होंने इस बात को एकदम ठुकरा दिया कि रोड्री रियल मैड्रिड में जाने वाला है, हालांकि वहां पर उसका नाम गुनगुनाया जा रहा है। तो ये थी खेलकूद संबंधी चंद जानकारियां। इस समय सुबह के 6:56:27 हुए हैं। आज्ञा दीजिए, नमस्कार और शुभ दिन।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

Nous travaillons l'avenir. Tu as le Ministry of Labour and Industrial Relations, साथ में MBC के मिलजुल सहयोग से पेश करल जात बा. सेक्टर एग्रीकल्चर नेचर मैजिक एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी जोन दुभार रोड न्यू ग्रोव में है खोजत वंजा फॉर्म वर्क और एक खातिन आप लोग सकबा फोन करे एप्लीकेशन खातिन सेकंड से 7639 काउंट पर अर्जी भेजे के आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2026. सेक्टर एग्रीकल्चर ऑटोरियम फ्लोरिकल्चर मॉरिशस लिमिटेड जोन सावान रोड नोवेल फ्रांस में है खोजत वंजा ग्रेड वन लेबर और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क जे एस सी ले पहड़ लेबा एप्लीकेशन खातिन कॉल करिए 6 7 7 2 7 9 पर अर्जी भेजे के आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2026. सेक्टर एग्रीकल्चर डब्ल्यू जी डब्ल्यू फार्मिंग कंपनी लिमिटेड जोन शेनफिल्ड रोड इल्डाम रिविया जी खोप में है खोजत वंजा पोल्ट्री फार्मर जे फॉर्म थ्वा ले पहड़ लेबा एप्लीकेशन खातिन कभी भी सकबा जा आप जाए डब्ल्यू जी डब्ल्यू फार्मिंग

कंपनी लिमिटेड शेनफील्ड रोड इलदाम गविया चौफा और एजेंसी भेजे की आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2026। और साथ में देखे जा मुगी ट्रैक मोटोज लिमिटेड जो मौसलमा लामाई बुवालों में है खोजत होवन जा एग्रीकल्चरल वर्क और एप्लीकेशनों खातिन फोन करिए 5923-3845 पर अर्जी भेजी की आखिरी तारीख 26 जुलाई 2026। सेक्टर बेकरी वीर एस जी एंटरप्राइज लिमिटेड जुन रॉयल रोड बनाके में है खोजत होवन जा केशिया जिन 1 बरिस के लिए एक्सपीरियंस बा और ड्राइवर जिनका 5 बरिस के लिए एक्सपीरियंस है अर्जी भेजे की आखिरी तारीख है 30 अगस्त 2026। सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग एमके सिलुआ एंड सन्स लिमिटेड जो डियरपोल लेन न्यू ग्रोव में है खुजत वंजा कैबिनेट मेकर जिनकर पास 6 या 12 महीना के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन का दिन कॉल करिए 67 67 64 पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026। सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ही देखी ला जाए शर्मा एल्यूमिनियम एंड मेटल कंपनी लिमिटेड जो जुन एवेन्यू गांधी रोड बनमिया में है खुजत वंजा एल्यूमिनियम फैब्रिकेटर जिनका 2 बरिस के एक्सपीरियंस एप्लीकेशन खातिन फोन करिए 4136-6060 पर या तो फिर सीधा जाइए शर्मा एल्यूमिनियम एंड मेटल कंपनी लिमिटेड जिन एवेन्यू महात्मा गांधी रोड बनमिया में है और जी भेजी की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026। इधर एम एस एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जिन एमिताज ब्रांच रोड कौफुखो में है खुजत वंजा वेल्ड ग्रेड 1 जिकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस साथ में चहला ड्राइवर 5 को जिनकर 2 बरिस के लिए एक्सपीरियंस है एप्लीकेशन खातिर अपन सीवी विदा करिए बाय मेल ऑन msaluminium725@gmail.com अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 20 जुलाई 2026। और द वेल व्यू लिमिटेड जो रॉयल रोड वेल में है खोजत वंजा कारपेंटर जिनका 3 बरिस के एक्सपीरियंस है एप्लीकेशन खातिर फोन करिए 2nd 7th 2014 पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2026। तुलसी फर्नीचर लिमिटेड जो पिची इशुमे बिलियरविया चश्मे है खोजत वंजा अपहोल्स्टर जिकर 3 बरिस के एक्सपीरियंस है एप्लीकेशन खातिर फोन करिए 419-01-47 पर या 52-55-23-03 पर या 57-73-84-54 पर कभी भी आप ही सकब जाइया तुलसी फर्नीचर लिमिटेड जो पेची शिमे बिले रिवियर शेष में है अर्जी भेजी की आखिरी तारीख है 16 अगस्त 2026। सेक्टर रिटेल ट्रेड एच बी शनु होम डेको कंपनी लिमिटेड जनरल रोड पोंकोलविल नोवेल फ्रांस में है खोजता शॉप मैनेजर जे एस सी ले पहाड़ लेबा और स्टोर कीपर जे एस सी ले पहाड़ लेबा एप्लीकेशन खातिर अपन सीवी विदा करिए फरदीन शनु 86@gmail.com पर अर्जी भेजी की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026। स्टैनवुड एंटरप्राइज लिमिटेड जो कदाहू लेन सेंट जूलियन विलेज में है खोजता प्राइवेट कार के ड्राइवर जिनका 2 बरिस के एक्सपीरियंस और सेल्स पर्सन का 4 बरिस के एक्सपीरियंस एप्लीकेशन खातिर फोन करिए 5799-9087-9087 पर या तो फिर कभी भी आप जेब स्टैनवुड एंटरप्राइज लिमिटेड कदाहू लेन सेंट जूनियर विलेज अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 16 अगस्त 2026। आसिन एंटरप्राइज लिमिटेड जो फ्लॉम्बॉयन स्ट्रीट शेनफील रोड रिविया जो पर में है खोजता शॉप असिस्टेंट जे एस सी ले पहड़ लेबा 2 बरिस के एक्सपीरियंस है स्टोर रूम अटेंडेंट जे एस सी ले पहड़ लेबा 2 बरिस के एक्सपीरियंस बा कोल्ड रूम अटेंडेंट जे एस सी ले पहड़ लेबा 2 बरिस के एक्सपीरियंस बा और बेकरी ऑपरेटर जे एस सी ले पहड़ लेबा और 2 बरिस के एक्सपीरियंस है एप्लीकेशन खातिर कभी भी सक बजाय आसिन एंटरप्राइज लिमिटेड फ्लॉम्बॉयन स्ट्रीट शेनफील रोड रिविया जो पर अर्जी भेजी की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026। और गैलरी फुगेबक्स लिमिटेड जो रिविया जो पर में है खोजत हवन जा ग्रेड 2 कारपेंटर जिपकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस बा और MITD के CHV का भी बा एप्लीकेशन खातिर कभी भी आप सकब जाएगा रिफो गेवर्क्स लिमिटेड और आल रोड रिविया चुरों पर अर्जी भेजी की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026। सेक्टर कंस्ट्रक्शन ए जोफिराली एंटरप्राइज लिमिटेड जिन पिची इशुमे बेलिया रिविया सेश में है खोजत वंजा इलेक्ट्रीशियन जिनकर 4 या 5 बरिस के एक्सपीरियंस बा मेसन जिनका 4 या 5 बरिस के एक्सपीरियंस बा कारपेंटर जी सी बी ऑपरेटर एक्सकावेटर ऑपरेटर जिनका 4 या 5 बरिस के चैनल एक्सपीरियंस रहे के प्लम्बर जिनका 4 बरिस के एक्सपीरियंस बा और टाइल सेटर जिनका 4 बरिस के चैनल एक्सपीरियंस रहे के एप्लीकेशन खातिर कॉल करिए 2nd 7th 7th 7th पर या कभी भी आप सक बजाइए जोफिराली एंटरप्राइज लिमिटेड पिची शुमे बेले रिविये शेष अर्जी भेजी की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026। क्लीनिंग सर्विसेज मेजिन हाइजीन कंपनी लिमिटेड जो रस्टम रोड बिलिया रिविया सेश में है खोजत वंजा क्लीनर जिनका 1 बरिस के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिर फोन करिए

0: 57 59 88 43 पर या तो फिर आप सकबजा सीधे जाए मेजिन आईजीन कंपनी लिमिटेड रस्टम रोड बिलिया रिवियर सेश अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026। सेक्टर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेलेस्ट टेलीकॉमर्शियस लिमिटेड जो एमिताज रोड सैकोपाको दो में है खोजा थवंजा नेटवर्क स्पेशलिस्ट जे बी एस सी कलेबा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और 3 बरिस के एक्सपीरियंस बा आई टी मैनेजर जे बी एस सी कलेबा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और 3 बरिस के एक्सपीरियंस बा और यहाँ एक्सपर्ट पाकू डिजिटल क्लियो खोजा थवंजा जे बी एस सी कलेबा मार्केटिंग में और 5 बरिस के एक्सपीरियंस बा शॉर्ज दे मार्केटिंग ए प्रोजी बी टू सी बी एस सी मार्केटिंग 3 बरिस के एक्सपीरियंस टाइला अकाउंट रिसिवेबल असिस्टेंट जिकर डिप्लोमा बा और 2 बरिस के एक्सपीरियंस बा साथ में छाला टेक्नीशियन सपोर्ट क्लाइंट जे डिप्लोमा कर लेबा 1 बरिस के एक्सपीरियंस बा और शॉर्ज दे क्लियोटेल जे एच एस सी ले पढ़ लेबा 1 बरिस के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिर अपन सीवी सकबा विदा करे बाय मेल recruitment.maurice@celeste.fr पर अर्ज बेचे की आखिरी तारीख 28 अगस्त 2026। और इधर सेक्टर हॉस्पिटैलिटी हिल्टन मॉरिशस रिजॉर्ट एंड स्पा जो वुलवर्थ फ्लैक में है खोजा थवंजा स्टीवर्ड रूम या पब्लिक एरिया अटेंडेंट हाउस कीपिंग सुपरवाइजर जे एस छेसी ले पहड़ लेबा शेफ दिपाची कुक स्टोर कीपर एडमिन असिस्टेंट इंजीनियरिंग के और साथ में प्लम्बर कारपेंटर या इलेक्ट्रिशियन इनकम ऑडिटर जे एच एस सी ले पहड़ लेबा डिप्लोमा बा या डिग्री बा एल एंड डी कोऑर्डिनेटर जे एच एस सी ले पढ़ ले बाय डिप्लोमा या डिग्री बा रिजर्वेशन एजेंट ग्रुप्स कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स एग्जीक्यूटिव जूनियर सुमिलिये साथ में चहला ब्रेवरेज मैनेजर उतेस या केशियर वेटर या वेट्रेस हेड वेटर बामन बस सुपरवाइजर रेस्टोरेंट सुपरवाइजर एप्लीकेशन खातिर कॉल करिए 403000 पर या अपन सी वी विदा करिए mauritius.recruitment@hilton.com पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 30 जुलाई 2026। दुदुन स्नैक कंपनी लिमिटेड जोन भरसवार रोड बनाकई में है खोजा थवंजा कुक जेकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बा और असिस्टेंट कुक जेकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बा एप्लीकेशन खातिर कॉल करिए 58 25 22 68 पर या तो फिर जइए सीधे दुदुन स्नैक कंपनी लिमिटेड भरसवार रोड बनाकई अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 16 अगस्त 2026। प्राइवेट हाउस होल्ड देखी ला जब वैकेंसी बा हाउस होल्ड वर्कर या गार्डनर के रेजों हॉप पॉम्पलेमूस एप्लीकेशन खातिर कॉल करिए गुडलैंड्स के ई आई सी में 282-59-17 पर या 282-59-18 पर और बेबी सीटर के वैकेंसी बा रोजबेल में एप्लीकेशन खातिर कॉल करिए रोजबेल ई आई सी 627-48-33 पर त ई रहल नू थ्रावाई नू लावेनियर जोन तोहर खातिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस साथ में एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से पेश करल गल।
1: एमबीसी रेडियो मॉरिशस की लहरों पे आप सभी को अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर आप लोगों का हम स्वागत करते हैं और अब लीजिए सुनिए एक जरूरी विज्ञप्ति। ग्लोबल हीलिंग फाउंडेशन द्वारा श्री हनुमान कथा का आयोजन किया जा रहा है रवि जोंगी एस एस एस कॉलेज के बगल में, जहाँ यह कथा हो रही है आज शनिवार 25 जुलाई से लेकर गुरुवार 30 जुलाई तक रात के 7:30 बजे। इस कथा को प्रस्तुत करेंगे श्री एच एच श्री सूरज बिहारी जी। जनता आमंत्रित है। सो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक जरूरी विज्ञप्ति।
2: एक हसीन सफर रेडियो मॉरिशस।
1: सुबह के 7:07 हो रहे हैं, सभी का हम स्वागत करते हैं और बेशक अब लीजिए सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ। सो कैटरबोन एवेन्यू डेकॉन पार्टी रूट रॉयल बेल रोज चाइनीज एम्बेसी के रहने वाले के आसपास में रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 25 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से दोपहर बार के 2:30 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। फिर सेंट क्वा रू मारियामेन टेम्पल डेबुशे लातानिये लाप्रेरी कैनाल बाथर्स्ट हिगिनसन और पोर्टर अली पी एल अवाल और उदीन लेन

0: शनिवारी लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 25 जुलाई को सुबह के 11:30 बजे से दोपहर बाद के 2:30 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और लावंटू पेटी रेट्रेट ग्रैंड रेट्रेट पोंट ब्लांक बोन अक्यूल बेलव्यू अलेंडी और साहातू पोल्ट्री एमटेल लावंटू इस्कन बोन अक्यूल और पोस्ट ऑफिस बोन अक्यूल के आसपास में रहने वाले लोगों को बताया जाता है कि कल रविवार 26 जुलाई को सुबह के 11:30 बजे से शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और कौन शाहलू शमे गए रिविया दिगाली के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 26 जुलाई को दिन के 9 बजे से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और फॉरसाइड मौसल मोडुमा मऊजी रोड रॉयल रोड 16 मील फॉरसाइड और आसपास में जो गलियाँ हैं वहाँ के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 26 जुलाई को सुबह के 6 बजे से माफ़ कीजिए फिर से सुन लीजिए अभिव्यक्ति 16 मील फॉरसाइड मौसल मोडुमा मऊजी रोड और रॉयल रोड 16 मील फॉरसाइड और आसपास में जो गलियाँ हैं वहाँ के लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 26 जुलाई को सुबह के 8 बजे से 11 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। फिर 16 मील फॉरसाइड मौसल मोडुमा के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 26 जुलाई को दिन के 10 बजे से दिन के 1 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे बिना पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। इसी बीच सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियां।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

जहां नई सुबह की शुरुआत कीजिए एमबीसी रेडियो मॉरिशस के साथ। सुबह के 7:11 हो रहे और ठंड का मौसम है यहाँ पर, तो काफ़ी ठंड हो रही है मोका में। और ऐसा भी अनुमाना गया है कि बहुत सारे इलाकों में कल रात से काफ़ी ठंड पड़ी है। जी हाँ, सर्दी का मौसम है, ऐसा तो होता रहता है। सो मौसम चाहे कैसा भी क्यों ना हो, हम आपका साथ दे रहे हैं। नमस्ते जी, सुस्वागतम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग मॉरिशस। सुबह का नजाना योर मस्त मॉर्निंग शो, अभी से लेके दिन के 9 तक चंद प्यारे प्यारे गाने, लवली म्यूज़िक, मीठी मीठी बातें। और आशा करते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हमें फॉलो कर रहे हैं हमारे टिकटॉक पेज पर भी। रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर हम लाइव हैं दिन के 9 तक, और साथ में हम रेडियो की लहरों पर भी हैं। रेडियो मॉरिशस 819 kHz। अगर आप ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.mbcradio.tv और क्लिक करें लिसन AM2 रेडियो मॉरिशस। जी हाँ दोस्तों, मौसम तो बड़ा ही प्यारा है, धूप मुस्कुरा रही है और अनुमान लगाया गया है कि आज दिन को काफ़ी गर्मी होगी। जी हाँ, रात की सर्दी के बाद दिन की गर्मी, क्या बात है, क्या बात है। और आज तो सैटरडे है, सो कुछ लोग लेजी फील करें, जस्ट चिल रिलैक्स। हमारे साथ बच्चे और अध्यापक घर पे है, हैप्पी स्कूल हॉलीडेज। इन स्कूल की छुट्टियों का भरपूर मजा लीजिए, एक महीने तक आप छुट्टियाँ में हैं कि नहीं, क्या बात है, क्या बात है। सो इट्स टाइम टू रेस्ट, थोड़ा सा आराम कीजिए। और बेशक यहाँ पर हम हैं, आप लोगों का साथ दे रहे हैं रेडियो की लहरों पे। हर शनिवार की भांति हम आ गए हैं, आप लोगों का प्यार हमें खींच लाया है रेडियो मॉरिशस की लहरों पे। सुबह जब आप नींद से जागे तो अपने आप से कहें कि भाई आज जो भी हो अच्छा हो। और बेशक जब हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव और सब कुछ पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सुबह का नजाना यो मस्त मॉर्निंग शो को आज के चिंतन के साथ। इसे प्रस्तुत करेंगी डॉक्टर झमन जी

0: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: जिस प्रकार ताजा दोहा दूध एकदम नहीं बिगड़ जाता, उसी प्रकार कुकर्मों का फल तत्काल नहीं मिल जाता।

आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जिया कौन जान सकता है कि आने वाले पल में क्या होने वाला है। पर बीता हुआ पल लौट कर वापस नहीं आता। एक बार अगर समय चला गया ना दोस्तों, तो समय फिर से वापस लौट कर नहीं आता। इसे कहते हैं कि समय को ज़ाया नहीं करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब। समझदार को इशारा काफ़ी है। और दोस्तों, आजकल हमारे देश में बॉलीवुड के मशहूर सितारा, बॉलीवुड सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य जी है। सो हम कहेंगे वेलकम टू द पैराडाइज आइलैंड ऑफ मॉरिशस। और आज उनका शो है SVICC Pi में रात के 7:30 बजे। सो बहुत से लोग उनका शो देखने जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। सो अक्सर बॉलीवुड से जो है लोग हमारे देश का भ्रमण करने आते हैं। सो अभिजीत साहब बॉलीवुड के जाने माने सिंगर है, बहुत सारी फिल्मों ने प्लेबैक का सहारा दिया है। सो गीत प्रस्तुत करते हैं उनकी आवाज़ में, सुनिए तो बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी यस बॉस। जी हाँ, और जितने भी लोग अभिजीत साहब के फैंस हैं गीत उनके नाम, और जितने भी लोग समय में सुन रहे रेडियो मॉरिशस की लहरों पे यह गाना आपके नाम भी जाता है। और टिकटॉक पर बहुत से लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, हम आपका नाम लेंगे 8 बजे के बाद। अभी सुनिए ये प्यारा सा गाना।

साथियों, इस समय एमबीसी मोका से हमारा लाइव प्रसारण चल रहा है आज से 19 किलोहर्ट्ज पर। साथ में हमारे टिकटॉक पेज पर भी आप हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यस दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी होता है कि कभी मूड अच्छा नहीं होता है, कभी मूड ख़राब हो जाता है, पर क्या करें, ऐसा होता रहता है, यू नो, स्विंगिंग मूड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और अभी कैसा गाना हम लाए हैं जिसे सुनकर आप अलग ही दुनिया में खो जाएंगे। यह गीत ही अपने आप में खास है, हालांकि यह गीत काफ़ी पुराना है, यह गाना, और फिल्म हीरो से लिया गया है रेशमा जी की मीठी सी प्यारी सी आवाज़ में। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, लंबी जुदाई। और हम तो दुआ करते हैं कि आपके जीवन में कभी जुदाई ना आए, और आप जिसे प्यार करते हैं वो हमेशा आपके साथ रहे, वो आपका साथ हमेशा दे।

वाह क्या गाना था, वेरी यूनिक एंड रेयर गाना, लंबी जुदाई। हम तो बस दुआ करते हैं कि आप लोग सदा एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का साथ दें, स्पेशली कपल्स। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से केसेस ऑफ तलाक, यू नो, डाइवोर्स एवरीवेयर। सो दुआ करते हैं कि तलाक के केसेस ना हो। लोग अगर शादी करते हैं तो जीवन भर एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का साथ निभाएं। बहुत ज़रूरी होता है टू बी सिंसियर एंड फेथफुल टू ईच अदर, स्पेशली इन ए वेडेड कपल, जो शादीशुदा लोग हैं। सो ट्राई टू बी सिंसियर हॉनेस्ट टू ईच अदर, क्योंकि प्यार जो होता है उसमें विश्वास होना चाहिए। अगर प्यार में शक हो तो वो जोड़ी टूट जाती है, जिसमें विश्वास ना हो, अपनापन ना हो। सुबह के 7:35, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन, और बेशक बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोग हमारा साथ दे रहे। एंड अब सुनते हैं ये गाना, गुलशन की बहारों में। यस, मुजरत नज़ीर की आवाज़। ये गाना हम चला रहे हैं उन सभी दोस्तों के लिए, हम अभी भी मीठी मीठी नींद से जागे। कुछ लोग गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रहे हैं, तो गर्मा गर्म चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ हो जाए ये प्यारा सा गाना, गुलशन की बहारों में।

दोस्तों शारदा सिन्हा के गाए इस गीत के साथ ही सुबह का नजाना इस प्रोग्राम का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। ठीक 8:15 आप सुनेंगे हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से ज्ञान सर्वर कार्यक्रम। 8:00 भोजपुरी में समाचार, शोक समाचार भी। उसके बाद 8:05 पर हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजाना प्रोग्राम के दूसरे भाग में। सुनते रहिए प्यार से AM2 MBC रेडियो मॉरिशस।

0: नमस्कार श्रोताओं, हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान सरोवर में मैं डॉक्टर श्रीमती संध्या अंचरास्कीनू आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रोतागण, जैसा कि आपको विदित है कि हर शनिवार को ज्ञान सरोवर कार्यक्रम के अंतर्गत हम एक नए विषय की चर्चा करते हैं, आज मैं ऐसे ही एक नए विषय को लेकर स्टूडियो में आई हूँ। प्रसिद्ध साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जो हिंदी जगत में अज्ञेय नाम से प्रचलित हैं, उनकी एक कहानी है, उनकी द्वारा लिखित कहानी चिड़ियाघर, जो कि पिछले 2 साल से हमारे हाई स्कूल सर्टिफिकेट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तो आज की चर्चा न केवल हिंदी प्रेमियों के लिए है, बल्कि आज की चर्चा हमारे हाई स्कूल सर्टिफिकेट के छात्रों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आज के इस विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ श्रीमती रूमा बस्किट जी उपस्थित हैं। नमस्कार रूमा जी।
1: नमस्ते संध्या जी, श्रोताओं को भी मेरा सुप्रेम नमस्ते।
0: स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी।
0: रूमा जी, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके बारे में एक संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ हमारे श्रोताओं के लिए। आप पिछले 25 साल से माध्यमिक पाठशालाओं में हिंदी शिक्षण से जुड़ी हुई हैं और NCE तथा SC HSC अनेक परीक्षाओं के लिए आप हर साल छात्रों की तैयारी में अपना योगदान देती रही हैं। और अभी जिस कहानी की हम चर्चा करेंगे, आप उस कहानी को पढ़ा रही हैं।
1: जी
0: जी। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे कि क्या चिड़ियाघर कहानी केवल पशु पक्षियों की कहानी है, या इसके माध्यम से लेखक कुछ और संकेत देते हैं? हमारे श्रोताओं को इस कहानी के कथासार के बारे में कुछ बताते हुए थोड़ा सा।
1: जी ज़रूर संध्या जी। कहानी की शुरुआत, चिड़ियाघर कहानी का आरंभ जो है वह लेखक से होता है। लेखक ही पूरी कहानी सुनाते हैं और वे हैं प्रोफेसर साहब। तो प्रोफेसर साहब घर लौटते हैं, काम से घर लौटते हैं थके हारे, और वे आराम करना चाहते हैं। और उधर उनकी पत्नी, जिनका नाम रमा है, वह बाहर जाने की ज़िद करती है और इसी कारण दोनों में थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है। परंतु कुछ क्षण बाद दोनों घूमने जाते हैं और रमा की बहुत इच्छा होती है कि वह चिड़ियाघर का दौरा करे। तो वे वहाँ पहुँचते हैं दोनों, और वहाँ उन्हें एक बूढ़ा दरियल गाइड मिलता है जो खुद को चिड़ियाघर

0: उसकी आत्मा बताता है। गाइड उन्हें बारी बारी करके अलग अलग जानवरों के सामने ले जाता है और उनके पीछे छिपी क्रूरता, पीड़ा और समाज के कड़वे सच से परिचित कराता है। वहाँ पर अनेक जानवर होते हैं, जैसे बंदर, हाथी, हाथी अंधा होता है वैसे,
1: अच्छा।
0: तोते जो पिंजरों में कैद होते हैं, शेर भी है, शेर बूढ़ा वृद्ध हो चला है, एक अन्य जानवर है उदबिलाव, और साथ ही साथ बाघ, बाघ के बच्चे नज़र आते हैं जो बहुत ही कोमल सुंदर दिखते हैं। तो वे चिड़ियाघर का दौरा करते हैं और कहानी बस ऐसे ही विकसित होती है। और फिर अंत में हम देखते हैं कि लेखक जो है उनकी नींद खुलती है।
1: अच्छा,
0: उनकी नींद खुलती है तो पत्नी कहती है कि क्या चिड़ियाघर नहीं चलना है। तब हमें आभास होता है कि वे जो है सोफे पर लेटे लेटे ऊँघने लगते हैं और उन्हें हल्की सी नींद आ जाती है। तो बस कहानी ऐसी है।
1: अच्छा, बहुत ही रोचक बिंदु पर हम लोग आए कि इतना मतलब जब चिड़ियाघर की सैर खत्म हो जाती है तब पता चलता है कि लेखक वास्तव में शायद सपनों में,
0: हाँ सपनों में उन्होंने चिड़ियाघर का दौरा कर लिया।
1: जी जी रूमा जी, कहानी विधा की जब हम चर्चा करते हैं, खासकर हमारे छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है पात्र और चरित्र चित्रण।
0: जी जरूर।
1: तो आपने काफ़ी पात्रों के बारे में कहा, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि थोड़ा सभी पात्रों के चरित्र के बारे में संक्षिप्त में हमें बताइए, और साथ ही कि आपके इन सभी पात्रों में आप किसको महत्वपूर्ण मानते हैं, या आपका जो फेवरेट हैं वो कौन है?
0: अच्छा, सबसे पहले तो कहानी में प्रोफेसर साहब होते हैं और पूरी कहानी उन्हीं के माध्यम से घटित होती है। वे पूरी कहानी सुनाते हैं और वैसे तो वे बहुत ही व्यावहारिक हैं, जीवन में आराम पसंद है, छुट्टी मिलते ही वे आराम करना पसंद करते हैं। चिड़ियाघर जाने की उनकी कोई अधिक रुचि नहीं है क्योंकि उन्हें वहाँ की जो दुर्गंध है उससे चिढ़ होती है, परंतु वे संवेदनशील भी हैं, विचारशील हैं, क्योंकि जब गाइड उन्हें अलग अलग जानवरों की कहानी सुनाते हैं तो उन्हें दुख महसूस होता है, तो उनके मन में गहरी ग्लानी भी उत्पन्न होती है, उस वेदना को वे समझते हैं। और वे पति के रूप में वे समर्पणवादी प्रवृत्ति के हैं, न चाहते हुए भी पत्नी की मांग पर वे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद है रमा, और रमा एक मध्यवर्गीय गृहिणी है, चंचल स्वभाव की है, हठी है, हट करती है, और हम देखते हैं कि बच्चों जैसी चंचलता उसमें है। वह जानवरों को मूंगफली खिलाना पसंद करती है, मूंगफली खिलाते हुए उसको बड़ा आनंद आता है। तत्पश्चात राजा साहब भी एक परोक्ष, मैं कहूँगी, पात्र हैं, क्योंकि वे गाइड के द्वारा हमें उनके बारे में पता चलता है, वे परोक्ष हैं और वे सामंती मानसिकता वाले पुरुष हैं, शोषक के रूप में ले लीजिए। वे अपनी झूठी शान, शिकार करने के अपने शौक को कुछ इस तरीके से पूरा करते हैं कि हमें वे अपना मनोरंजन कर रहे होते हैं लेकिन साथ ही साथ जानवरों पर अत्याचार भी करते हैं। वे अपने मनोरंजन के लिए, अपनी खुशी के लिए जानवरों का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद एक नवाब साहब भी हैं जो अहंकारी हैं, क्रूर हैं, और वे अपनी बांदी के साथ दुर्व्यवहार, बुरी तरीके से पेश आते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं और अमानवीय व्यवहार करते हैं। और जैसे आपने संध्या जी, जैसे आपने पूछा कि मेरे हिसाब से कौन सा पात्र सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए मैं कहूँगी कि कहानी में जो गाइड आया हुआ है, जो कहानी, जो चिड़ियाघर की सैर करवाता है, वह सबसे रहस्यमयी और प्रभावशाली है। अज्ञेय जी के बारे में तो आप जानते ही हैं, वे कथाकार हैं, कवि हैं, साथ ही साथ वे एक चिंतक और दार्शनिक भी हैं, ये तो परिचित है।
1: और उनकी कहानी से हम लोग सभी हम जानते हैं कि किस तरह से हमेशा हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और किस तरह से वह हमारे समाज के भिन्न पक्षों को उजागर करते हैं, हमारे सामने रखते हैं।
0: हाँ जी, तो यहाँ भी उन्होंने ऐसे ही एक दार्शनिक पात्र को उन्होंने यहाँ पर उनका चित्रण किया हुआ है। तो वे हैं वो गाइड, और यह जो गाइड है वह एक साधारण गाइड नहीं बल्कि इस कहानी, चिड़ियाघर कहानी का मुख्य सूत्रधार है। के उनके बारे में कहूँगी कि

0: यह गाइड जो है गंभीर और अंतर्दृष्टि से युक्त है, क्योंकि वह जानवरों के इतिहास के साथ साथ उनके पीछे छिपे मानवीय शोषण, जो हम एक्सप्लॉइटेशन जिसको कहते हैं, शोषण, मानवीय शोषण और व्यवस्था के कड़वे सच को उजागर वह करता है। और काफ़ी अनेक बार उन्होंने एक तीखा व्यंग्यकार के रूप में भी वे हमारे सामने आते हैं, क्योंकि वह बात बात पर लेखक और उसकी जो पत्नी है रमा उस पर कटाक्ष करता है। ओके, वह इंसानी जीवन की सीमाओं और विवशताओं को बहुत गहराई से समझता है, तो चिंतक वाली जो भावना है ना, ये की यहाँ झलकती है। और प्रतीकात्मक पात्र भी है यह गाइड, वह स्वयं को चिड़ियाघर की आत्मा कहता है, ये कहानी में शब्द ऐसे ही आया हुआ है। कहानी के अंत में वही ये जो गाइड है लेखक को यह एहसास कराता है कि बाहरी दुनिया भी एक बड़ा चिड़ियाघर है, तो ये एक दर्शन अगे की यहाँ झलकती है।
1: जी जी, और अगर हम आज के समय को देखें तो हम कह सकते हैं कि आज भी यह कहानी प्रासंगिक है।
0: हाँ, एकदम प्रासंगिक है। कहानी तो चिड़ियाघर में बीतती है, जैसे आप जानते हैं चिड़ियाघर में हम पशुओं को, पक्षियों को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ अगे जी जो हैं गाइड द्वारा एक संवाद आया हुआ है, और संवाद कुछ इस तरह का है, बाहर एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर है जिसमें तुम बंद हो। और यह वाक्य कहानी का सबसे बड़ा दार्शनिक संदेश है, तो आज के समाज में प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी जो है हम मनुष्य क्या करते हैं, जानवरों को अपने फायदे के लिए प्रयोग करते हैं, अपने मनोरंजन ना, अपने अपने ज्ञान,
1: एक तरफ मनोरंजन, दूसरी तरफ एनिमल टेस्टिंग जिसे हम कहते हैं,
0: ये सब करते हैं, दवाइयों के लिए हम जानवरों पर ये सब उन्हें झेलना पड़ता है, तो मनुष्य अपनी झूठी शान और लाभ के लिए इन बेजुबान, वो तो बोल नहीं सकते हैं ना, बेजुबान जानवरों पर कितना अत्याचार कर रहा है, तो आज के समय में भी ऐसा हो रहा है, जो कि अगे ने कितने वर्ष पहले अपनी कहानी में इस विचार को रखा हुआ है।
1: जी,
0: ओके। और बंदर, बंदर क्योंकि हमारे कहा जाता है ना एप्स से हम आए हुए हैं, तो बंदरों पर भी अत्याचार यहाँ पर दिखाया गया है, तो केवल वे प्रदर्शनी के लिए यहाँ पर रखे गए हैं, उनके स्वास्थ्य पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया जाता है। उदबिलाव जो जानवर हैं, मनोरंजन के लिए बार बार उसे पानी में घुसना पड़ता है, सिक्के निकालना पड़ता है, तो ये आज भी है, हम सर्कस में देखते हैं ना जानवरों को कैसे अपने मनोरंजन के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, मनुष्य प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रासंगिक ज़रूर है।
1: रुमा जी, मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि अगेय जी को चिड़ियाघर जैसी कहानी लिखने के लिए कहाँ से प्रेरणा ली होगी उन्होंने?
0: देखिए संध्या जी, एक दार्शनिक चिंतक होने के नाते मुझे लगता है कि अगेय जी ने अपने आसपास के माहौल को देखा है, समझा है, जिया है, उन्होंने समाज की परेशानियों को देखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस कहानी को लिखने की प्रेरणा उन्हें बाहर अपने ही आसपास के माहौल से मिली होगी, क्योंकि यह जो कहानी है केवल हमें सोचने पर विवश करती है कि सलाखों के पीछे बंद जानवर ही कैद नहीं है, बल्कि मनुष्य भी व्यवस्था की कैद में बंद है, वह बंधनों में जकड़ा हुआ है और मनुष्य भी एक कैदी है।
1: ज़रूर रुमा जी, हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, जाते जाते आपसे एक अंतिम प्रश्न कि अगर आपको इस कहानी को लेकर हमारे श्रोताओं को कोई संदेश देना होगा, बताना होगा, तो आप क्या कहेंगे?
0: मैं यही कहूँगी कि हम सब बंधनों में बंधे हुए हैं, परंतु उन बंधनों को अपनी विवशता न बनाएं, भरसक हम एक स्वतंत्र जीवन जिए और अपने विचार को रखने में नहीं हिचकिचाए।
1: बहुत बहुत खूब। तो श्रोतागण, हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, और सबसे पहले तो मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी रुमा जी का, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किया, और बस यही आशा है कि इस कार्यक्रम से न केवल हिंदी प्रेमियों को बल्कि

0: हमारे छात्रों का मार्गदर्शन हुआ हो, उन्हें बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ हो। और मैं रुमा जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ।
1: धन्यवाद संध्या जी। स्टूडियो में आकर के मैं मानती हूँ कि मुझे लगता है कि छात्रगण अवश्य इससे लाभान्वित होंगे।
0: और इसी के साथ श्रोतागण, हम लोग भी आज्ञा चाहेंगे किसी अन्य कार्यक्रम तक। धन्यवाद और नमस्ते।

0: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: फजर के ठीक 8 बजे तक सुना भोजपुरी में समाचार। नमस्ते। कैबिनेट फाइनेंस बिल 2026 और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल 2026 के राष्ट्रीय सभा में पेश करी के मंजूरी दे दिले बाय। ये दोनों विधेयक से बजट 2026-2027 में घोषित टैक्स, वित्तीय और आर्थिक कदम लागू करे खातिर कुल 83 कानून में बदलाव करल जाए। कैबिनेट जानकारी दिले बा कि हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक ग्रांट स्कीम आज से शुरू हो गल बा। ये योजना के तहत पात्र परिवार लोगन के सोलर पीवी सिस्टम लगावे परी लागत के 25% अधिक से अधिक 75,000 रुपया ले ग्रांट मिली। योजना खातिर 270 मिलियन रुपया के प्रावधान करल गल बा। कैबिनेट मॉरिशस और सेशल्स के बीच मस्करीन प्लाटू के संयुक्त समुद्री इलाका में भूकंपीय सर्वेक्षण करे खातिर समझौता पर हस्ताक्षर के मंजूरी देले बा। इस सर्वेक्षण से ई पता लगावल जाए कि समुद्र के नीचे तेल और गैस के भंडार बाकी नहीं। इससे दोनों देश के ऊर्जा वैज्ञानिक शोध और संसाधन प्रबंधन में मदद मिली। कैबिनेट गैर घरेलू ग्राहक लोगन खातिर पानी और सीवरेज शुल्क में बदलाव की मंजूरी देले बा। बढ़त लागत के देखते CWA और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के शुल्क में ज्यादा गैर घरेलू ग्राहक लोगन खातिर 10-25% ले बढ़ोतरी करल जाए। कुछ खास श्रेणी के उपभोक्ता लोगन खातिर ये बढ़ोतरी इससे अधिक हुई। कैबिनेट संस्कृत स्पीकिंग यूनियन के नया कार्यकारी परिषद के गठन के जानकारी लेलक। गिरीश प्रसन्न के परिषद के नवा अध्यक्ष बनावल गलबा। मॉरिशस में इजिप्ट के राष्ट्रीय दिवस के मौका पर कल शुक्रवार सांझ के क्यूपिप में एगो आधिकारिक समारोह आयोजित करल गल। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम, सरकार के सदस्य, राजनयिक समुदाय के प्रतिनिधि और दूसर आमंत्रित मेहमान शामिल रहलन जा। इस मौका पर मॉरिशस और इजिप्ट के बीच दोस्ती और सहयोग के रिश्ता पर जोर देवल गल। इजिप्ट के राजदूत अबीर इलाम एल दिन प्रशिक्षण और आर्थिक गतिविधि के सेक्टर में बढ़त सहयोग के बारे में जोर दिलन। मॉरिशस के निर्यातक लोगन खातिर राहत की खबर बा। मॉरिशस से अमेरिका भेजल जाए वाला सामान पर नवा अमेरिकी अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगी। आगुआ के तहत टैरिफ मुक्त सुविधा जारी रहे से लगभग 8 मिलियन रुपया के अमेरिकी बाजार ले मॉरिशस की पहुंच बरकरार रही। इससे एशियाई कपड़ा उत्पादक देशन के मुकाबला में मॉरिशस के बढ़िया फायदा मिली। मॉरिशस के निर्यातक लोगन के राहत परी मेगजाबी खुशी जताइले बा। संगठन के कहना बा कि अगुआ के तहत टैरिफ मुक्त सुविधा जारी रहे से मॉरिशस सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और मजबूत स्थिति में रही। मॉरिशस में पानी की स्थिति अभियो चिंता के विषय बनल बा। कम वर्षा के कारण जलाशय और भूजल के स्तर लगातार कमती हुआ था। ऊंचा इलाका में पानी के कटौती लावल गल बा। बखिर अगर सूखा जारी रही तो दूसर इलाका पर भी असर पड़ सकेला। स्थिति से निपटे खातिर सेंट्रल वाटर अथॉरिटी

0: पानी के आपूर्ति मजबूत करे के कई काम पर काम करत बा। मॉरिशस में समुद्र में डूबे के घटना अभी चिंता के विषय बनल बा। नेशनल कोस्ट गार्ड के अनुसार ये बरिस अबले 24 जना समुद्र में डूबे से जान गवा चुकल हवन जा। विश्व डूबे से बचाव दिवस के मौका पर ही लोगन से समुद्र में जाए से आगे सुरक्षा नियम के पालन करे की अपील करल गल बा। दूसर देश के खबर में स्पेन के राजधानी मैड्रिड में लगे भीषण आग, जंगल की आग लगातार फैलत जात बा। 3 अलग अलग जगह की आग अब एगो बड़ा आग में बदल गल बा, जेकरा परी अबले काबू नहीं पावल जा सकल बा। हालात के देखते स्पेन सरकार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिली बा और ये लगभग 30,000 लोगन के सुरक्षित जगह भेज देवल गल बा। तो ये रहा हमनी के भोजपुरी में समाचार, हमनी के सुनने जा, धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: Tamil Temple Road, Goodlands me, 66 baris ke, 66 ans ke, Subir Turabali, intakal kar gawa, कल गल हवन जा। उनकर जनाजा आज दिन के 12 बजे उन्हीं के घरे तमिल टेम्पल रोड गुडलैंड्स से निकाल के दफनाए खातिर बेलमो गुडलैंड्स के कब्रिस्तान ले जावल जाए। नंबर 12 सेलिको ऑन्टेल्म फॉरेस्ट साइड में 70 बरिस के सुसन जीजों की विजयंती माला तगाली पैदाइश नाम रूपन गुजरगल हवन। उनकर माटी आज दिन के 3:15 बजे उनकर बेटा सचिन तगाली के मकान फॉरवेस्ट साइड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर आलेपुरियों वाकुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए। इंटरनेशनल रोड रिवियर जुरांपोमे 89 ईयर्स ओल्ड के पुष्पा सोरत्यापा गुजरगल हवन। उनकर माटी बाद में उठावल जाए, जगह और समय के बारे में बाद में सूचित करल जाए। रॉयल रोड तेहरूज में 90 बरिस के 90 के धमन प्रसाद विशेषर गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दोपहर 3 बजे उन्हीं के घरे त्यागूर से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बौमौशों के शमशान भूमि ले जावल जाए। शिवाला रोड मौदेस खालिया में 73 बरिस के सुसन त्रीजों के रविंद्रनाथ ओजुबा गुजरगल हवन। उनकर माटी आज दोपहर 3 बजे उन्हीं के घरे मौदेस खालिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर इलाका की शमशान भूमि ले जावल जाए। मोप्लेजिया पॉपलेमुसेज में 86 बरिस के 86 ईयर्स के कसम उदेरत इंतकाल कर गल हवन। उनकर जनाजा आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घरे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर इलाका के शमशान भूमि ले जावल जाए। करमताली मोप्लेजिया पॉपलेमुसेज में उनकर जनाजा आज दिन के 11 बजे दफनाए खातिर पॉपलेमुसेज के कब्रिस्तान ले जावल जाए। करमताली लेन लाहौल कुवां क्यूपिप में 69 के मोहम्मद इकबाल दुर्गोही इंतकाल कर गल हवन। उनकर जनाजा आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घरे क्यूपिप से निकाल के दफनाए खातिर भी कहा के शमशान भूमि ले जावल जाए। जुखे रोड नोत्रदाम में 75 बरिस के 75 ईयर्स की सलीमा बीबी सुबहची इंतकाल कर गल हवन। उनकर जनाजा आज दिन के 11 बजे उनकर दामाद फरदीन महबूब के घरे जुखे रोड नोत्रदाम से निकाल के दफनाए खातिर बोमोशों के कब्रिस्तान ले जावल जाए। स्कूल लेन बोडवाजो पुत्र दो विलेज में 40 बरिस के कहोतों के राजीव रधाई गुजरगल हवन। उनकर माटी आज दिन के 2:30 बजे उनकर भाई सनंद रधाई के घरे पुत्र दो विलेज से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जावल जाए। 75 बरिस के वेंकटाचार्य लिंगालू गुजरगल हवन। उनकर माटी आज दिन के 2:30 बजे सर अनिरुद्ध जगन्नाथ मोचरी हाउस से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सैकोस्तों सैपिया के शमशान भूमि ले जावल जाए। महात्मा गांधी रोड पिछड़ाफ्री में 58 बरिस

0: इसके सकों चीतों की महाबीर दी हुल गुजर गल हवन उनकर माटी कल फजीर के 10 बजे उनकर भाई विशाल दी हुल के घरे महात्मा गांधी रोड पे छिकाफे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मो मस्काल के शमशान भूमि ले जावल जाए। मस्क रोड रोजबेल में 95 बरिस के कथों कैजों के पुष्मावती भरत गुजर गल हवन पैदाइश नाम राम जावन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर बेटा ससिराज भरत के घरे रोजबेल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मागजानी रोजबेल के शमशान भूमि ले जावल जाए। लामाखे ओकुले में 67 बरिस के सोसन सेतों के धनराज बुलोक गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर पत्नी नीता बुलोक के घरे लामाखे ओकुले से उठा के अंतिम संस्कार खातिर फेनिक्स के शमशान भूमि ले जावल जाए। रिविया बाचिस रोड लालोगा सैंपिया में 61 बरिस के 67 के विमला गंगा बिसुन गुजर गल हवन पैदाइश नाम विफन उन कर्माटी आज दोपहर बाद 1 बजे उन्हीं के घरे सैंपिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मोताई ब्रांच के शमशान भूमि ले जावल जाए। रेलवे रोड रिविया जुपुस में 67 बरिस के 67 की ललिता बीर सिंह गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर बेटा गिरीश बीर सिंह के घरे रेलवे रोड रिविया जुपुस से उठा के अंतिम संस्कार खातिर इलाका के शमशान भूमि ले जावल जाए। शोकग्रस्त परिवार संगे हमनी सहानुभूति प्रकट करत हैं जा।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस।
2: आज मैं पहली बार गजल गायकी की दुनिया में एक नई चीज पेश कर रहा हूँ, तजमीन। जी हाँ, वही घुंघरू टूट गए, वही गए लिखने वाले शायर जनाब खतिल शिफाई साहब की गजल के शेरों पर तजमीन करके उसको गीत का रूप दिया है जाने पहचाने शायर जनाब मुमताज़ राशिद ने। बहुत धन्यवाद।

0: बाकी सब गंगा।
1: सुबह के 8:17 हो रहे। अभी जी सुनिए एक व्यक्ति। जी हाँ, श्री हनुमान कथा जी का, श्री हनुमान कथा का आयोजन किया जा रहा है हवेली जोंगी SSS के बगल में। जी हाँ, आज शनिवार 25 जुलाई से लेकर गुरुवार 30 जुलाई तक रोज़ रात को 7:30 वहाँ पर कथा होगी, हनुमान कथा। इसे प्रस्तुत करेंगे श्री HH श्री सूरज बिहारी। जनता आमंत्रित है इस पूजा में भाग लेने के लिए। सुबह के 8:18। वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। प्रस्तुत है म्यूजिकल प्रोग्राम, जी हाँ, फिलो का मनपसंद प्रोग्राम
2: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
1: जी आपने सही सुना, सुबह का नजराना, दिल का बहार। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है ये। सुनाओ सेलिब्रेशन टाइम पार्ट टू। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला गाना फ्रॉम द मूवी कुर्बानी। क्या देखते हो सूरत तुम्हारी, क्या चाहते हो। बहुत ही प्यारा सा गाना। सनातन जी, तेज सनातन, यह गीत आपके नाम, आपके पूरे परिवार और तेज सनातन जी खासम खास आपके लिए। एबोनी, यह गीत आपके नाम भी, बद्री प्रसाद, यह गाना आपके नाम चलाएंगे। सालिमा, आपके नाम भी गीत जाता है। राजू गुप्ता, विश्वानी जी, गीत आपके नाम भी और विश्वानी।

रेशमा की ओर से गीत जाएगा सूरज और रेशमा के नाम। यस, अगला गाना प्रीति के नाम, आप है कहाँ से? यस, ऑलराइट। एंड ये गाना हम चलाएंगे मोतीराम के नाम, और यही गाना चलेगा प्रवीण दुर्गा, ये गीत आपके नाम भी। रोशनी सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हाय नेहा, और जे फैमिली के जो सभी मेंबर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं उनके नाम, स्पेशली संजय बिहारी की ओर से, उनकी पत्नी सुरेखा, बेटे कुशल, बहू, बेटी रिंकू, दामाद और सब उनके परिवार के नाम। और यही गाना जाएगा शोमा बंधन जी के नाम, कौछ मिली जैसे है, बहुत प्यार से हमें सुन रहे हैं। और यही गाना जाएगा इन सब दोस्तों के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप है मनीष चामी सिंह, रितेश हमन, आदित्य, अनिता पांचू, अंजू किशुन, आशा, अशील चितंकी, अजीजा, बाल गोविंद जी। यही गीत जाएगा भाई गुरु जो साउथ अफ्रीका में है, भामा, भारती, बुलाकी, वृंदा पांचू, शकील प्रयाग सिंह, कोथन देवी, दीना जो विदेश में है, गिरीश लक्ष्मण, हंस, हरीश नारायण, विशाल हिरू, उनकी पत्नी और बच्चे, कलाईवानी, केशव रिसोल, कृषि, महादु, मानी दौलत, माया, बेनी, मिस्टर गंगा एविन, नवीन जानकी, उदित, प्रवीण बुधन, प्रीति बाबुआ, प्रीतम, राधा गनु, रीता, रोशन हर नाम, रोशनी बिहारी, रोसाई, रोसी, शैलेश महावीर, संजय हरिचंद, सत्यम सुबोल, शैनन बंसी, शामिनी, सूरज परमानन। यही गीत जाएगा तैयबा उजागिर उसके परिवार के लिए, तीना बुदना उनके पति और बच्चों के नाम, उमा जगन नायकलू, उरुसा, वीरापेन, विकास, विनेश सुबान, विश्वानी बाबूलाल, व्यासीव और नतराज रामकुरन के नाम। और नतराज रामकुरन का जन्मदिन था कुछ दिन पहले, सो बधाइयाँ और प्यार उनके पापा, उनके मामा, उनके भाई, उनके बहन और सब रामकुरन परिवार की ओर से, और प्रताप की ओर से नतराज को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और यह गीत प्रताप की ओर से चलेगा हरीश के नाम, प्रताप और हरीश बेस्ट फ्रेंड्स, और हरीश नारायण रहते हैं मिडलैंड। सो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

क्या बात है, क्या बात है। इस गीत को सुनकर बहुत से लोग मुस्कुराने लगे। कुछ तो बात है, शायद कोई आपको याद आ गया या याद आ गई होगी। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गाना आ रहा है, बहुत ही प्यारा सा गीत फ्रॉम द मूवी धर्मात्मा, मुकेश और साथियों की आवाज़ों में। और ये गीत हम चलाएंगे प्रतिमा दुखित राम जी के नाम। ये गीत उनके पति कृष्ण, उनकी माँ बसंती के लिए, दिलवंती जी। यह गीत लोवाइल के नाम भी, और ये गीत जाएगा सरोज के नाम, बद्री प्रसाद जी। यह गीत आपके नाम भी, राजू गुप्ता विश्वानी। यह गीत आपके नाम भी, फिर यही गाना हम चलाएंगे इन सब दोस्तों के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये गीत जाएगा सुशील के नाम, इंदिरा जी आपके नाम भी, और कमला दिनू। ये गीत आपके नाम और आपकी प्यारी सी बच्ची आरोहित के लिए, ज्ञान और चित्रा विश्राम मोदाल बैसे है, सब विश्राम परिवार के नाम। और ये गाना संगीता मीरन के नाम, अप्रेती अलाहोजा उनकी माँ, उनके भाई दान, आजी बहन शांति, हेमा, वंशिका, रक्षिता, सब अमीरन और मोहन परिवार के नाम। और ये गीत इंदिरा जी की ओर से राजेश उगर के लिए, सब उगर परिवार के नाम। हाय राजिया, और भाई आबू है बाकवा से, हेलो भाई आबू, सलाम अलैकुम। यह गीत आपके नाम, आपके पूरे परिवार के लिए, राफिक मोहित है तायाग से। सलीमा, ये गीत आपके नाम भी जाएगा, रोजीदा हाईलैंड से, मैजबीन प्लान वैद से है, हमारा साथ दे रहे। जैनब है फिनिक्स से, इंदिरा नोटोडाम, माफ़ कीजिए, रेहाना नोटोडाम से है। यह गीत आपके नाम भी जाएगा, और अनिता लाल जी मौदाल बे से है, अनिता अफ्रीकॉन फ्लाक से। चलिए यह गीत आपके नाम करती है, क्या खूब लगती हो, क्या सुंदर लगती हो। ये गीत चाची प्रभावती के नाम, अब रहती है नोवेल फॉल्स, चाचा आत्मा राम और उनके सभी दोस्तों और परिवार वालों के लिए। और आप हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स जो हमें रेडियो पर सुन रहे हैं, हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स जो हमें टिकटॉक पर देख रहे हैं, यह गीत आपके नाम भी, और शोमा बंधन जी, ये गीत आपकी माता जी, आपके भाई, आपके नीसेज और सब बंधन परिवार के नाम, क्या खूब लगती हो।

प्यारे प्यारे गाने आपके अपने एमबीसी रेडियो मॉरिशस की लहरों पे। और अभी जी सुनिए एक विज्ञप्ति। जी हाँ, कल रविवार 26 जुलाई को सुबह जिले मोहताबा में काली पूजा का आयोजन किया गया है और दिन के 9 बजे से 12 बजे तक की पूजा हो रही है वहाँ पर। सो जनता आमंत्रित है इस पूजा में भाग लेने के लिए। सो याद रखें कि कल सुबह जिले मोहताबा में, कल संडे 26 जुलाई को सुबह जिले मोहताबा में काली पूजा का आयोजन किया गया है दिन के 9 बजे। जनता आमंत्रित है। सुबह का नजाना पार्ट टू। जी हाँ, अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, 9 बजे तक प्रोग्राम जारी है और टिकटॉक पेज पर बहुत से लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, थैंक यू जी। और यशुदास का एक गाना किसी ने मांगा है, यस, सो हम ढूंढ रहे एक प्यारा सा गाना और बहुत ही प्यारा सा गीत हम चलाएंगे। और ये गीत जाएगा इन सब दोस्तों के नाम, मंजुला कावली सर, उनके पति संदीप, शनिदेव के नाम भी चला।

0: मास्टर, फिर शोमा की ओर से सूरज के नाम बहुत प्यार से गीत जाएगा। ये गाना हम चलाएंगे साध्या के नाम, हाय साध्या, बीना पादू यह गीत जाएगा, स्वस्तिया पादू और सभा पादू परिवार जो रोजबेल से हैं, और भी बहुत से लोग फ़ोन पे हमारा इंतज़ार करें, चलिए हम उनसे मिलते हैं, मौका भी है दस्तूर भी है तो क्यों नहीं, चलिए हम सुनते हैं उनको। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी नमस्कार।
1: हेलो नमस्ते, हम गुडलैंड से किशवंती बोला था।
0: आपका स्वागत है।
1: कल हम जन्मदिन रहल नहीं मिला।
0: जन्मदिन बहुत बहुत अभिनंदन हो।
1: धन्यवाद तोहरो। एगो गीत मांगे चाहत है। हाँ। कल खातिर हमर खातिर हमर पति ज्ञान।
0: हाँ।
1: और हमर दुगो बेटा बा विनय अजय, दुगो बहू और हमर नातिन लोग बा सब बेटी बा तीन गो, हमके धन्यवाद आशीर्वाद दियन जा कि हमर जन्मदिन के अवसर पर जन्मदिन के गीत डाल दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू।
0: फिर इसमें गीत सज चुका है, समय रहा तो चाहे गीत हम सजा कर ला चुके हैं। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया और हमसे बातें की, और एक दो से लाइन पे उनसे मिलेंगे। हेलो
2: हेलो नमस्कार जी।
0: नानी जी नमस्ते, कैसी हैं?
2: मौसम सुहाना जी,
0: मौसम मौसम
2: कैसे मौसम सुहाना,
0: पर रात को बहुत ठंड पड़ी, रात को इतनी ठंड पड़ी कि क्या बताएं, बहुत बहुत
2: पता ही नहीं चला, बाप रे बाप लगती है कि मैं क्या करूं।
0: नहीं क्योंकि हम सुबह जल्दी जागते हैं ये पूजा पाठ करने के लिए, तो
2: हम 4 बजे उठ जाते हैं।
0: हाँ, फिर स्नान करके पूजा पाठ ये सब आसान बात नहीं है।
2: सवेरे सवेरे मेरे फेवरेट गाना चला गया।
0: कौन सा गाना था, कौन सा
2: और आप ऐसे आपके जीवन ऐसे सुहाना लगे।
0: सो स्वीट, सो ये आप लोगों का प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद है जो हम यहाँ पर आते हैं, केवल आप, अगर आप लोग हैं तो हम हैं, ये तो आप जानते हैं।
2: सभी के लिए जितने भी सुन रहे हैं रेडियो, सभी के लिए
0: मैंने सुना है आप दिन भर रेडियो सुनती हैं, अच्छा लगता है प्रोग्राम। आप क्या रेडियो चल
2: रहे? दो रेडियो है।
0: हाँ।
2: दो छोटे रेडियो है।
0: ओके।
2: एक आगे के दीवार पर, एक पीछे की दीवार में, एक आगाज में, एक किचन में, एक पूजा घर में, छोटे छोटे रेडियो है। हम दिन भर यही, हमारा कोई दोस्त नहीं, हम अकेले रहते हैं।
0: हम आपके दोस्त हैं, रेडियो आपका दोस्त है।
2: रेडियो छोटी सी, मैं रेडियो एमबीसी सुनती हूँ, और रेडियो के मैंने बहुत कुछ सुना और सीखा भी। रेडियो
0: बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सिखाते भी हैं लोगों को, ये हमारा माध्यम, शिक्षा, संगीत, समाचार, सब कुछ। हाँ जी, ये तो है। हाँ, तो अगला गीत हम आपके नाम करेंगे, आपके पूरे परिवार के लिए
2: और के लिए और सभी सुनने वाले के लिए।
0: थैंक यू जी, सो
2: स्वीट, और मौसम सुहाना के लिए।
0: बाय बाय, टेक केयर। चलिए और एक दो से लाइन पे उनसे मिलेंगे। हेलो हेलो,
3: तो नमस्कार, कैसे हो बेटा?
0: गीता बाई जी शुभ नमस्कार, आप कैसी हैं?
3: मैं अच्छी हूँ, मैं काफी इंतजार कर रही हूँ।
0: हाँ, और अगला गीत किसके लिए?
3: अगला गीत मेरा बेटा शिवाजी, मेरी बहू श्वेता बाई, मेरी बेटी सुधा बाई और मेरे दो तीन नातिन के लिए, विश्वी बाई, दिया बाई और मेरा प्यारा नात के लिए, बढ़ा के लिए।
0: ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: सभी लोग एमबीसी स्टाफ के लिए,
0: ओके,
3: और जो सब लोग बीमार है उनको, इनके लिए भी।
0: ओके, बहुत धन्यवाद आपने फोन किया, और एक दो से लाइन पे। हेलो
4: हेलो,
0: हाँ नमस्कार
4: जी।
0: हाँ जी, आप कौन?
4: श्रीमती,
0: श्रीमती सुयाक से। क्या बात है,
4: क्या
0: बात है, मौसम बड़ा सुहाना है, मौसम बड़ा सुहाना है। अच्छा जी,
4: बेटा के जन्मदिन रहो काल।
0: हाँ,
4: बेटा के नाम है शक्ति।
0: हाँ,
4: और पत्नी, पत्नी के नाम है पूनम, और बेटा अखिलेश, बेटी आसना, और सब चंद्रमुनि परिवार, और दामाद के भी जन्मदिन बा आज।
0: आज? हाँ
4: हाँ, आज जन्मदिन बा।
0: क्या नाम है, क्या नाम है?
4: दामाद के नाम है सुनील, पत्नी के नाम है किरण, और बेटा अश्विन।
0: हाँ,
4: और बेटी, और बेटी के तरफ से, शंकर परिवार की तरफ से।
0: हाँ,
4: और सब महेश परिवार के तरफ से, चंद्रमुनि परिवार की तरफ से, सबके बधाई दे।
0: और महेश जी कैसे हैं? ठीक है, महेश जी
4: ठीक है, ठीक है,
0: उन्हें हमारा आशीर्वाद दीजिएगा।
4: ठीक है, ठीक है।

0: हाँ तो चलाएंगे एक प्यारा सा गाना उनके नाम भी।
1: जी ठीक है।
0: ओके बहुत धन्यवाद आपने फोन किया। ऑलराइट और एक दोस्त से लाइन पर मिलेंगे। हेलो
2: हेलो नमस्कार प्रताप जी,
0: नमस्ते, कौन है आप?
2: मैं उमा हूँ रुसबेल से।
0: उमा आपका
2: कैसी हैं आप?
0: आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, आप कैसी है?
2: मैं भी ठीक हूँ, बहुत ठंड है इधर।
0: हाँ बहुत ठंड है दक्षिण में, मौतबा में भी बहुत ठंड है।
2: हाँ जी क्या करें
0: क्या करें, मौसम का तकाजा।
2: हाँ जी कहते ना कि और मैं मजा वाली तो
0: फ्रेंच में
2: ठीक
0: के फ्रेंच में कहते हैं इफ फॉर द कैनो।
2: बहुत बढ़िया जी, आपका प्रोग्राम बहुत बहुत बढ़िया है।
0: सो स्वीट सो स्वीट।
2: देखिए प्रताप जी, आज मेरा बेटा बिपिन का जन्मदिन है।
0: हैप्पी बर्थडे कहते हैं।
2: थैंक यू सो मच। उसे बधाई दे रहे हैं। मैं हूँ उसकी माता जी उमा, उसकी बहन है रीता, मेरी बहू है बृंदा,
0: हाँ।
2: मेरी पोती है निधि, पोता है आदित्य, सभी परिवार दोस्तों को विपिन को बहुत सा प्यार बहुत आशीर्वाद देते हैं।
0: हमारी ओर से
2: भी चलेगा है
0: अभी चलेगा अभी। तुम इतने सुंदर हो, क्या
2: बहुत बढ़िया। उसकी मैं उसके नाम भी जोड़
0: जरूर जरूर का नाम जोड़ेंगे। और आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दूसरे लाइन पे हेलो
3: हेलो
0: जी नमस्कार।
3: नमस्कार जी।
0: प्रेमिला जी,
3: जी हाँ।
0: कैसी हैं आप? हमने आपकी आवाज पहचान ली। सब ठीक है आपके यहाँ?
3: आते हैं तो चार चांद लग जाते।
0: क्या बात है तो क्या बात है। और अगला गीत चलेगा तुम इतनी सुंदर हो, यशुदास की आवाज में।
3: बहुत बढ़िया है। मैं कल मेरे बेटी आ रही है,
0: हाँ
3: मॉरिशस आ रही है, उसके बेटे बेटी और उसके पति।
0: हाँ
3: यहाँ मेरे दो बेस्ट फ्रेंड हैं,
0: हाँ
3: निर्वाण और
0: ओके सो उनके नाम भी हम चलाएंगे एक प्यारा सा गाना। और एक दूसरे लाइन पे मिलेंगे। हेलो
4: हेलो बेटा प्रताप, नमस्ते।
0: नमस्ते माता जी, आप कौन है?
4: हम कमला नुगल फोर्स से।
0: हाँ स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है
4: सब ठीक बेटा,
0: सब ठीक है। बोला
4: गीत मांगा था सुनवा को, अभी तो नहीं बा
0: ढूंढेंगे, समय रहा तो चलाएंगे। है
4: तुझे सूरज कहूँ या चंदा,
0: तुझे ओके ढूंढेंगे।
4: हाँ हाँ एक फूल दोमाली के गीत है,
0: हाँ
4: दो नाती के लिए, एक है विहान ईशान, पापा विक्की, मामा हिना, मैं हूँ दादी कमला, दादा गाज,
0: ओके
4: दो फूफू है, एक साधना एक रेशमा,
0: ओके
4: सबके लिए
0: सबके लिए चला देंगे प्यारा सा गाना। और मंजुला कावली से गीत आपके पति संदीप के नाम, और यही गीत हम चलाएंगे बहन के नाम रतन। कियारा, हाय कियारा, दिनेश नमस्ते। कियारा की ओर से गीत दिव्या और कृष के नाम। शोआ किम भी हमारे साथ दे रहे, थैंक यू। कौतिक, सुबिता, दानिला भी हमारे साथ है। दानिला की ओर से शोबेन के नाम जाएगा ये गाना। और थियोले के सबका कच्चा परिवार है, वहाँ पर कच्चा परिवार, हरकू परिवार, चिराखंड परिवार, और चिबुग, लोंग, राजा, प्रवीण, भैरव, नानो, संजीव और सुदेश जसवा, यह गीत आपके नाम भी। राजमन्ना भी बहुत प्यार से हमें सुनते हैं और सुन रहे हैं। सासी बनमाली जी, इस प्यार मोहब्बत के शुक्रिया। और राविश मंदू जी, यह गीत उनके पापा मामा, उनके भाई भाभी, सब परिवार के नाम। हाय प्रीतम दीनू, बहुत प्यार के साथ आप हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, सो यह गीत आपके नाम भी जाता है। और दिव्या और कृष भी हमारा साथ दे रहे हैं। दिस इज द सॉन्ग डेडिकेटेड टू दिव्या एंड कृष फ्रॉम कियारा। और यही प्यारा सा गाना हम चलाएंगे उन सभी दोस्तों के नाम जो हमें टिकटॉक पर देख रहे हैं, रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर, और जो हमें रेडियो मॉरिशस पर सुन रहे हैं, सभी दोस्तों के नाम जो लोग घर पे है, घर से बाहर है, कुछ लोग विदेश में हैं और वहाँ से भी हमें सुन रहे हैं, यह गीत आपके नाम भी चाहता है। ये गीत शुमा बंधन जी के नाम, उनकी माता जी, उनके भाई, उनके नीसेज और सूरज जी के नाम भी।

0: वाह वाह जी वाह, कितने प्यारे प्यारे गीत चल रहे हैं आप लोगों के, और आप भी हमारे संग संग झूम रहे, गा रहे, मुस्कुरा रहे। अच्छी बात है, सुबह सुबह मुस्कुराना हंसना बहुत अच्छी बात है, हृदय के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर हम रोज़ हम हंसे मुस्कुराएं तो बहुत सी बीमारियों से हम जो है हम राहत पा सकते हैं। यस, यू हैव टू लॉफ एवरी डे, इसको लॉफ्टर थेरेपी कहते हैं। और एक ऐसा गाना आ रहा है जी हाँ, जिसे सुनकर आप हंसने लगेंगे, गाने लगेंगे और झूमने लगेंगे। बहुत ही प्यारा सा गाना, जिसमें सभी फिल्मों के नाम हैं, जितनी बॉलीवुड में फिल्में हैं उनके नाम इस गीत में है। हंसी मजाक से भरपूर गाना, पिक्चर आइज ऑन कमल हसन एंड रति अग्निहोत्री। जी हाँ, फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए मेरे जीवन साथी। ये गीत जाएगा लक्ष्मण सिगोबिन जी के नाम, वाकवा से है, राफिक मोहित तयाग से, साइलेंट की ओर से गीत जाएगा, उनकी बेटी परी, पत्नी रानी, रीता की ओर से, उनकी दो बहनों के नाम अमृता रेणुका के नाम। और ये गीत जाएगा साइलेंट की ओर से, उनके नेफ्यू माधव भैरव के नाम, चाचा माधव। माधव अपने चाचू साइलेंट से बहुत प्यार करते हैं, चाचा भतीजा का ये प्यार हमेशा कायम रहे। कवि, टीना, माला, सब, रीना और भैरव परिवार के नाम। संदेश जी की ओर से ये गीत उनकी पत्नी लता, बेटी अंजलि, शिवानी और दामाद के नाम। आशा जानू को देते से है, उनके पूरे परिवार की गीत जाएगा। उषा कुंज बिहारी और नीलिमा ये गीत आपके नाम भी। और प्रवासी गिबन हमारा साथ दे रहे हैं, सलाम वालेकुम, यह गीत आपके नाम भी। और चलिए एक साथ सुनते ये प्यारा सा गाना।
1: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
2: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
1: ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।

0: हिंदी कविता है ना?
1: हाँ।
0: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
1: तुम और हिंदी कविता?
0: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी, प्यार किए जा, जवानी दीवानी, खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर।

0: शोर
1: भूल गए
2: जाने मेरा नाम
1: अच्छा
2: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: प्यार का मौसम
1: बेशरम

0: काश हम रोज ऐसा ऐसे हंसा करे, हंसते रहे तो सभी लोग 100 साल तक जी पाएंगे, क्या बात है। खुदा भी आसमान से जब जमीन पर देखता होगा तो क्या सोचता होगा कि मेरी महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। यस, वंडरफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी धरती। अजय की ओर से गीत जाएगा चिकोरी परिवार के नाम, मौलाशो के अजय फ्रांस में है। ओके, प्रवासी गिवन यह गीत आपके नाम भी जाएगा बहुत बहुत प्यार के साथ। और यही गाना हम चला रहे हैं चंद्र सोना के नाम, दीपक भाई आपके नाम भी यह गीत जाएगा। यह गीत मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के वेटरनरी सेक्शन रेजी में जितने जनरल वर्कर है, जितने कर्मचारी है, जितने वेटरनरी डॉक्टर है, जितने भी लोग वहाँ काम करें इस समय रेजी में हमें सुन रही है इन द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मग्स। यह गीत आपके नाम वरुण गणेश, गीत आपके नाम, आपकी पत्नी और बच्चों के नाम सत्यम सोनू फ्रॉम मोताबा, सब शिवरतन परिवार, सोनू परिवार के नाम मुकेश गंगा जी, यह गीत आपके नाम भी जाएगा। और अभी एक दो सैलान पे उनसे मिलेंगे। 4028085 हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, नमस्ते
1: प्रणाम भाई जी।
0: प्रणाम, आपका नाम?
1: आप कैसे हैं भाई जी?
0: मैं ठीक हूँ, आपने अपना नाम नहीं बताया।
1: मैं समांता गुलाब हूँ।
0: आपका स्वागत है समांता।
1: पहली बार बात कर रही हूँ भाई जी।
0: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बोलिए।
1: मैं कोकावार्ड रोबिनसन क्यूपिक से बोल रही हूँ।
0: हाँ।
1: मेरे बेटे का जन्मदिन था।
0: क्या नाम है?
1: खनेश्वर गुलाब।
0: हाँ।
1: खनेश्वर गुलाब का जन्मदिन था ऑन द 16th of July 2026।
0: ओके
1: ओके। He get 23 years old.
0: आ, 23 साल के हुए है, बहुत okay. अच्छी बात है।
1: Sorry for the Hindi, I cannot,
0: कोई बात नहीं, कोई मैं समझ रहा हूँ।
1: Okay, बधाई उसके तरफ, हमारे पूरे परिवार की तरफ से, मैं, उसकी माता जी, उसके पिताजी अमित, उसकी बहन युशी, उसकी दादी रेनुका,
0: हाँ जी,
1: और मेरी बहू जैशा,
0: उन सभी की ओर से एक प्यार सा गीत। तो जितनी भी लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं आज, यह गाना आपके नाम और स्पेशली रतन स्पेशली नटराज रामकरण जी अपना जन्मदिन मनाया 23rd July को। बधाई और प्यार उनके मम्मी पापा, भाई बहन, उनके टीचर मिस्टर प्रताप और उनके बेस्ट फ्रेंड प्रताप की ओर से उन्हें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। यह प्यार सा गाना आप सभी के नाम भी। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा किसी को किसने क्या बनाया सोचता होगा। इसी गीत के साथ में आपसे इजाज़त चाहेंगे। सुबह का नजाना प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होने जा रहा है और सुबह के 6 बजे से अभी तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया। आपके फ़ोन कॉल्स, आपके SMS और TikTok पर हमें देखने के लिए, रेडियो पर हमें सुनने के लिए शुक्रिया। हमारी आपकी मुलाकात होगी आज शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे तक नई सोच और दिलों की आवाज़ प्रोग्राम के साथ ऑन ऑरियन फ्री रेडियो मनोरंजन। Till then, it's goodbye from me. Aaj Pratap Singh ki aur se aap sabhi ko pyar bhara namaskar. Love you all. God bless. Namaste.

0: किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी हैं आस्था, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते आस्था।
2: नमस्कार जी, हर 9 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल को मंजूरी दी गई है, जहां कैबिनेट ने इन दोनों विधेयकों को राज्यसभा में पेश किए जाने की मंजूरी दे दी है। कल इन विधेयकों के माध्यम से बजट 2026-2027 में घोषित टैक्स और आर्थिक एवं वित्तीय कदमों को लागू करने के लिए कुल 83 कानूनों में संशोधन लाया जाएगा। कैबिनेट ने जानकारी दी कि हाउस होल्ड रूफ टॉप सोलर फोटोवोल्टाइक ग्रांट स्कीम आज से शुरू हो गई है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को सोलर पीवी सिस्टम लगाने की लागत का 25% अधिकतम 75,000 रुपये तक का ग्रांट मिलेगा। इस योजना के लिए बजट में 270 मिलियन रुपये का प्रावधान किया गया है। अन्य खबरों में, मॉरिशस में इजिप्ट के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर कल शुक्रवार को क्यूपिप नगर पालिका में एक आधिकारिक समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम, सरकार के सदस्य, राजनयिक समुदाय के प्रतिनिधि और अन्य आमंत्रित अतिथिगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर मॉरिशस और इजिप्ट के बीच मित्रता और सहयोगपूर्ण संबंधों को रेखांकित किया गया। मॉरिशस के निर्यातकों के लिए राहत की खबर है, जहां मॉरिशस से अमेरिका भेजे जाने वाली उत्पादों पर नया अमेरिकी अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाने वाला है। अगुआ के तहत शुल्क मुक्त सुविधा जारी रहने से लगभग 8 बिलियन रुपए के अमेरिकी बाजार तक मॉरिशस की पहुंच बनी रहेगी। इससे एशिया कपड़ा उत्पादक देशों की तुलना में मॉरिशस को बड़ा लाभ मिलेगा। कई महीनों तक वॉशिंगटन में चली कूटनीतिक बातचीत के बाद ये सफलता मिली है। मॉरिशस में पानी की स्थिति अभी चिंता का विषय बनी हुई है। कम वर्षा के कारण जलाशयों और भूजल का स्तर लगातार घट रहा है। फिलहाल ऊंचे इलाकों पर पानी की कटौती की जा रही है, लेकिन अगर ये सूखा जारी रहता है और अन्य इलाकों में इसका असर पड़ता है तो अन्य कदम भी उठाए जाएंगे। विदेश स्तर की खबरें जो सुर्खियों में है, उनमें स्पेन की राजधानी मैड्रिड के पास लगी भीषण जंगल की आग लगातार फैलती जा रही है। 3 अलग अलग आग एक साथ मिलकर बड़े जंगल की आग में तब्दील हो गई है, जिस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। हालात को देखते हुए स्पेन सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।

अरे गुनी बुलाने से क्या होगा, जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा, अरे गंदे पानी पीकर प्यास बुझा लिया तो कुआं में डुबकी लगाने से क्या होगा। जब घर के बेटा बाप को मार दिया तो जब घर के बेटा बाप को मार दिया तो अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब घर की आटा गीला हो गई तो अब परथन मिलाने

0: की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। रेडियो मॉरिशस के लहरों पर मैं हूं रत्ना, आप पहुंची हूं आज की चर्चा कार्यक्रम को लेकर। वैसे कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, पर देरी इसीलिए हुई क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं कुछ ऐसे महारथी जो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम कला से संबंधित बातें करेंगे क्योंकि कला हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और अभी जैसे कई सारे युवा, कई सारे बच्चे वेकेशंस में वे से गुजर रहे हैं, तो वेकेशन का पूरा पूरा लाभ किस तरह से उठाना है, किस तरह से उसे और प्रोडक्टिव बनाना है, किस तरह से उसे और बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अपनी कला के साथ हमें कैसे जुड़ना है, इस पर आज का ये कार्यक्रम हम आधारित रखेंगे। और कला हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, साथ ही साथ इसकी आवश्यकता आर्ट गैलरी तक कैसे पहुंचती है और किस तरह से ये जीवन को और भी मायने देता है, इसी पर आज का ये कार्यक्रम आधारित रखेंगे। और आज हमारे साथ जुड़ेंगे आर्टिस्टिक, बिल्कुल एक्शन ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी के प्रेसिडेंट श्रीमान निशाल प्रभु जी, और उन्हीं के साथ आई हुई हैं उन्हीं की एक छात्रा, उन्हीं की एक शिष्या और एक आर्टिस्टिक तरह से हमारे साथ जुड़ेंगी सबीना गदाधर। तो आइए उन दोनों का हम स्वागत करते हैं। निशाल जी और सबीना, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल कला से जुड़ी हुई बातें हम करेंगे। वैसे हमारे श्रोताओं को हम बता दें कि इस वक्त आप स्टूडियो को देख सकते हैं, कितने सारे रंगों से सजाया गया है, जो इन्हीं के हाथों से बनाए हुए कला के जो चित्र है वो हम प्रस्तुत करेंगे अभी थोड़ी ही देर में। तो चलिए आज हम बात करते हैं निशाल जी से, जो कि एक प्रेसिडेंट है और कला के क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। निशाल जी, हम तो पहले यही जानना चाहेंगे कि आप कितने वर्षों से कला के साथ जुड़े हुए हैं।
1: देखिए, मेरा जैसे बचपन से शुरू हुआ, लेकिन 22 ईयर्स से मैं एक्टिवली आर्टिस्ट कर रहा हूँ।
0: मतलब आप इसी क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। और आपको, आपकी रुचि किस उम्र से जागी कला की ओर?
1: वैसे देखे तो मैंने शुरू किया, मुझे बचपन से ही रंगों से खेलना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब मेरे जो माता पिताजी, उन लोगों ने भी मुझे डिस्करेज नहीं किया और भी
0: एनकरेज किया।
1: तो बाद में जब मैं स्कूल गया, कॉलेज गया
0: जी,
1: वहाँ पर बहुत से अच्छे टीचर मिले जो जिसने मुझे इंस्पायर किया। तो मैंने छोटी मोटी मिस्टेक से, लेकिन अब उससे जो प्रेम था वो कला से, तो वो बढ़ता गया। यूनिवर्सिटी गया, और कोर्सेज किया। शायद 10 साल तक मैंने आर्ट सीखा, आर्ट वो भी डिज़ाइन भी, डिफरेंट इंस्टीट्यूट भी गया। तो
0: उसी का आज आप यहाँ पर एक प्रेसिडेंट है। और बिल्कुल एक्शन ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, हमारे श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि आपने जिस तरह से हमें समझाया, मैं समझती हूँ आपने अपने ड्रीम्स को फॉलो किया, आपके मन में जो था आपने उसे साकार किया, उसे हासिल किया, और आज आप एक प्रेसिडेंट हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के। तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे एक्शन ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी ये क्या है।
1: तो ACA या AAC हमारे देश का सबसे पुराना आर्ट एसोसिएशन है।
0: ओके,
1: तो नेक्स्ट ईयर हम 40 ईयर सेलिब्रेशन करेंगे।
0: वाओ।
1: उसका जो पहला प्रधान था उसका नाम है ज्ञानेश्वर दुर्स्वा। वो भी एक जैसे पायोनियर आर्टिस्ट बोलते हैं कि उन्होंने ही आर्ट का शुरुआत किया। स्कल्पचर पहले और थे, लेकिन वो यूनिवर्सिटी तक जब बनाया गया तो उन लोगों ने ही यूनिवर्सिटी को शुरुआत किया। तो उसके बाद देव चुरारमन जी आए, वो भी बहुत बड़ा कलाकार है। तो अब हाल ही में मैं 2 ईयर्स अब कंप्लीट हो लेने जा रहा है, तो मैंने वो प्रेसिडेंट लिया हमारे जो एसोसिएशन का। 40 ईयर्स होगा नेक्स्ट ईयर, तो 40 मेंबर्स हैं। तो वो डिफरेंट आर्ट फील्ड में है, जो जैसे कला कहते हैं सिर्फ पेंटिंग नहीं है, स्कल्पचर भी हैं, अब डिजिटल आर्ट है, फोटोग्राफी है। तो सब अब सबीना आई, वो क्यूलिनरी आर्टिस्ट हैं, लेकिन क्यूलिनरी आर्टिस्ट से वो थोड़ा इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट बन गई। तो सब जो हम हमारे

0: ये जो एसोसिएशन है सिर्फ बड़े आर्टिस्ट को चांस नहीं देता,
1: यानी छोटे जो यंग
0: जो शुरू कर रहे हैं उन लोगों को मोटिवेट करना, और बहुत से ऐसे प्रदर्शन करते हैं और वर्कशॉप करते हैं जहाँ पर हम स्टूडेंट को एनकरेज मोटिवेट करते हैं।
1: ओके, तो यानी आपके यहाँ पर जैसे आप बता रहे हो केवल पेंटिंग या स्केचिंग नहीं है, इसके अलावा बहुत वास्ट है। और मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, आजकल पेंटिंग में भी बहुत ज़्यादा क्षेत्र बन गया, यानी स्केच है, साथ ही साथ क्ले है, डिजिटल आर्ट है, और आप जैसे बोल रहे हो कलिनरी आर्ट है, तो इसमें जैसे विशेष आपका फोटे क्या है, आप किस क्षेत्र में ज़्यादा माहिर हैं?
0: तो मैं ज़्यादातर पेंटिंग करता हूँ, लेकिन मेरा पेंटिंग थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मेरा जैसे काम करने का तरीका वो पहले सिर्फ हमारे मॉरिशस रंग का था, रेड ब्लू येलो ग्रीन। अब थोड़ा बहुत मैंने वो एक इवोल्यूशन आया, तो मेरा एक मिक्स टेक्निक है जो बहुत यूनिक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर है, वहाँ पर है, ये वाला मेरा आर्टवर्क है।
1: okay.
0: तो उसमें मैं पेंटिंग करता हूँ, वो प्रिंटिंग करता हूँ, एयरब्रश यूज़ करता हूँ, और बताता हूँ कि वो जो प्रिंटिंग टेक्निक है वो बच्चों के लिए है।
1: अच्छा।
0: वो मैं बच्चों को सिखाते हैं।
1: अच्छा।
0: लेकिन वो टेक्निक कैसे बढ़ावा देकर एक आर्टिस्ट भी यूज़ करते हैं, तो जो भी सीखते हैं उसको ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ कर देंगे, लेकिन जब उन्हीं टेक्निक को लेकर हम थोड़ा सा अलग काम करें तो
1: बिल्कुल जैसे आप कह सकते हो कि यू कैन मेक मिरेकल्स आउट ऑफ इट, क्योंकि सच में देखा जाए तो आर्ट एक ऐसी दुनिया है जो आपको अपने अंदर बिल्कुल समाहित करती है, अब्सॉर्ब होते जाते हो और आप की एक अलग ही दुनिया आप रचते हो, एक अलग ही क्रिएटिविटी जो आपके हाथों से आप कैनवस पर उतारते हो। यहाँ पर हमारे साथ सबीना भी जुड़ी हैं। सबीना, आप कितने सालों से आर्ट या पेंटिंग के इस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई हैं?
2: मैं बचपन से पेंटिंग करती हूँ, पेंटिंग और क्राफ्टिंग भी करती हूँ। तो मुझे जब मैं प्ले करती थी अपने डॉल के साथ, तो मैं अलमारी बनाती थी, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है।
1: ओके,
2: जब खेलती थी डॉल के साथ। फिर स्कूल में कंपटीशन था, तो मैंने ट्राई किया कंपटीशन, फिर कॉलेज गई तो और कंपटीशन करने लगी। स्कूल में या फिर कोडाउन में कंपटीशन था, तो मेरा जर्नी स्टॉप हुआ फॉर्म फाइव में, क्योंकि फॉर्म फाइव हम लोग मोर फोकस होते हैं
1: एकेडमिक लेवल पर, बिल्कुल।
2: तो एनकरेजमेंट नहीं मिला, क्योंकि लोग कहते थे वहाँ पे जॉब प्रोस्पेक्ट कम है।
1: हाँ, सही।
2: हाँ, तो फिर मैं एकेडमिक जर्नी में गई, तो बिजनेस करने लगी, मैनेजमेंट करने लगी। फिर मेरा जर्नी चेंज हुआ, तो मैंने केक बनाया। स्टार्टिंग वाज मेकिंग केक, मैंने केक बनाया, तो मुझे ऑर्डर्स में मिला डिफरेंट टाइप ऑफ केक टू मेक। मुझे डॉल बनाना था, फिर स्टार्टिंग आई स्टार्ट टू मेक केक चॉकलेट से स्कल्पचर करना था।
1: ओके,
2: चॉकलेट से स्कल्पचर करना था, शुगर पेस्ट से स्कल्पचर करना था। तो मैं पोस्ट करने लगी, तो निशाल जी हम लोग काम करते थे साथ में, तो उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया, क्योंकि वो एक और टीचर था।
1: बिल्कुल,
2: हाँ
1: बिल्कुल।
2: तो स्पोर्ट्स डे में काम करने लगी उसके साथ, तो बहुत सी इंस्पिरेशन आई, क्योंकि उसने क्रिएट किया एक गाड़ी। हाँ, उसने किया एक गाड़ी क्रिएट किया, तो वो मुझे लगा कि दिस इज अमेजिंग, आई कैन डू सेम, आई कैन डू मच बेटर, देयर इज नो बाउंड्री, नो लिमिट, व्हाई आई एम लिमिटिंग माई सेल्फ।
1: बिल्कुल।
2: हाँ, तो फिर मैं थिंक करने लगी हायर, टू थिंक मोर हायर। फिर उसने मुझे कहा, मिस आप बना सकते हैं कुछ पेंटिंग? मैंने कहा क्यों नहीं, ट्राई कर सकती हूँ। तो कैनवा, मेरा पहला कैनवा, लाइफ में पहला कैनवा एग्जिबिट हुआ अनंता में।
1: ओहो,
2: हाँ, तीन कैनवा बनाई।
1: हाँ,
2: तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं ये कर सकती थी,
1: यानी वो अंदर कहीं पर छुपा हुआ था, जो आपको पहले से शौक था, वो कहीं पर उभर कर बाहर आया।

0: और इसमें निशाल जी ने आपको बहुत इंस्पायर किया।
1: तो फिर आई नेक्स्ट इवेंट वर्ल्ड ऑडी, तो उसने कहा थीम है स्पाइसेस। मैंने कहा मैं क्या बनाऊँ, एक ट्रोम्प ऑय बनाऊँ ट्रोम्प ऑय, या फिर कुछ कंक्रीट से एक चिली बनाऊँ। उसने कहा मिस आप सोचो,
0: आप खुद देखो क्या बना सकते हो,
1: क्या बना सकती है। तो हम गए नेल्सन मंडेला, तो साइड देखा, उसने कहा ये देखो ये है जगह, क्या बना सकती है। तो सम पिक्चर क्लिक किया, फिर मैं गई घर पे और सोचने लगा। और फिर हम साइट डिफरेंट साइट पे विजिट करने लगे, जैसे कि अप्रवासी घाट। उसने कहा ये देखो ये है एक बास्केट था
0: जी,
1: उसने कहा ये देखो ये डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट है।
0: ये मतलब आपने हर तरह के आर्ट को देखा और तब जाकर आपको कहीं ना कहीं आइडियाज उभरने लगे।
1: तो फिर नेल्सन मंडेला में मैंने क्या किया, तो पिक्चर क्लिक करने के बाद उसको चैट जीपीटी में डाला, अपनी स्केचबुक ली, ड्रॉ करने लगी डिफरेंट टाइप ऑफ बास्केट ऑफ स्पाइसेस। फिर चैट जीपीटी ने बनाया एक कॉम्बिनेशन ऑफ द स्केच एंड द बिल्डिंग। तो फिर आया ये इंस्टॉलेशन।
0: ओके,
1: तो ये एक पिक्चर था, नाउ मुझे ये रियलाइज करना है, रियल टू मेक इट रियल।
0: उसमें अब आपकी कारीगरी डालनी है उसमें।
1: तो थिंक करने लगी कैसे ये ड्रॉपिंग इफेक्ट बनाऊ, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया,
0: जैसे वो बनता गया।
1: बनता गया
0: जैसे जैसे आप उसमें जान डालते गए अपने हाथों से, वो बनता गया बनता गया। फाइनली एक तरह से एक वो स्पाइस के लिए आपने उसको तैयार किया। वो एक था वर्ल्ड आर्ट डे के लिए आपने तैयार किया। सो मैं समझती हूँ एक बहुत ही लाजवाब सा, और जैसे अभी थोड़ी देर पहले सबीना जैसे बता रही थी निशाल जी कि जॉब प्रोस्पेक्ट, कई बार ऐसा होता है कि आर्ट के क्षेत्र में कई बार हम कहते हैं कि आगे क्या करोगे, आर्ट बना कर क्या करोगे, इससे तो पैसे नहीं कमाए जा सकते, पेट नहीं भरा जा सकता। तो निशाल जी इस पर आपका परसेप्शन क्या है?
2: देखिए ये सच है, क्योंकि मैं भी जब आर्ट शुरू किया तो मेरे भी टीचर ने भी बोला देखो आर्ट में प्रोस्पेक्ट नहीं है। देखिए आज मैं आर्टिस्ट हूँ, मैंने पार्ट टाइम लेक्चरर किया, आर्ट एजुकेटर हूँ और प्रधान भी बन गया। तो ऐसे नहीं कि आर्ट में प्रोस्पेक्ट नहीं है, अगर दिमाग डाले दिल डाले तो कुछ भी हो सकता है।
0: बिल्कुल।
2: लेकिन अब जब इस विषय पर बात कर रहे हैं तो और सिर्फ और से नहीं कनेक्टेड होता है, और मतलब ग्राफिक डिजाइन होता है, अब डिजिटल डिजाइन हुआ, अब ये वीडियोग्राफी एक तरह की आर्ट है, क्योंकि फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी में ये होता है।
0: बिल्कुल।
2: वो जब 3D का मार्केट बनाते हैं, वो जैसे एक बिल्डिंग अब सोच रहे हैं बनाने के लिए, तो वो उसका इंटीरियर डेकोरेशन वो भी आर्ट है।
0: आर्ट है। और
2: फैशन डिजाइन जहाँ पर हम
0: कपड़ों से काम करते हैं
2: वो भी, वो जो डिजाइन प्रिंट करते हैं वो भी आर्ट से रिलेटेड है।
0: खान पान की जैसे बताया कि केक में भी आप आर्ट डाल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो वैसे देखें तो होटल का प्रोस्पेक्ट है।
0: बिल्कुल।
2: और तो ऐसे देखें तो बहुत से जो इवेंट मैनेजर करते हैं
0: उसमें भी दिखाई है आर्ट है।
2: वो एक चीज बोलते हैं, और डायरेक्टर्स वो लोग क्रिएटिव थिंग सोचते हैं।
0: बिल्कुल।
2: तो ऐसे क्या करें जो अलग हो, तो वो आर्टिस्ट बन गया। वो जो माइंडसेट होता है, जो ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी का काम है, वो आर्टिस्ट का है।
0: बिल्कुल।
2: तो आर्ट मतलब सिर्फ पेंटिंग का नहीं
0: वास्ट है। बहुत वास्ट है। देखा
2: जैसे
0: जाए
2: आपका
0: तो
2: डेकोरेशन बहुत सुंदर है।
0: इसमें भी आर्ट की जरूरत पड़ती है। कलर कॉम्बिनेशंस किस तरह से होने चाहिए, और मैं समझती हूँ अगर आप कहीं पर ग्राफिक्स या ग्राफिक डिजाइनिंग में भी काम करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक जो आपका मन का जो कोना है उसको आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो डेफिनेटली, तो यहाँ पर मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी निशाल जी कि आपकी लाइफ में जब आपने शुरुआत की तो पहले चैलेंजेस क्या क्या आए थे, क्योंकि मैं समझती हूँ हर एक इंसान के जीवन में एक टाइम होता है जब उन्हें बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो आर्ट के क्षेत्र में आपको कौन कौन से चैलेंजेस आए?
2: पहले तो बड़ा सा चैलेंज हुआ कि हमारे जो यंग आर्टिस्ट को वो चांस नहीं मिलता और बहुत से जो सीनियर आर्टिस्ट है बोले कि अब तुम नहीं कर पाओगे तो डिस्करेज कर देते हैं वो या ऑर्गेनाइजर्स, तो उससे मुझे बहुत कैसे बोले डिस्करेजमेंट मिला लेकिन मेरा जो अंदर का जो आर्ट है वो जैसे एक रिवॉल्यूशन हुआ। मैंने बोला देखो मेरा जो मान सम्मान है आर्ट का जो प्यार है वो कोई नहीं मिटा सकता, तो मैंने अपने आप से वो आर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। मैंने नहीं सोचा कि वो मिनिस्ट्री आर्ट से वो हेल्प
0: मिलेगा,
2: क्योंकि वहाँ पर जो भी आता है वो कुछ ना कुछ बोल के जाता है कि मेरा दिमाग खिल जाता है। तो मैंने अपने आप से शुरू किया वो फर्स्ट एग्जीबिशन। मैंने साल वो जो रोजिल में गा रही था तो अब नहीं है लेकिन बहुत अच्छा था, तो वहाँ से शुरू हुआ गैलरी बॉक्स बोले। तो एक हुआ वहाँ पर मैंने कोलैबोरेटिव किया मेरे दोस्त के साथ, फिर अपने टीचर के साथ एग्जीबिशन किया, फिर बनता ही गया। तो उससे क्या हुआ एक्सपीरियंस मिला वो आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो हमारे जो एक्सपीरियंस लाइफ का जब हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: और एक्सपीरियंस देता है, तब से आज तक मैं सिर्फ यही करता हूँ।
0: और आपने देखा है कि मतलब आपको जब एक आपने एक चीज ठान ली है आप आगे बढ़ोगे तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं।
2: लेकिन मेरा अलग है क्योंकि मैं औरों को डिस्करेज नहीं करता,
0: बिल्कुल
2: मैं एनकरेज करता हूं।
0: नहीं और मैं समझती हूँ जीवन में हमें यही तो सीखना है, और मैं समझती हूँ जब हम एक आर्ट के क्षेत्र के साथ जुड़ते हैं तो वो आपको एक अलग से पहचान देते हैं, और वो आप जब कहते हैं ना कि हम दूसरों को उभारने के लिए मेहनत करते हैं तो आपकी आपकी जो छवि है वो अपने आप उभरती चली जाती है। और जैसे आप एक टीचर भी हैं आप दूसरों को एनकरेज करते हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी निशाल जी अभी फिलहाल प्रेजेंट में आपके साथ कितने स्टूडेंट्स या कितने ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं आर्ट के साथ?
2: वो हमारे एसोसिएशन में
0: जी
2: वो 40
0: स्टूडेंट्स हैं। तो जैसे 40 लोग हैं,
2: 40 स्टूडेंट्स नहीं 40 आर्टिस्ट हैं।
0: ओके
2: लेकिन जब हमारे स्टूडेंट वो कंप्लीट कर देते हैं
0: या
2: वो यूनिवर्सिटी हो गया तो उन लोगों को हम एनकरेज करते हैं आने के लिए। लेकिन जब वो स्टडीज कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जहाँ पर उन लोगों को घींचते हैं, एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं
0: जी।
2: तो उससे क्या होता है उन लोगों का प्यार और भी बढ़ जाता है आर्ट के।
0: बिल्कुल, और मैं समझती हूँ अगर उनको एक क्लियर पाथ मिले, उनको एक गाइडेंस मिले, तो ये एक बहुत आसान हो जाता है उनको चूज करने के लिए कि उनको किस दिशा में आगे जाना है। निशाल जी आप एक टीचर भी हैं आर्ट की तरफ में, तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जब कोई बच्चा या जब कोई यंगस्टर आर्ट के दिशा में जाते हैं तो उनका जो स्किल डेवलपमेंट है, पर्सनल स्किल डेवलपमेंट, उसमें आपने क्या चेंजेस देखे हैं?
2: देखिए वो जहाँ पर वो क्या होता है कि ग्रेड 9 में बहुत बच्चे बहुत अच्छे करते हैं तो वो नेशनल एग्जाम होता है, वो जैसे उन लोगों ने पेपर डिज़ाइन किया और वो स्टूडेंट को इंस्पायर्ड होता है उन्हें वो आर्टिस्ट इंटरनेशनल या लोकल, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से चित्र
0: जी
2: मैंने लाया कुछ इंटरनेशनल का है कुछ लोकल का है।
0: ओके
2: तो जब हम वो प्रदर्शन करते हैं तो उन लोगों को ये चांस मिलता है, तो मैं आर्ट को एक एक्टिविटी बेस जैसे करता हूँ, वो प्रैक्टिकल है लेकिन बच्चों को चाहिए कि वो उसमें मज़ा आए, उसमें वो एन्जॉय करे उसका जो टॉपिक है। तो मैं जब क्लासेस करता हूँ शायद 2-3 बार में म्यूजिक डाल देता हूँ तो वो इंटीग्रेट हो जाता है
0: बिल्कुल।
2: वो आउटडोर करते हैं, बच्चों को एग्जीबिशन लेके जाते हैं, उन लोगों को पसंद हो जाता है
0: बिल्कुल।
2: तो ऐसे चाहिए कि उन लोगों को फोर्स नहीं करना चाहिए लेकिन उन लोगों को ऐसे और सिखाना चाहिए कि उन लोगों को ऑटोमेटिकली
0: उसमें मजा आए अपना इनपुट उनका ये होना चाहिए कि वो मतलब सब कुछ भूलकर पेंटिंग करें। और सबीना, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, जब आपने पेंटिंग करना शुरू किया या जब आप पेंट करती हैं या जो भी क्रिएटिव काम करती हैं उसमें फिर आपका पर्सनल जब आप डालती हैं तो आप

0: उसका एक कैसा अनुभव होता है? हाउ डू यू फील कि आप जब उसमें एंग्रॉस्ड हो जाती हैं, इमोशनली कनेक्टेड हो जाती हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे होता है?
1: तो पहले आर्ट एक एक्सप्रेशन फॉर्म है,
0: mm-hmm.
1: तो जो भी इमोशन होता है काम पे होता है.
0: बिल्कुल.
1: जैसे कि मैं जब केक बनाती हूँ, अगर मेरा मूड खराब है तो ये केक पे आ जाता है. तो इसलिए इमोशन हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट होता है अपनी काम पे.
0: ट्रू.
1: ये है पहली बार.
0: बिल्कुल.
1: और जब मैं पेंट करती हूँ तो इमोशन रिलीज करती हूँ और अपने आप को इम्प्रूव करती हूँ. अपने आप को इम्प्रूव करती हूँ, दूसरों के काम भी देखती हूँ, डिफरेंट काम को देखती हूँ, इंस्पायर्ड होती हूँ.
0: तो जैसे आपको एक तरह से, आप पूरी तरह से उसमें खो जाती हैं इमोशनली.
1: हाँ.
0: आपने जैसे कहा कि एक तरह से, जैसे हम म्यूज़िक की बात करते हैं, डांस की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आर्ट भी एक तरह से इसी तरह का एक फॉर्म है जहाँ पर हम अपने इमोशंस के साथ उसमें जुड़ते हैं. तो ये कह सकते हैं निशाल जी कि जो लोग आर्ट के किसी भी फॉर्म के साथ जुड़ते हैं वो इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं?
2: ऐसे कर सकते हैं कि उन लोगों का शायद वो और एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है. तो शायद हम बात न अच्छे से एक्सप्रेस न कर सकते.
0: हाँ, हाँ.
2: लेकिन जब हमारे कला से हम बात करते हैं तो हमारे इमोशन वो आ जाता है वहाँ
0: जी,
2: पर
0: जी.
2: तो और एक थेरापी है.
0: बिल्कुल.
2: जिसमें जो भी स्ट्रेस है, जो भी चीज है, वो हम निकाल सकते हैं.
0: तो जैसे एक तरह से आप उसमें पूरी तरह से भूल सकते हो अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको थोड़ी देर के लिए हम उससे निकलकर एक दूसरी ही दुनिया में अलग जा सकते हैं. तो देखा जाए तो आज हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बहुत ज़्यादा बात करते हैं. एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जैसे सभी नाब ने भी कहा कि सभी लोग कहते हैं कि एकेडमिक में फोकस ज़्यादा करो क्योंकि इसमें ज़्यादा हाई प्रोस्पेक्ट है. पर आर्ट की जहाँ पर हम बात करते हैं तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमें पूरी तरह से, कई बार ऐसा होता है कि आप एक आर्ट का शुरू करते हो तो उसे कहीं पर ऐसा लगता है कि बीच में नहीं छोड़ना चाहिए. ऐसा होता है कि उसको कंप्लीट करते जाओ, इट गोज ऑन फ्लोइंग. तो इस पर एज अ टीचर आपको क्या लगता है कि बहुत बच्चे एनकरेज होते हैं या कई बार ऐसा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है इसीलिए उसको ड्रॉप कर दो?
2: ये हो रहा है मॉरिशस में. क्या हो रहा है कि जो बच्चे आर्ट को अच्छी तरह से करते हैं वो और नहीं करते क्योंकि वो सब सब्जेक्ट में अच्छे हैं. तो जो शायद थोड़ा बहुत कर सके और जो दूसरे जो सब्जेक्ट में है वो भी वीक है तो वो आउट लेते हैं. तो उन लोगों के साथ अब काम करना है तो बाद में शायद थोड़ा बहुत वो कठिनाइयां हो जाता है. लेकिन फिर भी अगर हम कह सकते हैं कि आजकल बहुत से कैसे कहें, लेजर एक्टिविटीज होता है.
0: हाँ.
2: वो मोबाइल हो गया.
0: हाँ.
2: अब जैसे बहुत पार्क्स हैं.
0: बिल्कुल. तो स्पोर्ट्स है वगैरह.
2: स्पोर्ट्स
0: हाँ.
2: अच्छा है.
0: हाँ.
2: लेकिन जब लेजर एक्टिविटीज जो बाहर हो जाते हैं, वो घूमने फिरने का, गेमिंग करने का, वो
0: बाहर तो हाँ बिल्कुल. जैसे
2: बच्चे का कंसंट्रेशन सेम नहीं है.
0: वो थोड़े जैसे अनफोकस्ड रहते हैं.
2: अनफोकस्ड है
0: बिल्कुल.
2: लेकिन ऐसे एक एज होता है तो उन लोगों सिर्फ को कंट्रोल करना है.
0: बिल्कुल.
2: तो बाद में अपने आप से वो सीरियस बन जाते हैं.
0: बिल्कुल. मतलब शुरुआत में ही थोड़ा सा उनको गाइडेंस चाहिए और जो उनको दिखा सके कि कहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस्ड रहना है. तो बिल्कुल आज हम आर्ट पर बात कर रहे हैं और आर्ट कितना आवश्यक है या फिर वो किसी भी फॉर्म का आर्ट हो सकता है. और जैसे निशाल जी ने अभी हमने समझाया कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पेंटिंग और स्केचिंग ही आर्ट होता है. आगे चलकर इसमें भी बहुत ऐसे प्रोस्पेक्ट हैं जिस पर अगर हमें ध्यान दें तो जीवन में आर्ट, हर क्षेत्र में आर्ट को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायना मिलता ही है. तो चलिए एक गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं अभी थोड़ी ही देर में आज की चर्चा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने.

जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आज की चर्चा कार्यक्रम में निशाल प्रभु जी से, और सबीना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं आर्ट क्यों हमारे जीवन में ज़रूरी है। आपने देखा होगा बचपन में बच्चे स्केच पेन लेकर दीवारों पर कलर करते हैं उसे और सुंदर बनाने के, उनकी दृष्टि में वो उसे और सुंदर बना रहे हैं पर हमारी दृष्टि में वो दीवार को गंदा कर रहे हैं। लेकिन हम सच में कहना चाहेंगे कि जहाँ पर बच्चों को हम प्राथमिकता

0: देते हैं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ये उनका इमोशन है। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले सबीना हमें बता रही थी कि क्यों ज़रूरी होता है आर्ट, आइए जानते हैं सबीना जी बिल्कुल आर्ट का इम्पोर्टेंस आज के जीवन में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस तरह से हमें बता रही थी कि आर्ट किस तरह से हमें क्रिएटिविटी के साथ जोड़ता है, हम ज़रूर चाहेंगे आप भी इसे बताकर हमें, हमारे श्रोताओं को ज़रूर बताएँ।
1: तो आर्ट का इम्पोर्टेंस, ये हमें सिर्फ इमोशन पेंटिंग और सिर्फ इमोशन, हम हमारा इमोशन सिर्फ नहीं डालते हैं पेंटिंग में। आर्ट होता है क्रिएटिविटी और इनोवेशन, तो ये है हाईएस्ट स्किल। जब हम एक टैक्सोनॉमी है, ब्लूम टैक्सोनॉमी, जब हम देखते हैं तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन हाईएस्ट स्किल होता है। जब हम लोग स्कूल जाते हैं वहाँ पे एम्फासिस होता है कॉग्निटिव स्किल पर,
0: बिल्कुल,
1: मगर जब क्रिएटिविटी और इनोवेशन होता है वहाँ पे, जब बच्चे काम करने लगे अपने क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर, वो लोग क्रिएट कर सकते हैं एक बिजनेस,
0: बिल्कुल
1: एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। एग्जांपल जब देखते हैं मार्क ज़करबर्ग, तो उसने क्रिएट किया फेसबुक, ये है इनोवेशन। जब देखते हैं एलन मस्क को गाड़ी बनाते हैं, ये क्रिएटिविटी और इनोवेशन है। तो हाईएस्ट स्किल होता है क्रिएटिविटी और इनोवेशन। तो बच्चों को एंकरेज करना चाहिए और चूज करने के लिए, क्योंकि जब मैं बड़ी हुई खुद का लॉजिकल प्रैक्टिकल थिंकिंग
0: डेवलप
1: हुआ, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि एकेडमिक इम्पोर्टेंट है एक जॉब पाने के लिए, मगर खुद की चीज़ क्रिएट करने के लिए खुद का थिंकिंग होना चाहिए।
0: बिल्कुल, और ये केवल आर्ट के द्वारा, फिर वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आर्ट का कोई भी क्षेत्र हो, उसे आप चूज़ करें ताकि एक तरह से आप अपना खुद का कुछ क्रिएट कर सके। और ये मैं समझती हूँ, कहते हैं ना, एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप किसी और से मांगे नहीं, आप खुद उस चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करें ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। आपको कहीं पर कोई भी मुश्किल आएगी, आप उसमें से रास्ता निकाल लेंगे। जी हाँ, निशाल जी, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, अभी आपने हमें थोड़ी देर पहले बताया कि एक आर्ट एग्जिबिशन एक्सपोज ये किया गया है, तो ये इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, ये कहाँ पर है और क्या है इसका थीम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है?
2: तो ये एग्जिबिशन हो रहा है अनंत आर्ट गैलरी में, और उसका थीम है एको,
0: एको यानी गूंज,
2: गूंज।
0: ओके,
2: तो किसका गूंज? वो है, हमने एक वर्ल्ड आर्ट डे, इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल किया था, तो वो अप्रैल में होता है। तो ये हमारा 10वां या 12th शायद होगा। तो इसमें क्या हुआ, हमने इंटरनेशनल किया, क्योंकि हर बार जब हमने किया तो डिफरेंट प्लेसेस में किया, तो इस बार हमने एक रेजिडेंसी किया। और वो एक कैंप था जहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज से हमारे पार्टिसिपेंट आए, आर्टिस्ट आए, तो 24 आर्टिस्ट इंटरनेशनल थे वहाँ पर, लेकिन 19 मॉरिशस आए, तो 9 डिफरेंट कंट्री से। तो उसमें मॉरिशन आर्टिस्ट और इंटरनेशनल आर्टिस्ट मिलजुल के रहे, और बहुत से आर्ट एग्जीबिशन या आर्ट वर्कशॉप हुए। एक हुआ नेल्सन मंडेला में, दूसरा हुआ बोटानिकल गार्डन पॉम्पलिबुसेस में, और एक हुआ पॉलिटेक्निक्स पॉम्पलिबुस में, और एक लाइव पेंटिंग हुआ ओस्लागे में। तो बहुत से जो प्रदर्शन हुए और एक्टिविटी हुए, उसमें जो आर्टिस्ट आए थे उन लोगों ने पेंटिंग किया, स्कल्पचर किया। तो हमने सोचा कि इस सेलिब्रेशन को और बढ़ाए, तो हमने एक एग्जीबिशन किया कि एको, तो उसमें सब जो आर्टिस्ट का आर्टवर्क है हमने डाला, और उसमें बहुत से सहयोगी मिला। वो हमारे पार्टनर थे स्मॉथ मॉरिशस, वो उसका प्रधान है यश रामचंद जी। तो

0: और बहुत से मिनिस्ट्रीज आए, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टर्शियरी सेकेंडरी, और जो हमारे पुलिस फोर्स हैं उन लोगों ने भी हमारे हेल्प किया. तो एनजीओस थे, इंस्टीट्यूशंस थे जो यूनिवर्सिटी थे, तो एमजीआई आए, एमआई आए, पॉलिटेक्निक्स आए, और वो यूटीएमबी, तो और एसोसिएशन थे. हमारा एसोसिएशन का नाम है एक्शन फॉर आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, लेकिन हमारी तरह बहुत से ऐसे एसोसिएशन हैं. वहाँ पर हैं काल्म, लेगायो, और हैं वो अक्वागल के प्रधान रियाजुलादीन, और हैं तो एयरविन, तो एक है पोताश. वो लोग भी ऐसे जो आर्ट का प्रदर्शन ऑर्गेनाइज करते हैं. तो इसका अलग क्या हुआ, हमने सब लोगों को एक साथ लिया, क्योंकि वो जो वर्ल्ड आर्ट डे है वो जैसे एक आर्ट का बर्थडे है. तो इसका सेलिब्रेशन सिर्फ क्यों सिर्फ मैं करूं, तो साथ
1: जितने भी लोग आर्ट में हैं वो सभी लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया.
0: तो रीयूनियन आइलैंड से आर्टिस्ट आए, तो यहाँ पर एक आर्टिस्ट का नाम है वो चार्ली लेस्किल है, उसने भी बहुत से एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया. जब हम गए उन लोगों ने हमें इन्वाइट किया थाईलैंड में, तो अब वो नहीं आए लेकिन उसने एक ग्रुप क्रिएट किया रीयूनियन आइलैंड में, उन लोगों को बेचा. वहाँ पर दो म्यूजिशियन थे, एक गायक थे. तो ऐसी सेलिब्रेशन हुआ कि म्यूजिक था, गायक थे. तो मॉरिशस का भोजपुरी हमने उन लोगों को इंट्रोड्यूस किया, मॉरिशस का सिगा डांस हुआ. तो सब जब एक इंटरकल्चरल शेयरिंग था, तो ये उसका जो स्लोगन भी हमने बुलाया लेट्स सेलिब्रेट, अच्छा से हुआ. हमारा एक साइन था ऐसे, क्योंकि साइन लैंग्वेज में ये इसको W कहते हैं, सो वर्ल्ड ऑडी. तो ये भी बहुत चला, क्योंकि सब लोग जो आए वो फोटोग्राफ लिए ऐसे लिए. तो ये सब जो अच्छा मोमेंट हमने सेलिब्रेट किया, और एक जैसे अपनापन बिल्ड हुआ. वो जो आर्टिस्ट गए उन लोगों ने बोला कि मैं भी देश विदेश गया, चाइना गया, रीयूनियन आइलैंड, थाईलैंड गया, लेकिन ये जो हमने किया वो बहुत लोकल था. जैसे हमने वो सिख करी जैसे खाते हैं,
1: हाँ बिल्कुल, जैसे ट्रेडिशनल पूरा एस्थेटिक आपने वो रखा. हाँ जी, और जैसे
0: गीगावाय होता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ऑथेंटिक. हमने बजिया भी किया सब.
1: हाँ. हाँ, उसी तरह से सेलिब्रेट किया. और जैसे एक तरह से वो आर्ट फॉर्म को आपने प्रदर्शित भी किया, और साथ ही साथ जो मॉरिशस का जो क्विजिन कल्चर है, जो ऑथेंटिसिटी है, उसको बरकरार रखते हुए आपने इसका भी प्रदर्शन किया. तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट रहा, मैं समझती हूँ. और जैसे आर्ट का होना, आर्ट फिर वो चाहे कोई भी फॉर्म में हो, कुकिंग फॉर्म में हो, या फिर डांस फॉर्म में हो, आर्ट फॉर्म म्यूजिक फॉर्म में हो, या किसी भी तरह का आर्ट फॉर्म हो, ये हमारे जीवन को एक अलग रंगों से ढालता है, एक अलग अलग स्तर पर हमें ले जाता है. और जैसे निशाल जी ने भी कहा, सबीना ने भी कहा, कि ये हमें क्रिएटिविटी के साथ जोड़ता है. किस तरह से एक चीज़ को क्रिएट कर सकते हो, और क्रिएटिविटी का जो समंदर है वो बहुत ही गहरा है. आप जितना डीप जाना चाहें उतना आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. और बिल्कुल आर्ट जो है वो आपको बिल्कुल, कहते हैं ना कि आर्ट को डिविनिटी के साथ जोड़ा गया है. जहाँ पर आप एक आर्ट के फॉर्म में जुड़ते हैं, वो अपने आप में एक तरह की स्पिरिचुअलिटी है, जो आपको ह्यूमैनिटी के साथ जोड़ती है, मानवतावाद के साथ जोड़ती है. यहाँ कोई धर्म की सीमा नहीं, यहाँ किसी चीज़ का भेदभाव नहीं, कोई ऊँच नीच नहीं, और ये कहीं ना कहीं आपको दिल से दिल को जोड़ता हुआ एक ऐसा स्तर है, एक ऐसा माध्यम है, जहाँ पर एक आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करते हैं. और मैं समझती हूँ आज विश्व भर में हम शांति के लिए बातें तो बहुत करते हैं, पर शांति के लिए कहीं ना कहीं हमें एक, कहते हैं ना कि एग्जाम्पल सेट करना है, और ऐसा ही एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हमारे युवा पीढ़ी. और निशाल जी एक टीचर होने के नाते बिल्कुल यही कहना चाहेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है आर्ट का आज हमारे जीवन में. तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करने के लिए बिल्कुल

0: आप पहुंचे हैं हमारे साथ यहाँ पर हमारी टेक्निकल टीम पर हमारे साथ जुड़े कादिया जी जो इस वक्त तकनीक पर हमारा सहयोग दे रहे हैं, उरुसा हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट और जिनेश प्रोड्यूसर जो हमारे साथ जुड़े रहे और ये कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में इन्हीं का सहयोग मिला। रेडियो मॉरिशस पर इसका सीधा प्रसारण और MBC के तीसरे चैनल पर इसका सीधा प्रसारण आप देख पा रहे हैं। इसी कार्यक्रम को दोबारा से आप सुन पाएंगे 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। तो चलिए इसी के साथ निशाल जी, एक बार फिर हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को आमंत्रित कर सकते हैं आपके आर्ट गैलरी के लिए। ये कब से कब तक लगेगा, कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, ताकि जो लोग आना चाहें वे ज़रूर आकर विजिट कर सकते हैं।
1: तो वो जो एग्जीबिशन हो रहा है उसका नाम है इको, वो अनंता आर्ट गैलरी पतुपमा में हो रहा है
0: जी,
1: और वो शुरू हो गया इस हफ्ते से और वो जाएगा 23 अगस्त तक और उसका टाइमिंग है वो शुरू होता है 9:30 और वो 6 बजे शाम को ख़त्म हो जाता है। सिर्फ वेनेसडे को वो बंद होता है।
0: बंद होता है यानी ओपन टू पब्लिक है।
1: ओपन टू पब्लिक है और बच्चों को इनकरेज करेंगे कि आए, क्योंकि आपके एग्जाम्स हैं वो ऑर्ट का, वो फॉर्म 5 HSC और नेशनल एग्जाम शुरू हो गए,
0: मिल सकता है। बिल्कुल, एक तरह से उनको देखने के लिए एक अवसर मिलेगा। और बिल्कुल यहाँ पर आज हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सुंदर सुंदर चित्र हमारे पास ऐसे डेकोरेट किए गए हैं। वैसे तो यहाँ बहुत सारे चित्र हैं जिन्हें उठाकर दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा, पर बहुत ही सुंदर लाजवाब पेंटिंग्स। और मैं इसके लिए निशाल जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। सबीना, आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगी और बिल्कुल बेस्ट विशेज हमारी इस टीम को हम कहेंगे। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं विराम देंगे, पुनः उपस्थित होंगे एक ऐसे ही कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, 10 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कैबिनेट ने फाइनेंस बिल 2026 और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल 2026 को राष्ट्रसभा में पेश किए जाने की मंजूरी दी है। इन विधेयकों के माध्यम से बजट 2026-2027 में घोषित टैक्स, वित्तीय और आर्थिक कदमों को लागू करने के लिए कुल 83 कानूनों में संशोधन लाए जाएंगे। कैबिनेट ने ये जानकारी दी कि हाउस होल्ड रूफ टॉप सोलर फोटोवोल्टाइक ग्रांट स्कीम आज से शुरू हो गई है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को सोलर पीवी सिस्टम लगाने की लागत का 25% अधिकतम 75,000 रुपए तक का ग्रांट मिलेगा। इस योजना के लिए बजट में 270 मिलियन रुपए का प्रावधान है। कैबिनेट ने मॉरिशस और सेशल्स के बीच मस्करीन प्लाटू के संयुक्त समुद्री क्षेत्र में भूकंपीय सर्वेक्षण कराने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ये पता लगाना है कि समुद्र के नीचे तेल और गैस के भंडार मौजूद है या नहीं। इससे दोनों देशों को ऊर्जा, वैज्ञानिक अनुसंधान और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलने की उम्मीद है। मॉरिशस में इजिप्ट के राष्ट्र दिवस के अवसर पर कल शुक्रवार शाम क्यूपिप में एक आधिकारिक समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम, सरकार के सदस्य, राजनयिक समुदाय के प्रतिनिधि और अन्य आमंत्रित अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर मॉरिशस और इजिप्ट के बीच मित्रता और सहयोगपूर्ण संबंधों को रेखांकित किया गया। मॉरिशस के निर्यातकों के लिए राहत की खबर है। मॉरिशस से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर नया अमेरिकी अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अगुआ के तहत टैरिफ मुक्त सुविधा जारी रहने से 8 बिलियन रुपए के अमेरिकी बाजार तक मॉरिशस की पहुंच बनी रहेगी। इससे एशियाई कपड़ा उत्पादक देशों की तुलना में मॉरिशस को बड़ा लाभ मिलेगा। इस कई महीनों तक वॉशिंगटन में चली कूटनीतिक बातचीत के बाद ये सफलता मिली है। मॉरिशस के निर्यातकों के लिए राहत की खबर पर मिक्सा ने संतोष व्यक्त किया है। निर्यातकों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संगठन का कहना है कि अगुआ के तहत टैरिफ मुक्त सुविधा जारी रहने से मॉरिशन सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगी। मॉरिशस में पानी की स्थिति अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। कम वर्षा के कारण जलाशयों और भूजल का स्तर लगातार घट रहा है। फिलहाल ऊंचे इलाकों में पानी की कटौती की जा रही है, लेकिन यदि सूखा जारी रहा तो अन्य इलाकों में भी इसका असर पड़ सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए सेंट्रल वाटर अथॉरिटी पानी की आपूर्ति को और मजबूत बनाने के लिए कई समाधान पर काम कर रही है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। रॉयल रोड घोंबुआ में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की बीबी आयशा बीबी लक्कू इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे उनके बेटे आसिफ अंजो के मकान होथवायल घोंबुआ से निकाल कर दफनाने के लिए घोंबुआ का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محتشم محترم سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته گلہ عقیدت پروگرام میں آپ کا ہم دل کی عطا گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ آغاز جیسا کہ معلوم ہے کہ ہر ہفتے گلہ عقیدت میں ہم آپ کو سورہ المیدہ کا ایک رکو ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ پیش خدمت ہے سورہ المیدہ کا چوتھا رکو، اس کی تفسیر بزبانی مفتی ڈاکٹر آصف قادری دامت برکاتہ مالیہ۔

महबूब की मोहब्बत दी। हम हुजूर का जिक्र सुनकर खुश होते हैं, हुजूर की ताजीम तौकीद बजा लाते हैं, हुजूर की शान व अजमत सुनना चाहते हैं, हम कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने कई बीमारियों से, हादसा से, परेशानियों से, मुसीबतों, आफतों, बलाओं से बचाया। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो यहाँ पर यह फरमाया गया कि हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला उनसे मरवी है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में जो कोई खादिम और औरत यानी बीवी और सवारी रखता वो बादशाह मलिक कहलाया जाता। वो आताकुम मालम युक्ति अहद मिन आलमीन, और तुम्हें वो दिया जो आज सारे जहां में किसी को ना दिया, यानी तुम्हारे लिए दरिया में रास्ते बना दिए, तुम्हारे सामने तुम्हारे दुश्मन को गर्क कर दिया, मनो सलवा तुम पर उतारा, पत्थर से चश्मे जारी कर दिए, बादल को तुम्हारे साये के लिए तुम्हारे सर पर साया फिगन किया। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम को ये नेमतें याद दिलाई। या कौम दुखुलुल अर्दल मुकद्दसतल लती कतबल्लाहु लकुम, ए मेरी कौम इस पाक जमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखी है। वला तरतद्दू अला अदबारिकुम, और पीछे न पलटो, फतन कलिबू खासिरीन के नुकसान पर पलटोगे। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की नियमतें याद दिलाने के बाद इनको अपने दुश्मनों पर जिहाद के लिए निकलने का हुक्म दिया और फरमाया, ए मेरी कौम अर्ज़े मुकद्दसा में दाखिल हो जाओ, पाक जमीन में दाखिल हो जाओ। पाक जमीन से मुराद बैतुल मुकद्दस है और उसके इर्द गिर्द की जमीन है। इस जमीन को मुकद्दस और पाक इसलिए कहा गया कि वो अंबिया की मस्कन है, अंबिया ने यहां पर सुकूनत इख्तियार की। इससे मालूम हुआ कि अंबिया की सुकूनत से जमीनों को भी शर्फ हासिल होता है। हजरत कलबी से मनकूल है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोहे लबनान पर चढ़े तो आपसे कहा गया, देखिए जहां तक आपकी नजर पहुंचे वो जगह मुकद्दस है और आपकी औलाद की वो मीरास है, आपकी औलाद उसकी मालिक होगी। ये सरजमीन कोहे तूर और उसके इर्द गिर्द की सरजमीन थी। एक कौल ये है कि पूरे मुल्क के शाम पर आपकी निगाह पहुंची, पूरी सरजमीन को मुकद्दस बनाया गया। कौलू या मूसा, वो बोले, ए मूसा इन नफीहा कौमन जब्बारीन, इसमें तो बड़े जबरदस्त लोग हैं, बड़े जालिम लोग हैं, बड़े लंबे चौड़े हैं, बहुत ताकतवर हैं। व इन्ना लन नदखुलहा हत्ता यखरुजू मिन्हा, और हम इसमें हरगिज दाखिल न होंगे जब तक वो वहां से न निकल जाएं। फईं यखरुजू मिन्हा फईन्ना दाखिलून, हाँ वो वहां से निकल जाएं तो हम वहां जाएंगे। जैसा कि आप पिछले रुकू में सुन चुके कि 12 सरदारों को भेजा था हालात मालूम करने के लिए और फरमाया था कि कौम को मत बताना, पहले मुझे बताना और जिस बात की मैं इजाजत दूं वो बात कौम को बताना। तो दो सरदारों ने तो इस फरमान पर अमल किया और अहद शिकनी न की, बाकी 10 सरदारों ने कौम को वो सारी बातें बता दी। इस तरह कौम के दिल में खौफ बैठ गया तो उस खौफ की वजह से उन्होंने कहा, मूसा हम जंग नहीं करेंगे, हम इस बस्ती में दाखिल नहीं होंगे, पहले इनको निकालें फिर हम दाखिल होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो बड़ी अजीब बात है, हम जिहाद के लिए आए हैं, दाखिल होंगे मुकाबला करेंगे तो ये भागेंगे और अल्लाह ताला ने फतह का वादा फरमाया है, तो वो इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। कौला रजुलान मिन अल्लज़ीन यखाफूना, दो मर्द के अल्लाह से डरने वालों में से थे, यानी हजरत कालिब बिन यूकना और यूशा बिन नून,

जिन्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भेजा था और ये 12 के साथ गए थे, लेकिन वापस आकर उन्होंने अपनी कौम को कोई बात न बताई बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम ही की बारगाह में सारी बातें अर्ज की। अनअमल्लाहु अलैहिमा, अल्लाह ने उन्हें नवाजा, यानी ये दो मर्द

देखकर वो राज फाश न किया बल्कि मूसा अलैहि सलाम से ही अर्ज किया। और अभी आप सुन चुके बाकी सरदारों ने तो ये राज फाश कर दिया और कौम को सारी बातें बताकर कौम को डरा दिया। अनमल्लाहु अलैहि मदखुलू अलैहिमुल बाब, ये दो मर्द जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया था उन्होंने कहा कि ए हमारी कौम जबरदस्ती दरवाजे में इन पर दाखिल हो जाओ, शहर के दरवाजों में जबरदस्ती घुस जाओ, तुम्हारा काम दाखिल होना है, दाखिल हो गए तो फौरन मदद आ जाएगी। फ़ाइदा दखल तुमूहु फ़इन्नकुम ग़ालिबून, अगर तुम दरवाजे में दाखिल हो गए तो तुम्हारा ही गलबा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मदद का वादा किया है और इसका वादा जरूर पूरा होगा। इन दोनों नकीबों ने यानी हजरत यूशा बिन नून और कालिब बिन यूकना ने कहा कि तुम इन जब्बारीन के बड़े बड़े जिस्मों से खौफ ना करो, हमने उन्हें देखा है, इनके जिस्म बड़े हैं, दिल कमजोर हैं। इन दोनों ने जब ये कहा तो बनी इसराइल बहुत गुस्से हुए और उन्होंने चाहा कि इन दोनों पर पत्थर बरसाकर इन्हें हलाक कर दें। इन दोनों नकीबों ने इनसे कहा वअलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मोमिनीन, और अल्लाह ही पर भरोसा करो अगर तुम्हें ईमान है। कालू बनी इसराइल बोले या मूसा ए मूसा इन्ना लन नदखुलहा अबदम मा दामू फीहा, हम तो वहां कभी न जाएंगे जब तक वो वहां हैं, यानी जब्बारीन के शहर में अर्दे मुकद्दस में हम तो कभी दाखिल न होंगे जब तक ये उसमें मौजूद हैं। फजहब अंत व रब्बू का फकौतिला, तो आप जाइए और आपका रब जाए, तुम दोनों लड़ो। इन्ना हाहुना काइदून, हम यहां बैठे हैं। बनी इसराइल ने ये बात कह दी कि आप जाएं अपने रब को ले जाएं और आपका रब दोनों मिलके लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। जब ये कौम भाग जाएगी तो फिर हम अर्ज मुकद्दस में दाखिल होंगे। एक तरफ ये बनी इसराइल की सरकशी है और दूसरी तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्हाब का इश्क और उनकी मोहब्बत का अंदाज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर शरीफ की तरफ रवाना हुए, 40 अफराद का काफिला था जिन्हें गिरफ्तार करना था जो शाम से मक्के की तरफ आ रहा था, लेकिन वो काफिला हाथ से निकल गया और उस काफिले ने ये इत्तला दे दी मक्के में कि मुसलमान हमें गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं, तो 1000 का लश्कर मुसलमानों से मुकाबले के लिए आ गया। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया हम 40 अफराद के मुकाबले के लिए चले, वो तो हाथ में ना आया, लेकिन अब सामने से 1000 का लश्कर है, उससे मुकाबला करना है, तुम्हारी राय क्या है? 8 तलवारें, 6 जिरा, 2 घोड़े, 313 तादाद है। तादाद के लिहाज से देखा जाए तो 1000 का लश्कर 313, 3 गुना का फर्क है, लेकिन असले के लिहाज से देखें तो सिर्फ 8 तलवारें, 6 जिरा, 2 घोड़े, कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो सहाबाए कराम ने अपनी मोहब्बतों का जिक्र किया। जब आपने अंसार की तरफ देखा तो हजरत साद बिन मुआज खड़े हुए जो अंसार के कबीले औस के सरदार थे, उम्र मुबारक आपकी कोई ज्यादा नहीं थी, आप जवान थे, तकरीबन 30 साल आपकी उम्र मुबारक थी, और आपने खड़े होकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बदर तो यहीं पर है, अगर आप हमें हुक्म दें तो कैसर और किसरा पर हम हमला कर दें, आपके हुक्म पर हम दरिया में छलांग लगा देंगे, आग में कूद जाएंगे, हम आपके आगे
पीछे दाएं बाएं जानों के नजराने देंगे।

हम बनी इसराइल की तरह नहीं जिन्होंने कहा फजहब अंत व रब्बु का फकातिला इन्ना हाहुना काइदून, कह मूसा आप जाइए आपका रब जाए और दोनों मिलके लड़े, हम तो यहीं बैठे हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम तो आपके हुक्म पर अपनी जानें निछावर करेंगे। प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए और आप मुस्कुरा दिए। अल्लाह ताला को यह अदा साद बिन मुआज की ऐसी पसंद आई कि जब हजरत साद बिन मुआज गज़वा खंदक के 25 दिन के बाद शहीद हुए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में आपकी तदफीन से फारिग हुए, तो आपने देखा कि साद बिन मुआज की वालिदा रो रही हैं, क्योंकि अहद शरीफ में इनके एक बेटे शहीद हो गए और गज़वा खंदक के बाद दूसरे बेटे शहीद हो गए, तो वालदा रो रही हैं। प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ साद की माँ तू न रो, जब से कायनात बनी ये साद पहला शख्स है कि जब ये अल्लाह के दरबार में पहुंचा तो अल्लाह इसे देखकर मुस्कुरा रहा था और ये अल्लाह को देखकर मुस्कुरा रहा था। अल्लाह ताला जिस्म से पाक है, यहाँ क्या माना है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। इसमें हजरत साद बिन मुआज की फजीलत का जिक्र है कि अल्लाह ने खास इनाम और इकराम की बारिश फरमाई, उनके जज्बे से अल्लाह ताला हमें भी हिस्सा अता फरमाए। जब बनी इसराइल ने यह कहा कि आप जाएं आपका रब जाए, हम तो यहीं बैठे हैं, आप दोनों जाके लड़ें, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, काला अर्ज की, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी, मुझे इख्तियार नहीं मगर अपना और अपने भाई का इख्तियार है, मैं जाने को तैयार हूं, मेरा भाई जाने के लिए तैयार है, ये कौम की अक्सरियत जाने के लिए तैयार नहीं। फफरुक बैनना व बैन अल-क़ौमिल फासिकीन, तो तू हमको इन नाफरमानों से जुदा रख, हमें इनकी सोहबत और कुर्ब से बचा, या ये माना है कि हमारे इनके दरमियान फैसला फरमा। बात फरमाते हैं ये माना है कि इन पर जब अजाब नाजिल हो तो हमें इस अजाब से महफूज फरमा। कौला फरमाया, फइन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सना, तो वो जमीन इन पर हराम है 40 साल तक, यानी जमीन में ये 40 साल तक दाखिल ना हो सकेंगे। यतीहून फिल अर्दी, भटकते फिरेंगे जमीन में, फला तअसा अलल कौमिल फासिकीन, तो तुम इन फासिकों का अफसोस न खाओ। वो जमीन जिसमें ये लोग भटकते फिरे 9 फरसंग थी, यानी चंद मील पर मुश्तमिल थी, कौम की तादाद 6 लाख थी और जंगी सामान भी साथ में था और बहुत सा सामान था। ये 6 लाख अफराद तमाम दिन चलते थे और उस मैदान ती से निकलने की कोशिश करते, जब शाम होती तो अपने आप को वहीं पाते जहां से चले थे, ये इन पर सजा थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून, हजरत यूशा, हजरत कालिब, वो भी वहीं थे। ये मैदान बनी इसराइल के लिए अजाब था, मगर हजरत मूसा, हजरत हारून, हजरत यूशा, हजरत कालिब के लिए अल्लाह ताला ने आसानी फरमाई और इनकी मदद फरमाई। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने आग को गुलजार बना दिया, सलामती बनाया, सर्द बनाया, तो इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून, हजरत कालिब, हजरत यूशा, जो अल्लाह के फरमाबरदार थे, उनके लिए इस मैदान में अल्लाह ताला ने आसानी पैदा फरमाई। इतनी बड़ी जमात का इतने छोटे से जमीन के हिस्से में 40 वर्ष तक आवारा और हैरान फिरना और किसी का वहां से ना निकल सकना, ये खवारिक़े आदात में से है, यानी आदतन ये एक मुश्किल अमर है, आदतन ये नामुमकिन है, मगर ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुजज़ा कि छोटे से

इलाके में ये घूमते रहे। 40 साल तक निकलने की कोशिश करते रहे लेकिन उस इलाके से बाहर न निकल सके। जब बनी इसराइल ने इस जंगल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से खाने पीने दीगर जरूरियात का मुतालबा किया और तकालीफ की शिकायत की तो आप देखें अल्लाह ताला कितना करीम है। इन्हें 40 साल के लिए इस मैदान में कैद किया गया सजा के तौर पर, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ने करम फरमाया और मन और सलवा इन पर नाजिल किए। 40 साल तक मन और सलवा नाजिल होते रहे। सलवा के बारे में एक रिवायत यह है कि भुने हुए बटेर थे और मन के बारे में एक रिवायत यह है कि सफेद शहद की तरह मीठी चीज थी। और इस 40 साल में लिबास खुद ब खुद इनके बदन पर अल्लाह ताला ने पैदा कर दिए। अब इन्हें लिबास की जरूरत न थी बल्कि लिबास खुद ब खुद पैदा हो गया, और जिस्म अगर बढ़ता तो लिबास भी बढ़ता था और वो लिबास मेले नहीं होते थे। एक सफेद पत्थर कोहे तूर का इनायत फरमाया। जब रखते सफर उतारते और किसी वक्त ठहरते तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस पत्थर पर असा मारते, इससे बनी इसराइल के 12 गिरोह के लिए 12 चश्मे जारी हो जाते। साया करने के लिए एक बादल भेजा गया। मैदान तीह में जितने लोग दाखिल हुए इनमें से जिनकी उम्र 20 साल से ज्यादा थी सब वही इंतकाल कर गए। सिर्फ हजरत यूशा बिन नून और हजरत कालिब बिन यूकना 40 साल के बाद भी जिंदा रहे। जिन लोगों ने अर्द मुकदसा में दाखिल होने से इनकार किया इनमें से कोई भी फिर दाखिल ना हो सका। 40 साल वो कैद रहे और फिर 40 साल के बाद भी अर्द मुकदसा में उनमें से कोई दाखिल ना हो सका। कहा गया है कि मैदान ती में ही हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के विसाल से 40 बरस बाद हजरत यूशा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की गई और जब्बारीन पर काफरों पर जिहाद का हुक्म दिया गया। तो आप बाकी बच जाने वाले बनी इसराइल को साथ लेकर गए और आपने काफरों से जिहाद किया और अर्द मुकद्दसा को आजाद किया। सूरतुल माईदा का चौथा रुकू मुकम्मल हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रुकू के नूर से इसकी बरकतों से हम सबको मालामाल फरमाए। अल्लाह ताला इन नसीहतों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इस रुकू में इस बात का भी जिक्र है कि अल्लाह की नेमतों को याद करो। इंसान को चाहिए कि वो मुसलसल नेमतों को याद करे, जो परेशानियां हैं उसका जिक्र कम करे, नेमतों का जिक्र ज्यादा करे, तो इंशाल्लाह दिल में शुक्र का एहसास पैदा होगा। लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं जरूर बजरूर नेमतों में मजीद इजाफा करूंगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।

0: हज़रत अल्लामा मुस्तफ़ाई कादरी दामत बरकातुमालिया की ज़बानी चंद नसीहत।
1: अपनी नजर और शर्मगाह की हिफाजत करें। इस दौर का सबसे बड़ा फितना यह है कि निगाहें पाक नहीं रहीं, निगाहें गलीज और गंदी हो गई, शर्मगाहों में वो तकद्दस नहीं रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन जना जुनिया बेही वलो बेही ताने दारे हैं। जिस शख्स ने जना किया ये अमल उसके घर भी लौटेगा, अगरचे ऊंची ऊंची दीवारें क्यों नहीं कर रहे। ये मकाफात अमल है। गंदम अज गंदम बरोए जोज जो अज मकाफात अमल गाफिल मशो। गंदम बोगे तो गंदम काटोगे, जो बोगे तो जो काटोगे। नजर को तकद्दस दो, नजर को पाकीजगी दो। हजरत लुकमान हकीम कहते हैं कि मैं कई नबियों से मिला हूं, कई नबियों से मुलाकात की है और मैं उनसे दो दो चार चार बातें जमा की हैं और उन सारी बातों को मैंने जमा करके 100 बातें जमा की हैं और उनका फिर मैंने खुलासा तैयार किया है। उनमें 8 बातें अलग की हैं। उन 8 बातों में एक बात यह है, जब किसी के घर जाओ तो नजर को हिफाजत में रखो। जिस शख्स के मेहमान बनो, जिसके घर जाओ, तुम्हारी नजर ना भटकने पाए। नजर अगर गैर महरम को शहवत से देखती है, हदीस में आता है कल कयामत के दिन जहन्नम की आग से भर दी जाएगी, वो सख्त रुस्वा होगा। आज मीडिया की आवारगी और इंटरनेट पे जो कुछ हो रहा है, टेलीविजन और सिनेमा जो बदतमीजी फैला रहे हैं और मोबाइल पैकेज जिस तरह बेहयाई को फरोह हो रहा है, हम इसके खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ बंध बांधें। अपनी औलादों के हाथों से नावल छीन लो, उनके हाथों से जो है वो फिल्में छीन लो, उनकी खलवतों पे नजर रखो, उनकी हिफाजत करो। जिस शख्स की नजर पाक नहीं है उसके मन में तहारत नहीं आ सकती है, दिल पाक नहीं है उसको जो है वो बातिन का नूर नसीब नहीं हो सकता। वाए कौमे कुश्ताए तदबीर गैर, कारे उ तखरीब खुद तामीर गैर, अज हया बेगाना पीराने का हुन, नौजवाना चू जना मशगूल तन। कितनी हिकमत वाली बात है इकबाल ने। वो अपने दौर का दुखड़ा सुनाता है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं आप तो अजीब हाल हो गए। इकबाल कहता है ये जो मेरा दौर है, जवान तो जवान रहे, बूढ़ों की नजरों में हया नहीं रहा। आज हया बेगाना पीराने का हूं, बूढ़े लोगों की आंखों में भी इकबाल कहता है हया नहीं रहा। नौजवाना चू जना मशगूल तन, और नौजवान औरतों की तरह अपने तन के साथ लगे हुए हैं, अपने तन को संवारने में हर वक्त तंगी पट्टी में लगे हुए हैं। ये मर्दों का काम नहीं होता, ये दलेर और बहादुरों का काम नहीं होता, ये औरतों के वजीफे हैं। दर दिले शाह आरज़ूहा बेसबात, मुर्दा ज़ाइन अज बतूने उम्महात। इनके दिलों में आरज़ूएं कोई और ही हैं और माओं के पेटों से मुर्दा जन्म ले रहे हैं। दुख तराने हु बज़ुल्फ़े खुद असीर, शोख चश्मों खुद नमाओ खुद दगीर। और कौम की बेटियां अपनी जुल्फ की खुद कैदी हो चुकी हैं और हर वक्त जो है वो अपने आप को आईने में देखती रहती हैं। साख्ता पर दाख्ता दिल बाख्ता, अबरुआ मिसले दो तेरे आख्ता। वो जो घर की रौनक थी, जो आबरू और हया का दूसरा नाम था, आज वो दिल फेंक किस्म की हो गई है। आह कौम में दिल से हक पर दाख्ता, मुर्दो मर गए खेशरा न शनाख्ता। इकबाल कहता हाय कौम कि जो मर गई और उसे अभी तक पता ही नहीं चला कि मैं मर चुकी हूँ और जीने का सामान नहीं करती। हुजूर ने फरमाया हर दीन की कोई पहचान होती है, मेरे दीन की पहचान हया है।

जिस दौर में अपने माँ बाप से दीन सीखा तो उस वक़्त इतने फिरके भी नहीं थे, ना बात बात पे शिरक के फतवे लगते थे और ना ही लोग दीन को कारोबार बनाए हुए थे। उस वक्त कोई खड़ा हो के नात भी पढ़ता था तो उसकी आंखें बंद होती थीं और तसव्वुर मदीने की गलियों का तवाफ़ कर रहा होता था। और अगर कोई पीरे तरीकत था तो उसका मकसद मखलूक को अल्लाह तक पहुंचाना था, लोगों का दिल अपनी जानब मोड़ के मायल करके अपनी जेब गर्म करना मकसद नहीं था। उस वक़्त आलम दीन लोगों की अकीदतों को समेट करके घेर करके अपनी अकीदत के दायरे में डाल करके उनसे सतही मफाद हासिल करने का धंधा नहीं करते थे। उस वक़्त आलम दीन बंदे को गुनाह से निकाल करके अल्लाह की दहलीज पे सजदा रेस करने का काम करते थे।

और आज हम देखते हैं कि फ़िरका परस्तों ने इस्लाम को तोड़ के रख दिया, और जो लोग बेचारे अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होते हैं उन पर शिरक के और बिदअत के फतवे लगा करके उनको इस्लाम से बदज़न करने की कोशिश की, और नात खानियाँ एक बहुत बड़ा कारोबार बन गया और पीरी मुरीदी एक बहुत बड़ा धंधा बन गया। तो इस दौर के अंदर अपनी औलाद को संभालना वो तरह तरह के सवाल करती है, पूछती है, तो फिर उनको दीन पर मुतमईन रखना इतना आसान काम नहीं है। हमारे वालदैन ने हमारी तरबियत की तो उनके लिए कदरे आसान था, लेकिन हमारे लिए अपनी औलाद को संभालना और दीन की राह पर डालना कदरे मुश्किल है। लेकिन हमारे वालदैन ने जो आसान काम किया था उसके लिए भी बड़ी मेहनत की थी, और हम अपनी औलाद के लिए क्या उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी मेहनत हमारे वालदैन ने हमारे ऊपर की थी? तो अगर हम नहीं कर रहे तो फिर हमारी अगली औलादें या उनकी अगली नस्लें फिर किन हाथों में होंगी? तो इसलिए हमें ख़ास तौर पर सोचना चाहिए। मैंने कुरान मजीद की जो आयत करीमा पढ़ी है उसमें इरशाद फरमाया, अपने आप को और अपनी औलाद को दोजख की आग से बचा लो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो मुझे और आपको अपनी औलाद की हिफाजत करनी चाहिए। बाज़कात हम वतन छोड़ के यहाँ आते हैं इसलिए कि हमारी औलादों का मुस्तकबल ठीक हो जाए। हम खुद परदेश काट लेते हैं, तन्हाइयाँ काट लेते हैं, अजियतों से गुजर जाते हैं, लेकिन औलाद राह मुस्तकीम से भटक जाती है। तो हमने उनकी दुनिया की ज़िंदगी के तो सवार दी, लेकिन जो हकीकी अबदी और सरमदी ज़िंदगी है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है तो वो बर्बाद होगी। तो हमने अपनी औलाद का भला नहीं किया है, अपनी औलाद का नुकसान किया। तो हमें चाहिए कि हम अपनी औलादों की हिफाजत करें। और औलादों की हिफाजत क्या है? उनके अखलाक अच्छे हों, उनका किरदार खूबसूरत हो, उनके दीन की हिफाजत हो, और वो एक साले सुच्चे और खरे मुसलमान के सूरत अपनी ज़िंदगी गुजारने की मशक करें और उसका अमली नतीजा हमारी आंखों के सामने हो। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अपनी औलादों को तीन चीज़ें सिखाओ। पहली चीज़ हुब्बा नबी ये करो, अपनी औलाद को नबी करीम अलैहिस्सलाम का प्यार सिखाओ। दूसरी चीज़ वहुब्बा अहले बैत ही, और हुजूर के अहले बैत का प्यार सिखाओ। और तीसरी चीज़ व तिलावत अल कुरान, उन्हें कुरान मजीद की तिलावत करना सिखाओ। ये तीन चीज़ें आप अगर बचपन से ही अपनी औलाद के अंदर दाखिल कर चुके तो फिर आप कामयाब हुए। ये बात जहन में रखिए कि हम उस वक्त मुतवज्जे होते हैं औलाद की तरबियत के लिए जब वो हमारे हाथ से निकल चुकी होती है। हमारे घरों में हमारी सुबह का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से हो तो फिर खैर व बरकत के काफ़िले हमारे घरों में उतरेंगे। कुरान हमारी ज़िंदगी को बदलने वाली किताब है। जब हमारा रब्त इस किताब से हो जाएगा, पुख्ता ताल्लुक़ इस किताब से कायम हो जाएगा, तो फिर ज़माने की तेज़ आंधियाँ भी हमारे पाए इस्तिक़लाल में लगजश नहीं ला सकती हैं, ना हमारे अकायद में ख़राबी आ सकती है, ना हमारे अमल में कमज़ोरी आ सकती है। इसलिए हमें मामूल के तौर पे कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना चाहिए और अपनी औलाद को इसका खूगर बनाना चाहिए। एक ज़माना था कि हर घर में सुबह को कुरान खुलता था, और आज वो दौर हमसे छूटता चला जा रहा है। सुबह के वक्त मोबाइल तो खुलते हैं लेकिन कुरान नहीं खुलता, जिसका नतीजा क्या, आज बेबरकतियों के ढेरे हैं। कसरत माल के बावजूद भी हम बेबरकती की बात करते हैं, इसलिए कि हमारे घरों में कुरान मजीद का चरागाह नहीं है।

जिंदगी का अनमोल सबक। एक आदमी के चार बेटे थे। वह चाहता था कि उसके बेटे ये सबक सीख लें कि किसी को परखने में जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। लिहाजा इस बात को समझाने के लिए उस आदमी ने अपने बेटों को एक सफर पर रवाना करने का फैसला किया और दूरदराज

0: इलाके में नाशपाती का एक दरख्त देखने के लिए भेजा। एक वक्त में एक बेटे को सफर पे भेजा कि जाओ और उस दरख्त को देख कर आ जाओ। बारी बारी सबका सफर शुरू हुआ। पहला बेटा सर्दी के मौसम में गया, दूसरा बहार में, तीसरा गर्मी के मौसम में और सबसे छोटा बेटा खिजां के मौसम में गया। जब सब बेटे अपना अपना सफर खत्म करके वापस लौट आए तो उस आदमी ने अपने चारों बेटों को एक साथ तलब किया और सबसे उनके सफर की अलग अलग तफसील के बारे में पूछा। पहला बेटा जो जाड़े के मौसम में उस दरख्त को देखने गया था, उसने कहा, अब्बा जान वो दरख्त बहुत खूबसूरत झुका हुआ और टेढ़ा सा था। दूसरे बेटे ने कहा, ए वालिदे मोहतरम वो दरख्त तो हरा भरा था, हरे भरे पत्तों से भरा हुआ। तीसरे बेटे ने उन दोनों भाइयों से इख्तलाफ किया कि वो दरख्त तो फूलों से भरा हुआ था और ये कि उससे हसीन मंजर उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। सबसे छोटे बेटे ने अपने सब बड़े भाइयों से इत्तेफाक जाहिर किया कि वह नाशपाती का दरख्त तो फल से लदा हुआ था और उस फल के बोझ से दरख्त जमीन से लगा जिंदगी से भरपूर नजर आ रहा था। यह सब सुनने के बाद उस आदमी ने मुस्कुराकर अपने चारों बेटों की जानब देखा और कहा, तुम चारों में से कोई भी गलत नहीं कह रहा, सब अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं। बेटे बाप का जवाब सुनकर बहुत हैरान हुए, कैसा किस तरह मुमकिन है। बाप ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरे बेटो तुम किसी भी दरख्त या आदमी को सिर्फ एक मौसम या एक हालत में देखकर कोई हतमी फैसला नहीं कर सकते। किसी फर्द को जांचने के लिए थोड़ा वक्त जरूरी होता है। इंसान कभी किस कैफियत में होता है और कभी किस कैफियत में। अगर दरख्त को तुमने जाड़े के मौसम में बेरौनक देखा है तो उसका मतलब ये नहीं कि उस पर कभी फल नहीं आएगा। इसी तरह अगर किसी आदमी को तुम लोग गुस्से की हालत में देख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी बुरा ही होगा। मेरे बेटो कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला ना करो। किसी को उस वक्त समझा या परखा जा सकता है जब ये तमाम मौसम उसके ऊपर गुजर जाएं। अगर तुम सर्दी के मौसम में ही अंदाजा लगाकर नतीजा अखज़ कर लोगे तो गर्मी की हरियाली, बहार की खूबसूरती और भरपूर जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने से रह जाओगे। सिर्फ एक दुख परेशानी के लिए अपनी जिंदगी की बाकी खुशियों को दांव पर मत लगाओ। जिंदगी के एक बुरे मौसम को बुनियाद बनाकर बाकी जिंदगी को मत परखो।
1: आमीन। इस वक्त हम रेडियो मॉरिशस साहब से मुखातिब हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस प्रोग्राम से जरूर इस्तेफादा कर रहे हैं। आखिर में पेश खिदमत है गोशे समा और इसमें आज हम आपको पेश कर रहे हैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर मबनी यह कवाली। और इसी के साथ ही आज का यह प्रोग्राम पाए तकमील को पहुंच जाएगा। अगली मुलाकात तक अनवर को इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

குட்டிக்கு ஒரு மேசுல்ல

सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से सबसे पहले मायबू के रहने वालों को सूचित किया जाता है, खासतौर इन गलियों के बनान, क्लनी और सिटे बीमानिक को सूचित किया जाता है कि मंगलवार 28 जुलाई 2024 को सुबह के 9 बजे से लेकर दिन के 1 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। उसके बाद सुयाक के रहने वालों को सूचित किया जाता है, खासतौर इन गलियों के कौशालो, शिमेघानी और रिविया डिगाले के रवि

शनिवार 26 जुलाई सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन असुविधाओं के लिए सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्वा सूचने दिए बिजली की सप्लाई फिर शुरू हो जाएगी। तो अभी आप सुन रहे थे विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से, ये रहे जो मॉरिशस हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: स्वर तरंग।
2: स्वर तरंग।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद।

जहाँ सवा डुब चुके हैं। यह है रेडियो मॉरिशस, आपका फेवरेट चैनल, जहाँ नमस्कार, प्रणाम, आदाब, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं हूँ देवीना और आप सुन रहे हैं आपकी पसंद प्रोग्राम, एक ऐसा खूबसूरत संगीत सफर जहाँ बजते हैं आपकी फरमाइशों के गीत, आपकी यादों की धुनें और दिल को छू लेने वाले नगमे। साथ ही कुछ सेलिब्रेशन हो, बर्थडे हो, शादी हो या कोई भी इवेंट, तो आप 402-8085 पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। साथ में 5251700557005 पर मैसेजेस के लिए, जहां आपके फ़ोन तो आते रहेंगे और हम गीत बजाते रहेंगे और शनिवार की सुनहरी दोपहर में आपका दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि आपका जो सप्ताह है शानदार रहा होगा। अब समय है थोड़ी सी राहत का, थोड़ी सी मुस्कुराहट का और ढेर सारी बेहतरीन गीतों का। चाय की प्याली हो हाथ में, परिवार या दोस्तों का साथ हो या फिर सफ़र की रौनक, हम रहेंगे आपके हम सफ़र 4 बजे तक। और आज के कार्यक्रम में सुनेंगे सदाबहार गाने, कुछ 60s, 70s, 80s, 90s या 2000 जो हैं 2000 के दशक के सदाबहार गीत, कुछ नए मधुर नगमे, आपके जन्मदिन और सालगिरह की शुभकामनाएं और सबसे बढ़कर आपकी अपनी पसंद। तो हम

जाते जाते पहले नगमे से पहले ये सुनते जाइए, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और प्यार देने से दिल और भी अमीर हो जाता है। तो मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और संगीत के इस खूबसूरत सफ़र का आनंद लीजिए। बस पहला गाना हमारे तमाम सुनने वालों के लिए, रेडियो मॉरिशस के लिसनर्स के लिए।

जहाँ ये जो प्यारा सा गाना है फिल्म लम्हे का और इसमें आवाज हरिहरन जी का, और ये गाना सभी दोस्तों के लिए जो अपने दोस्तों के से अपने परिवार से दूर हैं, और साथ ही ये गाना जाएगा स्पेशली फॉर यू वनीश, रोहिल, मीरा, अमित, आहाना और खुशद के लिए।

या 2:26 हुए हैं, आज है शनिवार 25 जुलाई 2026, सैटरडे 25 जुलाई ऑलरेडी, और कुछ दिनों में हम अगस्त के महीने में कदम रखने जा रहे हैं। तो समय कितना जल्दी जल्दी भाग रहा है कि हाँ, जो भी हो रहा है ज़िंदगी में बस यादें बनकर रह जाएगी, और उन्हीं यादों को हम संजो कर अपने दिलों में रख कर हम आगे बढ़ते जाएंगे। और अपनी इस सफ़र में हम आपके साथ हैं यहाँ पर रेडियो मॉरिशस पर, आपकी पसंद प्रोग्राम। वैसे दोस्तों, जो आपकी पसंद प्रोग्राम है, आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपके संदेश, आपकी फरमाइशें और आपका प्यार ये इस कार्यक्रम को और भी खास बना देते हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि अभी आने वाले हैं कई और शानदार गीत और प्यारी प्यारी मुलाकातें संगीत के साथ। और चलते हैं अगले जो गाने की ओर, और ये गाना जो है हैप्पी वाला बर्थडे जो है किसके नाम जाता है, जन्मदिन था 22 जुलाई को आशना का। तो पापा सुनील की ओर से मामा है बेबी, भाई आंटीश, कजिन अंश, तन्वी, नकुल, साथ में कल जो है आशले का जन्मदिन था, पत्नी सोनम।

बेटा केशु, माँ सांता और पूरे परिवार के लिए ये जो बेस्ट विशेज हैं, जो फरमाइश हैं, आई हैं सुनीता जी की ओर से गाँव गुप से हैं, और ये आशना और निफ्यू आश्टे को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं भेज रही हैं। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू। सो पूरे परिवार की ओर से आशीर्वाद हैं, ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ लव, और ये गाना उनकी पसंद का। और जितने लोग अपना बर्थडे मना रहे हैं आज या कल, बस हैप्पी बर्थडे टू यू।

जो हैप्पी बर्थडे टू हर रोज़ नहीं आता है, जिस दिन आता है वो स्पेशल होता है। सो हम यही आशा करते हैं कि अगर आपका बर्थडे हो आज या शादी हो, बस अपने परिवार के साथ, दोस्त

दोस्तों के साथ आप एंजॉय कीजिए जो भी आप कर रहे हैं। और शनिवार का दिन है भाई, तो आज का जो आपकी पसंद प्रोग्राम है कुछ जल्दी ही शुरू हो जाता है। और आज आपके साथ है देवीना 4 बजे तक। सो बस हम चलते हैं 1963 की ओर, वहाँ पर मिलते हैं मुकेश साहब साथ में द ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ सुमन कल्याणपुर। फिल्म है दिल ही तो है, चुरा लेना तुम से ये मौसम सुहाना, इन्हीं वादियों में अकेले मत जाना, होय होय, क्या गाने थे उस समय। और ये गाना जो है खास तौर पर गायत्री जी की ओर से, और ये जो है बहन अमृता के लिए, मेधा, नेहा, गिरिशा, क्षिति, दिव्या, उनकी भाभी जो है भाभी मीरा, साथ में सुधीर, कमलेश और सुधा के लिए, हमारे पूरी टीम के लिए, हमारे लिए भी थैंक यू। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल वन गायत्री जी।

आतिफ असलम की प्यारी सी आवाज़ में सुनते हैं। इस फिल्म का गाना है, ये है बत्ती गुल, और ये गाना जाएगा अनीता जी के लिए, उनकी फरमाइश पर फिकॉम्फ्लक्स से हैं, और हमारे लिए एएम टूम के टीम के लिए। थैंक यू सभी फ्रेंड्स, सभी सहेलियां, सभी परिवार के लिए। इसको एंजॉय कीजिए अनीता जी।

बजकर 41 मिनट हुए हैं। दिविना है माइक पर आपका साथ देने के लिए 4 बजे तक। 2:15 बजे से हमारा जो कार्यक्रम है आपकी पसंद शुरू हो चुका है दोस्तों। और आज बहुत से लोग जो है घर पर हैं, नौकरी से छुट्टी, मगर घर के काम काजों से छुट्टी नहीं मिलती मेरे दोस्त, ये तो हमें पता ही है। मगर म्यूज़िक का साथ होना तो जो क्या, वो घर का काम लुवाज़ ये सब छोड़ छार के आप हमें सुनने आ जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सो बस आप सभी को दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। एक प्यारा सा मैसेज पढ़ते हैं, हम चलते हैं कटोबोन की ओर से। माना सुमारू जी कटोबोन से हैं। या जब भी आप आती हो हमें झुमा जाती हैं, वैसे तो आपकी हुनर को सलाम करते हैं। माला जी आपको सच धन्यवाद आपके अप्रिसिएशन के लिए। आज गाना है जो गाने की फरमाइश है। हाँ जी, वेलकम है आपका। फिल्म है हाफ टिकट और इसमें आवाज़ किशोरदा की, और आप जानते हैं किशोरदा जब आते हैं ना कयामत ढा जाते हैं। सैडनेस भी है, कभी कभी खुशी भी है, जो भी हो आप जो भी फील करते हो ना, जब भी आप किशोरदा की आवाज़ सुनेंगे तो आप जैसे उस गाने में ऐसे अपने आप को पा जाएंगे। तो बस इस गाने में चिल चिल चिल हाफ टिकट, माला जी आपके लिए और आपके सभी परिवार फ्रेंड्स के लिए। थैंक यू।

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बदलते मुंह रिश्ते मूवी का टाइटल सॉन्ग ये होगा लता जी, सुमन कल्याणपुर, रफी साहब, किशोर दा, और ये गाना जाएगा फॉर बंधु फैमिली।

जी, अगर आपके पास सच्चा रिश्ता है तो इसको मत ठुकराना, हमेशा संभाल कर रखना मेरे दोस्त। और आपकी हमारा जो रिश्ता है ना, वो बस संगीत का है, प्यार का है, दोस्ती का है। बस अगर आप लोग हमें सुन रहे हैं AM टू रेडियो मॉरिशस, तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। तो देविना है आपके संग, तो देखते देखते जो है 3 बजने वाले हैं कुछ मिनटों में, और एक अगला गाना जो है हम आपको सुनाने वाले हैं। और ये गाना एक्चुअली जो है मेबर्ग से, विद्यानंद जी आपके लिए, पत्नी है सुहंती, साथ में है हरवेश, अमित, राजीव, स्वीती और बहुत से नाम है जो अभी हम मिस कर जाएंगे, मगर आप लोग जानते हैं कि विद्यानंद जी ने ये गाना आपके लिए मांगा है। और ये गाना फिल्म है आवारा, जब से बलम घर आए, जिया मचल मचल जाए।

जहाँ जब दिल खुश हो तो हर धुन अपनी लगती है। प्यार के बदले प्यार, किसी की खुशी चाहते हैं तो आप ही खुश हो जाते हैं, ये है तो प्यार। बस आपस में प्यार बांटते रहिए। और ये गाना ले जाएगा 3 बजे के समाचार की ओर। इसके बाद हमारी और आपकी मुलाकात होगी आपकी पसंद प्रोग्राम के जो दूसरे भाग में है। तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए, रेडियो मॉरिशस आपकी पसंद प्रोग्राम देवीना के संग।

0: सुनते हैं समाचार गीता जी के साथ। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी को हमारा नमस्कार। हाउसहोल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक स्कीम की औपचारिक लॉन्चिंग आज क्यूपिप में की गई। इस पहल के तहत घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने के लिए खरीद लागत का 25% अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 75,000 रुपये प्रति परिवार होगी। इस योजना का लाभ 3,600 परिवारों को मिलेगा। पात्रता के लिए परिवार की मासिक आय 1,50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मंत्री पत्रिका सेवादन ने कहा कि स्थानीय स्तर पर बिजली उत्पादन बढ़ाने से कोयले और पेट्रोलियम पैदावारों के आयात में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और अधिक मजबूत होगी। स्पोर्ट्स को समावेशन और सद्भावना के रूप में अपनाया गया है। 13 से 15 साल के 80 बच्चों ने आज एम्पावर सेन जुए पुआवों से नामक गतिविधि में भाग लिया। एनजीओ लव ब्रिज और सफायर द्वारा क्यूपिप के जेम्स बेटी डेविड जिमनेशियम में इसका आयोजन किया गया। फुटबॉल मिल बांट कर रहने के मूल्य टीम स्पिरिट की भावना में दोनों संगठनों के लाभार्थियों ने इसमें भाग लिया। और विदेश स्तर पर भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार में नीट पेपर लीक मामले में इस इस्तीफे के बाद छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा और उनमें खुशी की लहर भी दौड़ गई है। इस बीच पुलिस पर पथराव के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: पचहत्तर साल के 75-year-old के श्री डॉक्टर विनोद बालगोबिन की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल शाम 4 बजे ला शैपेल ऑडेंट एलियंसन्स रॉयल रोड बोबासन से उठाकर कॉन्लेव्यू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 4 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
3: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
4: कभी सोचा है
5: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और

0: करेक्ट।
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
0: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ, तो फिर ये है आपका मौका।
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
0: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
2: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
2: डोंट मिस इट। रेडियो मॉरिशस
3: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस।
3: Radio Mauritius.

जय दोपहर के 3:11 हुए हैं। सत्यता का दिन है 25 जुलाई 2026 को और आप सुन रही हैं एमबीसी रेडियो के रेडियो मॉरिशस पर आपका ही पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पसंद। और मैं हूँ देविना आपके संग और 4 बजे तक खूबसूरत गीतों, मीठी यादों और ढेर सारी मुस्कुराहटों के साथ आपकी पसंद प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं। और उम्मीद है कि आज का सफ़र आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप घर पर हैं अभी, डिनर की तैयारी में हैं या कहीं निकलना वाले हैं, शादी में जाना है या फिर बस आराम करना है, हमें सुनिएगा या सफ़र पर निकलना है, तो हमारी यही कोशिश है कि संगीत आपकी हर घड़ी को और भी खुशनुमा बना दे। तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं दोस्तों, बल्कि अपने लोगों की मुस्कान होती है। इसलिए जहां भी रहे खुशियां बांटते चले और सभी से मुस्कुरा कर आप आगे बढ़ते जाइए। तो बस ये गाना आपने सुना। अभी के लिए ये जो अगला गाना है, फिल्म है वो लम्हे, और इस गीत की मांग की है यहाँ पर, किसकी मांग है, हाँ जी, खोबा की शिवरानी के लिए ये गाना जो है, किसी खास दोस्त के लिए। तो बस इसको एंजॉय कीजिए। तू जो नहीं तो जिंदगी में क्या रह जाता है, तू है तो सब कुछ है।

बाशरी के धनी जी नमस्कार है आपको, और ये गाना आपको पसंद है। चोरी चोरी मूवी का गाना है यश और हिमेश के लिए, और आवाज़ है मन्ना दे, साथ में लता जी।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: जुदाई फिल्म का गाना अक्षय याग्निक के साथ में अभिजीत, मैं तुमसे ऐसे मिलूं ऐसे मिलकर क्या करने वाले हैं, और ये पसंद है गीत की मांग की है वाकवा से विश्वानी उदुमन जी, और ये गाना इन बहन इंदिरा शारदा सहेली प्रतिभा नीला शोभा साथ में गीता गजाधर के लिए। ये गाना जाएगा सुदेवी जी के लिए वाकवा से ही है। गुड आफ्टरनून।

आपको भी एंजॉयिंग योर शो, थैंक यू. और ट्रियोले के दीदी ललिता के लिए, कुशल फैमिली के लिए, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, बिंदु, लालोगा के, दीदी माला, जय श्री अंबिका, सभी जालू बिकारी, राम रतन, राम गोलाम, रघुबो फैमिली. तो ये गाना, वंडरफुल डे, टेक केयर टू.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: पार्टी तो कभी से शुरू हुई है
3: पर भाई, भाई, भाई, भाई, भाई मेरी तो एंट्री नहीं हुई।
4: बर्थडे हो तो पार्टी होनी ही चाहिए। पार्टी एक दो लोगों के बीच हो या फिर पार्टी बहुत से लोगों के साथ हो, आप जो भी कर रहेंगे कर रहे

करेंगे आज, सॉरी बर्थडे पर। बस हमारी शुभकामनाएं हैं आप सबों के साथ। और ये गाना जाएगा राम के रावण परिवार की ओर से, अनसुया राम के रावण जी ट्रियोडे से, नाती निवेश और याना के लिए।

जहां नाम है निके निवेश और 29th बर्थडे आपको बेस्ट विशेस दादी प्रेमिला ऑफ कॉन्डोमास के साथ में भाई निहाल माँ रेणुका और साथ में है सिगुलाम परिवार की ओर से जैसे कहा हमने कहा याना जी को सभी परिवार की ओर से सुखी जीवन आप सभी को हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग यू डिजर्व इन लाइफ हैप्पी बर्थडे एवरीवन।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: जहाँ रॉकी मूवी का गाना है लता जी साथ में किशोर दा, हम तुम से मिले फिर जुदा हो गए, जुदा होने के बाद फिर से मिले, यही है जीवन का सार। प्यारी प्यार बेशुमार संगीता कथकों को पति विजय के लिए बेटा है यशवीर, साथ में बेटी स्नेशा, काजल, दामाद है मिटुन, आरुषि, आरोही, पाटो फैमिली और एन एस लोहों से और रिगा फैमिली है कथकों के सभी के लिए जो हुआ इन लव। आपके पसंद प्रोग्राम चला रहे हैं, 4 बजे तक माइक पर हैं दीवीना।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भाई महन, आपको भी हमारा प्रणाम स्वीकार हो। आपका प्रणाम भी हम स्वीकार करते हैं महन भाई। तो आपको एक तराना सुनना है, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। हाँ जी, मैंने प्यार किया। SP बालासुब्रमण्यम की आवाज़।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: तीन बजकर 42 मिनट हुए हैं। ये गाना रफी साहब की आवाज में, साथ में लता जी। ये गाना इब्राहिम जी आपके लिए।
3: मैंने किस्मत का तमाशा देख।
2: साथ में मनीता जी, ये जो गाना आप मांग रही हैं नहीं है, बस इस गाने में आपका नाम जोड़ते हैं मनीता जी। और ये गाना होगा प्यारी माँ सुमंती के लिए, सभी बहनों आरती सचिता बबीता रेखा शिक्षा हमारे लिए भी। थैंक यू।

0: किस्मत का तमाशा देख लिया।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: हाँ जी, ऐसी ही पुराने राहों में आगे बढ़ाते हैं कदम। और ये गाना जो है सैया छोड़ दे भैया लता जी मुकेश साहब की आवाज़ों में राजन लक्ष्मण लाफलोगा से हैं आपके लिए, सभी परिवार के लिए, साथ में हमारे जो प्यारे अंजू हैं यहाँ पर उनके लिए, और जितने लोग इस ऐसे गाने के शौकीन हैं बस गुनगुनाते चलिए।

के 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी इन इन जगहों पर। L'Aventure, Petite Retraite, Grande Retraite, Pont Blanc, Bon Accueil, Belle Vue à Landy, Saatme, Sohatu Poultry, MTL L'Aventure, Iskon Bon Accueil, or Post Office Bon Accueil ke in ilakon mein. So, CB jaise hi maramat karya pura kar dega, turant hi bijli ki supply fir se jari kar di jayegi. To CB ki ye usse ye tha communique. जी हाँ, मामा को बर्थडे विश करते हैं। तो ये जो गाना है जाएगा बर्थडे ऑफ मम शिनाज और वाकवा, इस्ट्रा की ओर से, पापा अनवर की ओर से, साथ में सभी परिवार की ओर से। वी मे गॉड ब्लेस हर विथ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस ऑफ कोर्स। तो शिनाज जी, आपको हैप्पी बर्थडे है हमारी पूरी एमबीसी टीम की ओर से।

थोड़ी देर में हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। समय कैसे बीत जाता है ये पता ही नहीं चलता। और आज के इस सफर में आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच। अगर आज आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, या कोई खास खुशी का दिन है, आपके यहाँ शादी है, किसी रिश्तेदार की शादी है, तो हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हर दिन आपके जीवन में नई उम्मीद लेकर आए, हर सुबह नई मुस्कान, हर सपना पूरा हो और खुशियां हम हमेशा आपके साथ रहे। दोस्तों, संगीत जो है दिलों को जोड़ने की सबसे खूबसूरत भाषा है। इसमें न कोई सीमा होती है, न कोई दूरी, न उम्र की सीमा हो। ये बस अब देखते देखते जो है ना, आज का मनपसंद प्रोग्राम आपकी पसंद यही समाप्ति की ओर आ पहुँचा। आप सभी लिसनर्स का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने अपनी फरमाइशों, संदेशों और प्यार से इस दोपहर को यादगार बना दिया। सो, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। कल मिलते हैं 12 बजे और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर सुहाना सफर प्रोग्राम लेकर हम हाजिर होंगे। हमारे बाद होगा साहित्य दर्पण प्रोग्राम श्रीमती अंजू जी की प्रस्तुति में, आप उनका साथ दीजिएगा रेडियो मॉरिशस पर। फिर मिलते हैं, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। और ये जो गाना जो है हरीश बाबू की ओर से, ये गाना खास के लिए, और साथ में इस गाने में हम नाम जोड़ते हैं, हाँ जी, मोरालबेया की अनीता जी हैं, करुणा, अमृता, सभी दोस्तों के लिए और सभी लिसनर्स के लिए ये हो जाए रब ने बना दी जोड़ी।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सहित हो जाएं जब दो मन, साहित्य का तब हो सृजन, संवेदनाओं को दे आधार, साहित्य जोड़े दिलों के तार। साहित्य दर्पण श्रीमती अंजू गर्बरन की प्रस्तुति में।

0: सहित हो जाएं जब दो मन, साहित्य का तब हो सृजन, संवेदनाओं को दे आधार, साहित्य जोड़े दिलों के तार। साहित्य दर्पण श्रीमती अंजू गर्भरन की प्रस्तुति में।
1: श्रोताओं, ज्ञान कौन देता है? हम ज्ञान पाते हैं गुरु से। और आपने ये कार्यक्रम के आरंभ में जो गीत सुना, इसमें आपने जान लिया कि आज की चर्चा का कोण क्या है। बुधवार को 29 जुलाई को हम मनाने जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा, और साहित्य दर्पण में गुरु पर चर्चा ना हो तो ज्ञान की बात कहाँ से करेंगे, साहित्य की चर्चा कहाँ से कर पाएंगे हम, क्योंकि गुरु ही इस धरती पर हमारे लिए विधाता है। गुरु के मार्गदर्शन बिना हम कुछ नहीं कर पाते, और गुरु ही हमें दिशा भी दिलाते हैं, हमें सही मार्ग भी दिखाते हैं, और साथ ही साथ हमें जो पाना है, जो मंजिल हमें पानी है, उसका रास्ता वही दिखाते हैं। यूं तो माँ की गोद ही सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, पर माँ के बाद घर से जब बच्चा कदम बाहर निकालता है तो गुरु की शरण में जाता है। तो गुरु की महिमा अपरंपार है। हमारी संस्कृति में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर पाते हैं, और क्योंकि गुरु ही हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं, इसलिए इस ऐतिहासिक दिन को मनाने के लिए बहुत से कारण हैं। किसी के लिए वे आध्यात्मिक कारण हो सकता है, किसी के लिए गुरु के प्रति श्रद्धा हो सकती है, किसी के लिए गुरु पूजनीय है, तो किसी के मार्गदर्शक हैं। पर इसी दिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार महाभारत, श्रीमद् भागवत और चारों वेदों के संपादनकर्ता महर्षि व्यास का जन्म हुआ था। उन्हें मानव जाति का आदि गुरु माना जाता है, इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आप लोगों का विचार क्या है? गुरु पूर्णिमा पर चर्चा कर रहे हैं, पर आप लोगों के लिए गुरु की महिमा क्या है? आप भी कार्यक्रम में जुड़कर हमें बता सकते हैं। आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाने में सहयोग दे रहे हैं यश जी, हम उनको भी प्रणाम करते हुए सभी श्रोताओं का आज के साहित्य दर्पण कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, और श्रद्धे जितने भी गुरु हैं उनको हम नमन करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में एक गुरु नहीं, बहुत से गुरु होते हैं। माँ हमारी सबसे पहली गुरु मानी जाती है, उसके बाद जब विद्यालय पहुँचते हैं कई छात्रों के बहुत प्रिय गुरु माने जाते हैं, किसी को कोई बहन जी बहुत प्रिय होती है, किसी को कोई गुरु बहुत प्रिय होता है, क्योंकि 40 छात्रों की एक कक्षा होती है, उसमें से एक या दो छात्र ऐसे होते हैं जिनको एक विशेष गुरु, एक विशेष बहन जी, एक विशेष अध्यापिका से अलग ही जुड़ाव होता है। तो आज की चर्चा हमारी केंद्रित रहेगी गुरु पूर्णिमा पर और गुरु के महत्व पर। एक फोन कॉल आ चुका

0: का है, हम लेते हैं। हेलो।
1: हाँ बेटी।
0: नमस्ते नानी, कैसन हवा?
1: नमस्ते हमार लइका, तोरा का बहुत धन्यवाद। आज गुरु के महिमा बतियावत हवा, गुरु के
0: गुरु हवा पस के लोक गीत सुनावेला, लोक गीत पर चर्चा करेला,
1: गुरु
0: कथा सुनावेला।
1: गुरु हवा, गुरु बिना ज्ञान है ये नहीं
0: बा। हाँ, ये नहीं के
1: जितना अथी बतैले हवन, जितना भाव बतैले हवन, जितना भजन सिखैले हवन, जितना सब कुछ सिखैले हवन गुरु जी
0: जी।
1: हाँ, तो उनका जे पर भजन बोला था, ये छोटे भजन
0: बोला।
1: आ गइल गुरु जी हमार हो, गुरु जी हमार हो, धनी बानी गुरु जी हमार। आ गइल गुरु जी हमार हो, गुरु जी हमार हो, धनी बानी गुरु जी हमार। कमल के फूल जैसे कोमल चरनिया हो, कमल के फूल जैसे कोमल चरनिया हो, गुरु के अखिया में अखिया में दिन बेरा पार हो। भूला गई नहीं समा बोला था।
0: बोला।
1: आ गइलन गुरु जी हमार हो, गुरु जी हमार हो, धनी बानी गुरु जी हमार। चमा चमा चमकीला गुरु के सुरतिया हो, चमा चमा चमकीला गुरु के सुरतिया हो, गुरु के महिमा पार हो, महिमा पार हो, धनी बानी गुरु जी हमार। गुरु के महिमा पार हो, महिमा पार हो, धनी बानी गुरु जी हमार। कलयुग में अइलन गुरु दिलन परदेसावा हो, कलयुग में अइले गुरु दिलन परदेसावा हो, तिंजुके करलन बेड़ा पार हो, करलन बेड़ा पार हो, धनी बानी गुरु जी हमार। आ गइलन गुरु जी हमार हो, गुरु जी हमार हो, धनी बानी गुरु जी हमार।
0: बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। लोकगीतों में बहुत कुछ हमें सिखा जाते हैं, बहुत सी शिक्षा हमें प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद नानी, बहुत अच्छा लगा।
1: नानी तो मूर्खाई न गए, नानी कुछ नहीं जाने,
0: इतना सब कुछ जाना
1: था, जाने लन आप लोग के संग, आप लोग के साथी हो जाएगा।
0: इतना ज्ञान हमने संगे बांटे ल, इतना लोक गीत, इतनी भजन जाने ल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
1: हाँ, गुरु के भजन रहल
0: जी, धन्यवाद।
1: गुरु के भजन ढेर बा बेटी, गुरु के, गुरु के ऊपर में बहुत बात बा।
0: कबीर के कितने
1: तीन जुग के बेड़ा पार कर ले हवन।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: तीन जुग के बेड़ा पार कर ले हवन
0: जी।
1: ये जुग में, उ जुग में, हउ जुग में, सब जुग में गुरु हमन
0: जी।
1: अच्छा छोरा,
0: धन्यवाद धन्यवाद,
1: बहुत धन्यवाद।
0: गुरु गोविंद दउ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कबीर को हम कहाँ भुला सकते हैं, यदि गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो किसे पहले प्रणाम करना है। गुरु ने ही भगवान तक पहुँचाने का मार्ग दिखाया है, इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है। ये हमें कबीर के भजनों में हम ऐसा ज्ञान पाते हैं। हेलो, एक फोन कॉल लेते हैं।
2: जय सच्चिदानंद माता जी।
0: मैं बिल्कुल ठीक, आपका शुभ नाम?
2: हाँ, निर्वंती।
0: निर्वंती जी, क्या स्वागत है कार्यक्रम में
2: आप? हाँ, छोटी सी भजन गाऊंगी
0: जी
2: गुरु जी का
0: जी, स्वागत है।
2: दया मुझ पे तेरी गुरु जी बड़ी है, दया मुझ पे तेरी गुरु जी बड़ी है, हुआ तेरा दर्शन बड़ी शुभ घड़ी है, हुआ तेरा दर्शन बड़ी शुभ घड़ी, दया मुझ पे तेरी गुरु जी बड़ी है। प्रभु हो तुम सारे जगत के हो स्वामी, अगम अगम

0: रूप अनामी, बड़े पुण्य से देखी झांकी तुम्हारी दया मुझ पे तेरी, गुरु जी बड़ी है। धन्यवाद माता जी।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, दया गुरु की ना
0: हमारे
1: हो
0: गुरु जी जो
1: तो
0: है
1: हम
0: वो प्रेम रावत जी हैं।
1: जी। अच्छा, ठीक।
0: बहुत
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका। एक और फोन कॉल लेते हैं। चलिए, एक फोन आ रहा था, कट गया है। चलिए, चर्चा को जारी रखते हैं। भगवान बुद्ध, जो बौद्ध धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध ने इसी दिन सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था। और इसी दिन पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं को आदि गुरु के रूप में प्रकट किया था और सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान देना शुरू किया था। यह दिन कैसे मनाया जाता है, ये आप ही हमें बताएं। और कुछ लोगों जो जो मनाते हैं, हम आपके साथ साझा करते हैं। लोग अपने आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं के पास जाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। जो लोग अपने गुरुओं से दूर हैं, वे उन्हें संदेशों द्वारा फ़ोन के ज़रिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज तो फ़ोन सबसे प्रबल हो गया है। हर जगह आप लैपटॉप, फ़ोन, व्हाट्सएप से मैसेज करते हैं। आज दुनिया बदल रही है, इस बदलाव में भी हम अपने गुरु को ना भूलें। एक फोन आया है, हम लेते हैं, फिर चर्चा को जारी रखेंगे। हेलो,
2: हेलो दीदी,
1: नमस्ते जी।
2: प्रणाम दीदी। मैं हूँ
1: प्रणाम
2: राधा मोतीरा से। हाँ
1: जी। राधा जी, स्वागत है।
2: जी, धन्यवाद।
1: आज क्या सुनाना चाहेंगी?
2: जी आज मैं यही बोलूंगी कि बुधवार को गुरु पूर्णिमा है। मैं सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना देती हूँ,
1: धन्यवाद
2: क्योंकि हमारे भी एक गुरु हैं, हमारे दीक्षा गुरु भी हैं, शिक्षा गुरु भी थे, दीक्षा
1: जी।
2: गुरु अभी तक हैं हमारे, जिनसों से हमने दीक्षा ली है।
1: जी
2: और हम ये कह सकते हैं कि उन्हीं की कृपा से आज हम जो कुछ भी करते हैं किसी सभा समाज में, तो ये हमारे गुरु की ही कृपा है।
1: बिल्कुल।
2: कैसे कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने
1: यही
2: गोविंद
1: मैंने
2: दियो
1: आपको अभी
2: बताए।
1: बताया 2 मिनट पहले,
2: हाँ
1: क्योंकि कबीर
2: हाँ
1: का ये दोहा हम भूल नहीं सकते हैं।
2: बिल्कुल नहीं।
1: जी
2: इसी से हम तुलना कर सकते हैं कि गुरु का स्थान क्या है।
1: स्थान क्या है, गुरु का महत्व कितना है।
2: हाँ,
1: जी
2: महत्व। ऐसे तो हम प्रथम गुरु अपने माता पिता को भी मानते हैं, क्योंकि माँ की गोद में जब बच्चा आता है तो वो बच्चे को
1: वो
2: माँ
1: तो
2: दुनिया,
1: सबसे
2: पिता के
1: बड़ा
2: कंधे पर
1: विश्वविद्यालय है।
2: विद्यालय है और
1: जी
2: पिता का कंधा उसे पूरा संसार दिखाता है। तो
1: बिल्कुल
2: ये भी हमारे गुरु हैं। और जिस किसी के भी साथ हम कुछ भी सीखते हैं दीदी, छोटे से बच्चे के भी साथ यदि हमें सीख मिले, तो वो हमें उन्हें एक एक अपने हृदय से उन्हें गुरु का
1: आजकल के
2: स्थान देना
1: बच्चे तो
2: चाहिए।
1: इतने सुलझे हुए हैं, हमें उनसे शिक्षा लेनी पड़ती है,
2: शिक्षा
1: क्योंकि
2: लेनी पड़ रही है।
1: टेक्नोलॉजी से बड़े हो रहे हैं, वे डिजिटल युग में
2: हाँ,
1: पैदा हुए हैं, उनको हमसे ज़्यादा ज्ञान
2: ज्ञान
1: पता।
2: हो गया है, बहुत
1: जी
2: ज्ञानी
1: बिल्कुल
2: हो गए।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: लेकिन
1: बिल्कुल
2: दीदी, ज्ञानी भी, लेकिन गुरु में भी अनेक प्रकार के गुरु होते हैं।
1: बिल्कुल
2: लेकिन कुछ
1: बिल्कुल
2: कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो सचमुच बच्चों को, कैसे गुरु का अर्थ ही है अंधकार से निकालकर
1: मार्गदर्शन,
2: प्रकाश की ओर ले
1: बिल्कुल
2: जाना।
1: प्रकाश की ओर ले
2: तो
1: जाना।
2: हाँ, तो इसीलिए कबीर जी के एक दोहे में कहा गया है कि गुरु चरणन में बैठ रे तेरी अच्छी बनेगी।
1: जी
2: हाँ,
1: बिल्कुल
2: गुरु के चरणों में बैठेंगे तो हमें अच्छी शिक्षा देगी। लेकिन गुरु का भी चयन हमें करना चाहिए, कैसा
1: सही
2: गुरु हमें अपनाना है।
1: जी, बिल्कुल
2: हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: हाँ बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत
1: धन्यवाद
2: अच्छा
1: आपको।
2: प्रोग्राम रखा है आपने।

0: भी। एक फोन कॉल लेते हैं और हेलो।
1: हेलो बहन जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, आपका शुभ नाम?
1: जय गुरुदेवाय, मैं हूँ अमृता।
0: अमृता जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद बहन जी, मैं भी आपके लिए, हम आपके लिए, सभी के लिए
0: जी
1: एक गुरु वंदना
0: जी स्वागत है।
1: ओम जय गुरु ओम कारा, जय जय

0: शिव हर हर गुरुदेवा, ओम जय सद्गुरु ओम सारा।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आवाज है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद बहन जी, आप जी, जो आपने मुझे ये फुर्सत मौका दी,
1: बहुत बहुत आभार।
0: शुभरात्रि, शुभकामनाएं।
1: एक फोन कॉल और लेते हैं। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम?
2: मैं हूँ विष्णुदेव।
1: विष्णुदेव जी, आपका स्वागत है।
2: बहुत धन्यवाद। 1975 में भारत से एक आरएसएस का एक सदस्य आए थे
1: जी।
2: तो पहली बार उन्होंने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूजा की थी समुद्र किनारे, गांवे के समुद्र के तट पर
1: जी।
2: तो सभी उनके शिष्य जो थे, योगा के शिष्य, सभी लोग आए, दान दक्षिणा दिया आदि। तो हमने, जब मैं प्रधान बना परिषद का, लगभग 50 समाजों का, आर्य समाज का
1: जी,
2: तो हमने सोचा कि क्यों न हम ये गुरु पूर्णिमा के दिन हम ये श्रावणी यज्ञ शुरू करें, क्योंकि श्रावणी जो पर्व होता है वह गुरु पूर्णिमा से रक्षाबंधन तक चलता है। तो हमने यह पास किए परिषद में। तो सभी लोग, जितने हमारे पुरोहित थे, लगभग 50 पुरोहित थे
1: जी,
2: सभी को बुलाकर हमने ये रखा कि देखिए, हम एक महीने तक हम ये गुरु पूर्णिमा के श्रावणी यज्ञ मनाएंगे
1: जी।
2: और तब से यह सिलसिला जारी हुआ
1: जी, अभी भी जारी है।
2: अभी भी जारी है
1: जी।
2: अभी हर आर्य समाज, आर्य रविवेद प्रचारणी सभा, राजपूत गहलोत महासभा, ये तीन समाज मिलकर एक महीने से ज्यादा तक ये श्रावणी पर्व मनाते हैं, श्रावणी यज्ञ करते
1: जी, जी।
2: तो अब इसके बाद, काफी वर्षों के बाद, आज हमारे अन्य भाई लोग भी यह श्रावणी पर्व के अवसर पर यज्ञ करते हैं, परितालाव जाते हैं, शिव शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है,
1: क्योंकि
2: मॉरिशस
1: शिव भी तो आदि गुरु ही हैं।
2: वो तो गुरु ही है। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हम सभी मिलकर, सब हिंदू जो है मिलकर, एक महीने तक हमारा व्रत चलता है
1: जी,
2: हमारा कार्यक्रम चलता है, और रेडियो पर, टीवी पर हमेशा ये कार्यक्रम चलता रहता है, होते रहते हैं, श्रावणी पर, यज्ञ पर, गुरु पूर्णिमा पर आदि सब होते रहते हैं। आशा है कि यह पर्व हमेशा हमारे हिंदुओं के लिए 40 दिनों का व्रत हमेशा जारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत
2: बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा ही हमारे जीवन में रहनी चाहिए, क्योंकि आशा के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। एक और फोन कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो।
3: हेलो
1: जी, नमस्कार।
3: तो मैं हूँ धनेश्वर
1: जी। जी धनेश्वर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद बहन जी, और आपको भी मेरा बारंबार प्रणाम है, क्योंकि आप तो हमारी गुरु माता है।
1: जी नहीं, बिल्कुल गुरु माता नहीं है, आप गुरु हैं, गुरु तुल्य हैं, क्योंकि आप इतना ज्ञान रखते हैं और हर सप्ताह भाग लेते हैं कार्यक्रम में। बहुत बड़ी बात है, एक झुकाव होता है शिक्षा के प्रति, साहित्य के प्रति, तभी तो आप जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में। कहिए, स्वागत है आपका।
3: मैं तो एक बूंद हूँ, आप तो समुंदर।
1: नहीं, ऐसा नहीं कहिए जी।
3: तो कबीर जी के बारे में कुछ सुनाऊंगा, एक दो लाइन।
1: अवश्य, स्वागत है।
3: यह तन विष की बेलरी,

स्थान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, सब धरती कागज करूं लेखन सब वनराज, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करें आप हूँ शीतल होय, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे।

0: आएगा, मैं ढूंढूंगी तो एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन्यवाद बहन,
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कबीर के दोहों के साथ बहुत सुंदर से कार्यक्रम को सजाया। चलिए हम चर्चा को जारी रखते हैं। गुरु पूर्णिमा पर बात हो रही है, गुरु पर चर्चा हो रही है, लोग अपने आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं के पास जाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, जैसा कि हमने कहा, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन आश्रमों में सेवा करना, भंडारा आयोजित भी होता है, ज़रूरतमंदों को दान भी दिया जाता है और बहुत से लोग इसी प्रकार गुरु पूर्णिमा को मनाते हैं, अपने गुरु के सम्मान में कुछ ना कुछ आयोजन करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। उन्होंने ही वेदों का वर्गीकरण किया, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। उन्होंने ही महाभारत में 18 पुराणों की रचना की। महर्षि व्यास को मानव जाति का आदि गुरु, सबसे पहला गुरु माना जाता है। उनके इस अद्वितीय योगदान के सम्मान में इस दिन को ही हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने स्वयं को आदि गुरु के रूप में बदला था। उन्होंने हिमालय पर अपने पहले 7 शिष्यों को योग, ध्यान, ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दिया था और इस दुनिया में पहली गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत हुई थी। गुरु शिष्य परंपरा भगवान शिव द्वारा इसका प्रारंभ हुआ था, इस की शुरुआत हुई थी। और आप जानते हैं कि पहले जो विद्यालय नहीं थे, गुरुकुल हुआ करते थे, जैसे राम लक्ष्मण चारों भाई गुरुकुल में पढ़ने गए थे, ऐसे ही घर से दूर वन में या किसी गुरुकुल में पढ़ाई की जाती थी। और गुरुओं के सम्मान के साथ साथ गुरु माता जो उनका ध्यान रखती थी, उनके भोजन का, उनकी साफ सफाई का, उन बच्चे उनकी सहायता करते थे गुरुकुल में, उनको भी पूजा जाता था। गुरु के साथ गुरु माता का भी सम्मान किया जाता था।

0: मौसम के नज़रिए से देखें तो ये समय वर्षा ऋतु का होता है भारत में, और पुराने समय में साधु संत और गुरु एक जगह रुककर साधना करते थे। इस दौरान शिष्य 4 महीने तक अपने गुरु के सानिध्य में रहकर अनुशासन और जीवन के मूल्यों को सीखते थे। ये एक बहुत बड़ी विशेष बात है कि हमारा कोई भी त्यौहार, कोई भी उत्सव, कोई भी पर्व आता है, ऋतुओं पर उस वे आधारित रहते हैं, चाहे वे गुरु पूर्णिमा हो, रक्षाबंधन हो, और जैसा कि अभी एक भाई जी ने चर्चा की कि श्रावणी मास चलता है। भारत में सभी ऋतुओं के साथ साथ ऐसे पर्व मनाए जाते हैं। एक फ़ोन कॉल लेते हैं, फिर चर्चा को जारी रखते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्कार। मेरी सबसे बड़ी गुरु माता।
0: नमस्कार गुरु माता, सबसे बड़ी मैं नहीं हो सकती, आपकी माता गुरु माता होंगी।
1: आप जितने बोलेंगी उतनी कम है। बहुत अच्छी अच्छी बोली, विचार लेकर अच्छी, अच्छा लगता है
0: जी। आपका शुभ नाम जानना चाहूंगी।
1: मैं नाम संगीता हूँ, मोडलवे की।
0: जी संगीता जी, स्वागत है आपका।
1: हाँ आपको भी। हाँ तो यही बोलती हूँ, कितनी अच्छी अच्छी गुरु को ये सब अच्छा शिक्षा मिलती है हम लोग को ना
0: जी।
1: अच्छा लगता है,
0: बिल्कुल।
1: ये वक्त हम लोग को सुनना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: हम लोग को सुनना चाहिए ये सब प्रोग्राम।
0: गुरु की बात जो उन्होंने कही, जो हमारे मार्गदर्शन किया, वो हम भूल नहीं सकते, क्योंकि
1: नहीं भूल सकते। नहीं,
0: गुरु
1: नहीं।
0: ही सबसे बड़ा होता है, चाहे वे सबसे पहली गुरु तो घर की माँ होती है, घर के पिता होते हैं, उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, क्योंकि अब गुरुकुल नहीं है, हम स्कूल जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस में पहुंचते हैं,
1: बहुत चीज सीखती हैं स्कूल से, पहले माता पिता से।
0: सबसे पहले सम्मान माता पिता का, गुरुजनों का ही होना चाहिए। जी कहिए।
1: एक छोटी सी कितन
0: जी, अवश्य स्वागत है।
1: अच्छा, पितु मातु सहायक स्वामी सखा

हो, सब भक्ति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गन नाशन हारे हो, प्रतिपाल करो सिंह जग को, अतिशाय करुणा उधार हो, भूली है।

0: महा महिमा तुम्हारी समझे बिरले बुद्धि वाले हो। सब शुभ शांति निकेतन प्रेमी दह मन मंदिर के उजियाला उजियारे हो। ऐसे जीवन के तुम जीवन हो इन प्राण के तुम प्यारे हो। तुम सो प्रभु पाया प्रताप हरि के अब अंत सहारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो।
1: बहुत सुंदर।
0: ये तो स्वामी तो गुरु ही के कीर्तन है, बहुत पहले के हैं।
1: बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर कीर्तन।
0: बहुत आपको धन्यवाद। शुभ शांति, शुभ संध्या
1: जी। हम चर्चा को जारी रखते हैं। जब हम बात करते हैं गुरु शिष्य परंपरा की, तो गुरु शिष्य परंपरा हमारे संस्कृति की आत्मा है। यह केवल शिक्षा देने का कोई तरीका नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति, कला एवं आध्यात्मिक रहस्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक अत्यंत पवित्र जीवंत माध्यम है। एक लिविंग ट्रेडिशन जिसे हम कहेंगे, परंपरा है कि गुरु से हम शिक्षा पाते हैं और गुरु से हम सब सीख पाते हैं।

परंपरा के दो मुख्य आधार हैं जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश लाता है, और दूसरा है जो पूरी श्रद्धा, समर्पण और सीखने की इच्छा से गुरु के साथ उसकी शरण में रहता है। तो ये परंपरा बहुत ही विशेष है, क्योंकि बिना गुरु के हम कुछ पा नहीं सकते। पहले मौखिक परंपरा थी प्राचीन काल में हमारे पास, आज की तरह किताबें, इंटरनेट, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस कुछ भी नहीं होता था। गुरु जो बोलते थे शिष्य उसे सुनकर कंठस्थ कर लेते थे, याद कर लेते थे। वेदों और उपनिषदों का ज्ञान सदियों तक इसी तरह सुरक्षित रहा, और अब शिष्य अपना घर छोड़कर गुरु के आश्रम में पहुंचते थे, वहीं रहते थे। वहां के वे केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने की कला, अनुशासन, सेवा, सदाचार भी सीखते थे। अमीर हो या गरीब, सभी शिष्य वहां एक समान रहते थे। आज भी हम देखते हैं स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में जब बच्चे विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं तो यूनिफॉर्म नहीं होती है, पर जब तक वे विद्यालयों में हैं, अपने अपने स्कूल में जाते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, क्योंकि सब एक बराबर दिखने चाहिए, सब में समानता होती है। यूनिफॉर्म उनको एक दूसरे से भिन्न नहीं कर पाती है, क्योंकि यूनिफॉर्म में सब बच्चे एक समान दिखते हैं। गुरु हर किसी को हर ज्ञान नहीं देते हैं। वे पहले शिष्य की परीक्षा लेते थे कि क्या वे इस ज्ञान को संभालने के योग्य है। जब शिष्य मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार हो जाता था, तभी गुरु उसे गूढ़ रहस्य सौंपते थे। और प्राचीन काल में तो शिक्षा बेची भी नहीं जाती थी। शिक्षा पूरी होने के बाद शिष्य अपने सामर्थ्य और गुरु की इच्छा के अनुसार गुरु दक्षिणा देता था, जो कि कोई धन, कोई सेवा या गुरु को दिया गया कोई वचन भी हो सकता था, जैसे एकलव्य या आरुणी की कथाएं हैं। हम सब जानते हैं कि एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी गई थी। इसी प्रकार आरुणी की भी कथा है जिसमें उससे गुरु दक्षिणा की बात की गई थी। यह परंपरा केवल अध्यात्म तक सीमित नहीं रही बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में विकसित हुई। श्रोताओं, आधुनिक युग में बहुत महत्व है, पर आज व्हाट्सएप, गूगल हमारे गुरु बने हुए हैं, पर हमें अपने बच्चों को बताना है कौन सी ऐप सही है, कौन सा ज्ञान सही है, कौन सा ज्ञान गलत है, क्योंकि बिना गुरु के ये ज्ञान बहुत हानिकारक भी हो सकते हैं। इसलिए उन पर नज़र रखनी आवश्यक है कि वे कौन सी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, और कहाँ तक वे ज्ञान उनके लिए लाभदायक है, कहाँ वे हानिकारक हो सकता है। एक छोटी सी कहानी गुरु और शिष्य के अनूठे संबंध को समझाने के लिए प्राचीन काल की ये एक बेहद प्रसिद्ध और प्रेरक कहानी है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आरुणी, आरुणी की गुरु भक्ति के नाम से जाना जाता है। ये कहानी महाभारत के पौष्य पर्व से जुड़ी हुई है, जो हमें सिखाती है कि सच्चा शिष्य कैसा होता है और गुरु का ज्ञान शिष्य के जीवन में कैसे बदल देता है उसके जीवन को। महर्षि धौम्य का एक गुरुकुल था, उनके कई शिष्यों में से एक थे आरुणी। आरुणी बहुत ही सीधे, सरल और अपने गुरु के प्रति गहरी श्रद्धा रखने वाले बालक थे। गुरुकुल में केवल किताबी पढ़ाई नहीं होती थी बल्कि शिष्यों के आश्रम में व्यवहारिक काम भी करने होते थे ताकि वे जिम्मेदार बन सके। एक बार आषाढ़ के महीने में बहुत तेज बारिश हो रही थी, पूरा गुरुकुल पानी से घिर गया था। महर्षि धौम्य को चिंता हुई कि कहीं उनके आश्रम की खेती की मेड़ जो होती है, मिट्टी की एक छोटी सी दीवार जो पानी को रोक सकती है, मेड़ टूट ना जाए। अगर मेड़ टूट जाती तो सारा पानी

बह जाता और फसल बर्बाद हो जाती। उन्होंने कहा, गुरु ने अपने शिष्य अरुणी से कहा कि बेटा तुम तुरंत खेतों की ओर जाओ और देखो कि धान की खेत की मेड़ कहीं टूट तो नहीं रही है। अगर पानी बह गया तो आश्रम के लिए अन्न का संकट हो जाएगा, क्योंकि पहले अन्न वहीं पर उगाया जाता था, उसके बाद बच्चों के लिए जो वहाँ पे शिष्य होते थे उनके लिए प्रावधान किया जाता था भोजन आदि का। आरुणि गुरु की आज्ञा मानकर तुरंत तेज बारिश और तूफान के बीच खेती की तरफ दौड़ गए। खेती पर पहुंचकर आरुणि ने देखा कि एक जगह से मेड़ सचमुच टूट चुकी थी और पानी बहुत तेजी से गति से बाहर जा रहा था, बह रहा था। आरुणि ने तुरंत पास से मिट्टी काटना शुरू किया और उस बहते पानी के रास्ते में डालने लगा, लेकिन पानी तो आप जानते ही हैं, उसका बहाव, उसका प्रवाह कहाँ रोक पाती वो छात्र द्वारा डाली गई थोड़ी सी मिट्टी। आरुणि जितनी मिट्टी डालते पानी उसे अपने साथ बहा कर ले जाता। उन्होंने पत्थरों और लकड़ियों से भी पानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। शाम ढलने लगी थी, ठंड बढ़ रही थी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आरुणि को गुरु का वचन याद था, पानी बहना नहीं चाहिए। जब उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने एक साहसी निर्णय लिया। आरुणि खुद उस टूटी हुई मेड़ की जगह पर पानी के बहाव के आगे लेट गए। उनके शरीर में पानी का बहना रोक तो लिया, ठंड से उनका शरीर कांप रहा था। पानी के भीतर लेटे लेटे उनकी सांसें फूल रही थी, लेकिन उनके मन में केवल एक ही बात थी कि गुरु की आज्ञा का पालन होना चाहिए। रात हो चुकी थी, आरुणि आश्रम नहीं लौटे तो महर्षि धौम्य को चिंता हुई। वे लालटेन लेकर अपने अन्य शिष्यों के साथ खेतों की तरफ आरुणि आरुणि पुकारने लगे। खेतों के पास से एक बेहद कमज़ोर आवाज़ आई, गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। खेत की मेड़ पर जब गुरुदेव ने देखा तो उनका प्रिय शिष्य पानी को रोकने के लिए खुद मेड़ बनकर लेटा हुआ था और उनकी आंखें भर आईं। गुरुदेव ने तुरंत आरुणि को पानी से निकाला और गले से लगा लिया। आरुणि के इस निस्वार्थ समर्पण को देखकर ऋषि धौम्य ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र तुमने गुरु की आज्ञा को अपने प्राणों से बढ़कर माना है। आज से तुम्हें बिना पढ़े ही सारे वेदों, शास्त्रों और ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तो श्रोताओं, ये कहानी कितनी मार्मिक है, इससे हमें क्या महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। आरुणि ने किसी परीक्षा को पास करने के लिए या तारीफ को पाने के लिए ऐसा नहीं किया था, उनके मन में गुरु के प्रति निस्वार्थ भाव था। जब एक शिष्य अपने अहंकार को छोड़कर गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है तो गुरु का ज्ञान सीधे उसके भीतर उतर जाता है। और दूसरी बात, शिक्षा केवल वही नहीं है जो हम क्लासरूम में या बैठकर सीखते हैं। परिस्थितियों के सामने हार ना मानना और अपनी जिम्मेदारी को अपनी आखिरी सांस तक निभाना ही असली व्यवहारिक शिक्षा है। तो दो बातें जो हमने सीखी इस छोटी सी कहानी से, गुरु शिष्य के लिए समर्पण, शिष्य का गुरु के लिए समर्पण और जिम्मेदारी का एहसास, ये दो बातें कितनी अच्छी तरह से इस कहानी ने हमें सिखाई। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में एक गीत से हम सजाते हैं कार्यक्रम को, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी।

0: माता सरस्वती को हम कैसे भूल सकते हैं जब हम गुरु पूर्णिमा की बात कर रहे हैं। तो माँ सरस्वती ही हमारी शिक्षा दायिनी है, हम उनको नहीं भुला पाए, इसीलिए कार्यक्रम में ये गीत जोड़ा गया। एक फ़ोन कॉल लेते हैं, फिर चर्चा जारी रखते हैं। हेलो,
1: गुरु बिना कैसे गुण गावे, मारे चोरी छाए सबको, चरण गहे सदी कण के जब आवे अचपल पास करे, गुरु बिना कैसे।
0: जी रुक क्यों गई? हेलो
2: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्ते बसंती जी, कैसी
2: जी,
0: हैं
2: जी? मैं हूँ बसंती
0: जी।
2: तो एक मैं दो लाइन गाकर सुनाऊंगी
0: जी, स्वागत
2: गुरु
0: है।
2: महिमा पर
0: जी।
2: गुरु

0: गुनियों में बेगुनी कहावे, गुरु बिन कैसे गुण आवे। माने तुरी छावे सबको, चरण गाहे सदिकन के जब आवे अचुपल ताल स्वर। गुरु बिन कैसे गुण आवे, गुरु बिन कैसे गुण आवे।
1: बहुत सुंदर जी। बिना गुरु के कहाँ से गुण पाएंगे
0: हम। जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कार्यक्रम में भाग लिया, आभार। देखिए उन्होंने कहा गुरु बिना हम गुण नहीं पा सकते, पर आज तो एआई का माहौल है श्रोताओं, गुरु शिष्य संबंध जो माहौल बना हुआ है उसमें एआई ही गुरु है, शिष्य भी है, संबंध भी है। पहले जहाँ गुरु जानकारी का इकलौता और मुख्य जरिया होता था, आज गूगल चैट जीपीटी एआई टूल्स ने पलक झपकते ही

दुनिया भर की जानकारी, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन छात्रों के सामने लाकर रख दी है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि जब सब कुछ एआई सिखा सकता है तो फिर गुरु की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है हमें गुरु की। लेकिन सच ये है कि इस डिजिटल युग में भी गुरु शिष्य का रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। कैसे? एआई के पास दुनिया भर का डेटा है, वह आपको कोडिंग सिखा सकता है, गणित का फॉर्मूला हल करके दे सकता है और इतिहास के तारीखें जो हैं वो बता सकता है। लेकिन एआई तथ्य दे सकता है, सत्य नहीं दे सकता आपको। ये जानकारी दे सकता है, लेकिन उस जानकारी का समाज और जीवन की भलाई के लिए सही इस्तेमाल कैसे करना है, वह केवल एक मानव गुरु ही सिखा सकता है। जिसे हम विवेक या विजडम कहते हैं, वो तो गुरु द्वारा ही हम पा सकते हैं। टीचर कहें या मेंटर, आज के दौर में गुरु की भूमिका बदल गई है। अब गुरु का काम सिर्फ लेक्चर देना ही नहीं, सिलेबस ख़त्म करना ही नहीं होता है, क्योंकि वे काम छात्र एआई से भी कर सकते हैं। अब गुरु एक गाइड या मेंटर बन गए हैं। गुरु अब छात्र को ये सिखाते हैं कि एआई द्वारा दी गई सही और गलत जानकारी में फ़र्क कैसे करेंगे, ये गुरु ही बता सकते हैं। क्योंकि भंडार है आपके पास इन्फॉर्मेशन का, पर क्या उसमें से सही है और क्या गलत है, ये पहचान आपको एक टीचर या मेंटर या गुरु ही दे सकता है, करवा सकता है आपकी पहचान। वे छात्र जो क्रिटिकल थिंकिंग, तर्क संगत सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं, जो एआई के इस दौर में सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़रूरी है, ज़िंदा रहने के लिए बहुत आवश्यक हो जाती है। एआई एक मशीन है, उसके पास दिल नहीं होता है, क्योंकि वे एक टूल है जिसे आप यूज़ करते हैं, अपने लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब एक छात्र पढ़ाई के दबाव में टूट रहा होता है या करियर को लेकर कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, भ्रम में रहता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, तब एआई उसे डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकती। ये एक गुरु ही ऐसा कर सकता है कि शिष्य की पीठ को थपथपाकर हौसला दे उसे और कहना कि वो कह भी सकता है कि चिंता मत कर, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी बच्चे घर आते हैं तो माँ या पिता ही पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं हम हैं ना, तुम क्यों चिंता करते हो। तो माता पिता और गुरु ही जब पीठ थपथपा के आपको का मार्गदर्शन करते हैं, तभी आप वो डिप्रेशन, वो प्रेशर से बाहर आ पाते हैं। एआई आपको वो प्रेशर से बाहर नहीं निकाल सकता है, कोई भी डिजिटल डिवाइस आपको उस प्रेशर से बाहर नहीं निकाल सकता है। और ये मानवीय स्पर्श होता है जो सहानुभूति कोई भी एल्गोरिदम रिप्लेस नहीं कर सकता है। जैसा कि मैंने कहा, एल्गोरिदम कुछ नहीं बता सकता, जस्ट आपकी प्रॉब्लम क्या है उसको सॉल्व कर सकता है। एल्गोरिदम आपकी समस्या को नहीं सुलझा सकता है, आपके डिप्रेशन को दूर नहीं कर सकता है। आरुणी की कहानी की तरह ही गुरु और शिष्य का जुड़ाव दिल से होता है। मैंने पहले भी कहा कि 40 छात्रों की एक कक्षा होती है, जिसमें से एक या दो ही ऐसे होते हैं जो गुरु या टीचर या मैम जिससे भी जुड़ते हैं, उनका एक संबंध बनता है, एक अलग ही रिश्ता बनता है, जो कि बिना तारों के ये संबंध जो हैं यही गुरु शिष्य संबंध हैं। और एआई गुरु क्या करता है, आपको नैतिकता और संस्कार सिखाते हैं। डेटा फैक्ट्स दे सकता है, पर नैतिकता और संस्कार गुरु ही सिखाते हैं। एआई आपके सवालों के जवाब दे सकता है, पर आपके भीतर सही सवाल

सवाल पूछने की उत्सुकता गुरु पैदा कर सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये आपको एक गुरु ही शिक्षा दे सकता है, गुरु ही ये ज्ञान दे सकता है। मशीन आपको कुशल बना सकती है, पर एक बेहतर और संवेदनशील इंसान बनाने के लिए एक सही गुरु होना, एक सही अध्यापक होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम अध्यापकों का निरादर ना करें, अपने गुरु को सम्मान दें, अपने माता पिता को सम्मान देना आवश्यक है। माता पिता और गुरु का सम्मान में कोई कमी कभी नहीं करनी चाहिए। श्रोताओं, हम घड़ी को देख रहे हैं, घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि बिल्कुल अंत तक पहुंच चुके हैं हम, और बाहर संजय जी आ चुके हैं जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं, और साथ ही आप सब जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया उन्हें आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े। और आप सब जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, आप सभी के लिए गुरु पूर्णिमा शुभ हो, बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की बधाई हो। यज को यहाँ पर धन्यवाद देंगे जिनके टेक्निकल सहयोग से आप तक ये कार्यक्रम पहुँच रहा है। इसी के साथ शुभ संध्या।

0: 94.6, 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: इस समय शाम के 5 बज रहे हैं।
2: खेल खिलाड़ी इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
3: खेल खिलाड़ी खिलाड़ी खिलाड़ी

रेडियो मॉरिशस के सभी श्रोताओं को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब। खेल खेलाड़ी में प्रोग्राम में आप सबों का हार्दिक अभिवादन है, स्वागत है। सबसे पहले कबूल कीजिए हमारे दोस्त रोशन का सलाम। आज वे कहीं और पर व्यस्त हैं और बदले में हमें भेजा है आपकी सेवा में। हमें यकीन है कि वे जहां पर भी होंगे उनका प्यार आप तक जरूर पहुंचेगा।

रेडियो रेडियो मॉरिशस की लहरों पर आप सुन रहे हैं खेल खिलाड़ी संजय के साथ। आपको याद होगा कि एक सप्ताह पहले पिछले रविवार को इनफैक्ट कितना बुखार चढ़ा हुआ था वर्ल्ड कप का, और एक सप्ताह बाद सब थम गया है। लेकिन हम चाहेंगे कि आज के इस प्रोग्राम के जरिए उस बुखार को थोड़ा सा हम फिर से उत्तेजित करें। और आज हमने क्विज रखा है ऑन वर्ल्ड कप 2026, जिसमें भाग लेने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 5225170055 5251705। और जो पहला बहुत ही आसान प्रश्न रखते हैं, वर्ल्ड कप 2026 किन तीन देशों में खेला गया? वर्ल्ड कप 2026 किन तीन मेजबान देशों में खेला गया? आपका जवाब ऑन 5251705।

खेल खिलाड़ी प्रोग्राम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर पहला सवाल हमने किया कि वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस किन तीन देशों में खेले गए और जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया इंदिरा लहुतन जी, सही जवाब यूएसए, मेक्सिको और कनाडा। इंदिरा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपको बधाई। दूसरा सवाल, इस वर्ल्ड कप 2026 में कितने देशों की टीमों ने भाग लिया?

साल 2022 में 32 देशों ने भाग लिया था, इस साल कितने देश वर्ल्ड कप 2026 में देशों ने भाग लिया? आपका जवाब या व्हाट्सएप ऑन 5251705।

0: कंपटीशन के दौरान कितने देशों की टीमें ने भाग लिया। चले हम इनको सुनते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका शुभ नाम?
1: मैं उमा हूँ, रोजबेल से।
0: रोजबेल से उमा जी, आप बताएं रोजबेल के किस प्रांत में रहती हैं आप?
1: मारीजानी।
0: वाओ,
1: अभी आप भी इसी के निवासी है ना? नहीं? आप पहचानी है।
0: हम तो सबों के दिलों में रहते
1: हैं। हाँ, ये सच है, ये सच है। आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया है।
0: बहुत धन्यवाद।
1: नहीं आए हैं आज?
0: हाँ, आज कहीं पर जा रहे होंगे और हम ये कहने की अभी सुन रहे होंगे। सुन रहे, अगर आप उन्हें कुछ कहना चाहती है तो अवश्य कह सकती है।
1: सबको नमस्ते कर दीजिएगा।
0: उनको भाभी जी को और उनके दो होनहार बेटों को करते हैं सलाम।
1: जरूर जरूर।
0: हाँ, बेटे तो ऐसे ही जैसे कि एक्टर। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। उमा जी, आप बताएं कि कितने देशों ने भाग लिया था?
1: 48
0: 48 देशों ने भाग लिया था। लेकिन आपको पता है कि इससे पहले कितने देश भाग ले रहे थे?
1: वो मुझे याद नहीं।
0: 32
1: 32।
0: उमा जी, आपके साथ साथ हम मागजानी और रोजबर के सभी निवासियों को करते हैं सलाम।
1: जरूर जरूर।
0: नमस्कार
1: नमस्कार। शुभ संध्या।
0: जय मॉरिशस, जय मॉरिशस।

चले बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न के साथ। कुल मिलाकर कितने मैचेस खेले गए पूरे टूर्नामेंट में, पूरे कंपटीशन में कुल मिलाकर कितने मैचेस खेले गए? आपका जवाब ऑन 402-80-85 कॉल करने के लिए या तो मैसेज के जरिए ऑन 52-51-7005।

0: या वर्ल्ड कप के बुखार के बाद इन दिनों काफ़ी बेस्वादी जैसे लगने लगे हैं। सो हमने आपसे पूछा कि कुल मिलाकर पूरे कंपटीशन में कितने मैचेस खेले गए, चलिए हम इनसे मिलते हैं। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार
0: आपका शुभ नाम?
1: सुबीर सेन
0: जी। अच्छा आप बताएं, आपने वर्ल्ड कप के मैचेस देखे?
1: हाँ मैंने चंद मैच देखे।
0: चंद मैचेस के? हाँ जरा देर नहीं थे?
1: हाँ बहुत देर।
0: मैचेस देखने के बाद सुबह

0: आप उठ पा रहे थे?
1: हाँ, मैंने मैनेज किया,
0: मैनेज किया। आप अभी तक नौकरी करते हैं या आपने अवकाश ले लिया है?
1: नहीं, मैं टेलर हूँ।
0: ओके,
1: टेलर।
0: सो कितने मैचेस खेले गए?
1: 104।
0: आपकी कोई फेवरेट टीम थी?
1: हाँ, इंग्लैंड।
0: इंग्लैंड, और वो ब्रॉन्ज मेडल जीत पाए। और आपने आखिरी मैच देखी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच?
1: हाँ, मैंने देखी।
0: मेरे हिसाब से इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल मैच ऑफ द होल टूर्नामेंट।
1: हाँ, ये मैच बहुत बहुत ताकतिक में है।
0: हाँ,
1: ये दोनों दोनों टीम यूरोप में है और दोनों टीम में बहुत अच्छे खिलाड़ी है।
0: हाँ, और ब्यूटीफुल फुटबॉल, ब्यूटीफुल फुटबॉल, बहुत सारे गोल्स। और वो मैच जैसा नहीं था जो इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला गया।
1: नहीं नहीं, अर्जेंटीना इंग्लैंड एक लड़ाई जैसी।
0: हाँ, लड़ाई जैसी थी। फुटबॉल कम और कुश्ती ज्यादा।
1: कुश्ती ज्यादा।
0: हाँ,
1: ये फेयर प्ले नहीं है।
0: It was not family. So, Subir Sanji, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए और MBC पर मैचेस देखने के लिए। नमस्कार।
1: नमस्कार।

टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड में चंद खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और उनमें से एक है काव्यदे का कीपर, गोल कीपर, जिन्होंने बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। आप हमें उनका नाम बताएं। काव्यदे का स्टार गोल कीपर का नाम बताएं। बाय कॉलिंग ऑन 402 80 85।

0: सो जो अगला सवाल हमने किया कि फर्स्ट राउंड में काफ़ी खिलाड़ियों ने बहुत गहरा छाप छोड़ा, बहुत ही फेमस हुए, और उनमें से एक हैं काव्यदे का स्टार गोलकीपर। आपको हमें उनका नाम बताना था, चले हम इनसे मिलते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: आपका शुभ नाम?
1: मेरा नाम दिला है, मैं मौलासो रहता हूँ।
0: दिला जी, सो आपकी फेवरेट टीम कौन सी थी? आपकी फेवरेट टीम कौन सी थी
1: जी?
0: वर्ल्ड कप में आपकी फेवरेट टीम कौन सी थी?
1: मेरा टीम है इंग्लैंड।
0: इंग्लैंड
1: और लिवरपूल। 60 years।
0: ओके,
1: सो मैं फॉलो करता हूँ, मैं डीप रिसर्च करता हूँ फुटबॉल में।
0: बहुत अच्छी बात, बहुत ही, आप जरूर कीजिए। सो आप बताएं कि काव्यदे का किस तरह गोलकीपर का नाम क्या है?
1: विजेनहा
0: जोजिमा जोजे एवोरा डियास, अर्थात वोजिनहा। वोजिनहा, आप जानते हैं कि उनकी उम्र कितनी की है?
1: 40। तो मैं एग्जांपल है ना काव्यदे का।
0: हाँ,
1: एक एग्जांपल है। यस प्रोशन, नेक्स्ट टाइम में भी ये वर्ल्ड कप सेमीफाइनल पक्के जाने लगा है। अर्जेंटीना संगे ड्रो कर ले बा।
0: हाँ,
1: हाई लेस्पाइन संगे ड्रो कर ले बा।
0: हाँ,
1: समझ लो ते को बारह बारह बारह टीम हो उकर एंट्रेनर हुए को ग्रैंड एंट्रेनर।
0: हाँ, देखा
1: मतलब
0: देखा सा।
1: और चली पोर्चुगल का लिटे खेले ला एगो लेता पोर्चुगल के रहने को लेको ना इंडिपेंडेंस मिला।
0: हाँ, तो देखा सा, चार साल में देखा सा काव्यदे कहाँ तक पहुँचे।
1: और ढेर ढेर लेकी पति हो या मिलियोगे हो। और हम अब ये प्रजिया का देखी लॉन्ग लेते हैं गब गो फिनालिस बा प्रोशन अच्छी में पसीर है एंट्रेनर वहाँ देखा था एगो ग्रैंड एंट्रेनर में सेलमा दो तीन गो एरिया का ला कर लॉन्ग एंटीन सगे एगो एगो लेंटेवा 5 to 6 minutes में सकल चीनी करे है मचवा।
0: So, इसके बारे में तो चर्चा होती रहेगी। फिर से मिला जब बात कर अब जा। अच्छा,
1: हाँ तब बहुत धन्यवाद, सब श्रोतालो के धन्यवाद, तोरो धन्यवाद करत है। और है प्रोग्राम बहुत नरम और गरम है।
0: फिर से मिला जा, नमस्ते। सो आज एक क्वीज कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2026 को लेकर। वर्ल्ड कप तो समाप्त हो गया, लेकिन कितनी जानकारी हम रखेंगे अपने मन में इस घटना को लेकर, इस वर्ल्ड इवेंट को लेकर। थोड़ी देर में हमारा आज का अगला प्रश्न।

बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। इस पूरे कंपटीशन में किस टीम ने सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए हैं? इस पूरे कंपटीशन में किस टीम ने, किस देश की टीम ने सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए हैं? आपका जवाब ऑन 402 80 85।

सो जो प्रश्न हमने पूछा कि इस वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में किस देश की टीम ने सबसे ज्यादा गोल्स उसको किए, लगता है कि ये प्रश्न काफी डिफिकल्ट है. नॉट सो डिफिकल्ट. जवाब देने के लिए आप हमें फोन करें 402 80 85.

0: दोस्तों, प्रोग्राम खेल खिलाड़ी रेडियो मोशन की लहरों पर संजय के साथ आज हम एक रिकैप कर रहे हैं, क्विज कर रहे हैं ऑन द वर्ल्ड कप 2026 और प्रश्नों के जरिए और आपके जवाबों के जरिए हम देख पा रहे हैं कि कितने लोगों ने इस कंपटीशन को फॉलो किया और कितनी दिलचस्पी आप रखते आ रहे हैं। और सवाल जो हमने किया कि इस कंपटीशन में किस देश की टीम ने सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए, चले हम इनसे मिलते हैं। हेलो,
1: हाँ जी,
0: नमस्कार जी।
1: कि पे इन में गो इन में गए?
0: हाँ, वी
1: लिस्पाइन?
0: नहीं नहीं
1: और
0: नहीं, इट इज नॉट लिस्पाइन।
1: ओके
0: ओके, तो किस टीम ने?
1: अरे दे दो, सॉरी।
0: बोला बोला
1: बोले के?
0: हाँ बोला,
1: कुछ बोला। इंग्लैंड बोलनी?
0: नहीं,
1: स्पेन बोलनी? अर्जेंटीन?
0: नहीं, अर्जेंटीन भी नहीं।
1: आप रोशन नहीं है?
0: नहीं, आप बताएं कि एम्बापे किस टीम के लिए खेलता है?
1: एम्बापे की टीम कौन है? एम्बापे से टीम फ्रांस?
0: हाँ वही। एम्बापे जिस टीम के लिए खेलता है, एम्बापे तो लीड स्कोरर है। एम्बापे ने 10 गोल स्कोर किए हैं और उनकी टीम फ्रांस ने 20 गोल बनाए हैं इन द होल कंपटीशन। बाप, हाँ बाप रे बाप, हाँ हाँ, बहुत बहुत होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाग लेने के लिए। फिर से मिलाप जा, नमस्ते।
1: ओके,
0: नमस्ते,
1: थैंक यू।

अब की बार एक बहुत ही आसान प्रश्न, किस देश की टीम ने सबसे कम गोल्स कंसीड किए? किस टीम ने सबसे कम गोल कंसीड किए? आपका जवाब ऑन 402 80 85.

सो जो सवाल हमने आपसे पूछा कि which was the team that conceded the least, यानी कि the best defense in the whole tournament, सही जवाब स्पेन, जिसने सिर्फ एक ही गोल स्कोर कंसीड किया था पूरे टूर्नामेंट में, और वो एक जो मात्र गोल उसने कंसीड किया था दैट वाज अगेंस्ट बेल्जियम, और बेल्जियम के खिलाड़ी शॉल दे केटेलारी स्कोर द ओनली गोल फॉर बेल्जियम अगेंस्ट स्पेन ड्यूरिंग देयर 2026 फाइनल फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल मैच. और इसके अलावा स्पेन ने एक गोल भी नहीं कंसीड किया था. सो दैट वाज द ओनली गोल कंसीडेड बाय स्पेन इन द होल टूर्नामेंट, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है.

सो इस वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े हुए जुड़ी हुई बहुत सी सुनहरी यादें हम दिल में संजोए रखेंगे, बहुत से ब्यूटीफुल, बहुत से खूबसूरत, मनमोहक स्पोर्टिव इवेंट दृश्य इस वर्ल्ड कप से जुड़े हुए जो हम रखेंगे अपने दिलों में। और कैसे भूल सकते हैं आखिरी मैच जो मेटलाइफ स्टेडियम में खेला गया इन न्यू जर्सी, और जहां पर फेरान टोरेस ने स्पेन के लिए गोल स्कोर किया था इन एडिशनल टाइम, एक्स्ट्रा टाइम ऑन द 106 मिनट, और जिस तहत स्पेन की जीत हुई 1-0 अगेंस्ट अर्जेंटीना। और कैसे भूल सकते हैं कि मैच के बाद किस तरह से लियोनेल मेसी की आंखों में हमने आंसू देखे, दिल को बहुत दुख हुआ ये देखकर।

0: सदियों से और कुछ मिनटों में खेल खिलाड़ी ये प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। चलते चलते हम अपने सभी स्पोर्ट्स प्रेमियों को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने MBC प्ले पर और MBC स्पोर्ट्स 11 पर इस वर्ल्ड कप को सराहा, देखा और हमारे प्रोग्रामों में भाग लिया, वो टीवी पर हो या रेडियो पर हो। और साथ ही साथ आपको रेंडेवू देते हैं 4 साल में फॉर द वर्ल्ड कप 2030 जो लगने वाला है मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में। और जिस तरह से इस साल में ये वर्ल्ड कप कवरेज बहुत ही ऐतिहासिक रहा, मोन्यूमेंटल रहा, हमें यकीन है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी उतना ही मनमोहक होगा और आप सभी लोगों का प्यार, आप सभी लोगों का सपोर्ट हमें हासिल होगा। सो जितने भी लोगों ने आज के इस प्रोग्राम में भाग लिया, आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। अगले शनिवार को आप मिलेंगे फिर से हमारे दोस्त रोशन के साथ। अभी के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं, शुक्रिया। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: खेल खिलाड़ी वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। घर घर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की नई पहल। 3,600 परिवारों को मिलेगा लाभ। 75,000 तक की सब्सिडी से ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर कदम। क्यूबिप में मिस्र के राष्ट्रीय दिवस का आयोजन। मॉरिशस और इजिप्ट के बीच दोस्ती और सहयोग के रिश्ते मजबूत। शिक्षा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नए अवसरों पर चर्चा। कम उम्र से तैराकी सीखना पानी में सुरक्षा की पहली सीढ़ी। ड्राउनिंग प्रिवेंशन पर विशेष जोर। द्वीप पर रहने वाले लोगों के लिए जरूरी जीवन कौशल। विदेश में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शन खत्म। सीजेपी की मुख्य मांग हुई पूरी। सरकार और सीजेपी की संयुक्त घोषणा के बाद हड़ताल वापस। अब समाचार विस्तार से। हाउसहोल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक स्कीम का आधिकारिक शुभारंभ इस शनिवार क्यूबिप में किया गया। इस योजना के तहत सोलर सिस्टम खरीदने की लागत पर 25% सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 75,000 रुपये प्रति परिवार होगी। करीब 3,600 परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए पात्रता की शर्त ये है कि परिवार की मासिक आय 1,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
2: हाउसहोल्ड रूफटॉप फोटोवोल्टाइक योजना, जिसकी औपचारिक लॉन्चिंग क्यूबिप में की गई, 3,600 परिवारों को लाभान्वित करेगी। इस सहायता योजना के तहत घरों की छतों पर सौर फोटोवोल्टाइक पैनल लगाने के लिए 25% तक की सब्सिडी, अधिकतम 75,000 प्रति परिवार प्रदान की जाएगी। ये परियोजना सीबी, डीबीएम और वित्त मंत्रालय के संयुक्त सहयोग से लागू की जा रही है। जूनियर वित्त मंत्री धनेश्वर दामरे कहते हैं,
3: l'eau ou toit, la case, y amène la croissance. Prenant à peu près 400 mégawatts d'énergie renouvelable, l'investissement dedans.
2: घर की छत पर हर एक सोलर पैनल वृद्धि लाती हैं। करीब 400 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का निवेश इसमें किया जाएगा। करीब 41 बिलियन रुपए का निवेश। इसके सफल होने पर खरीद शक्ति बेहतर होगी, नौकरी पैदा होगी, शिक्षा में संसाधन मिलेंगे, स्वास्थ्य में भी और समाज सुरक्षा में भी। मंत्री पत्रिका सियावादेन ने ऊर्जा आपूर्ति मजबूत करने के लिए कई कदमों पर बात की। सप्ताह के दौरान चीनी सरकार के साथ 1 बिलियन रुपए की संधि पर हस्ताक्षर करेंगे, ताकि और बैटरी खरीद सके, इसलिए ये परियोजनाएं शुरू की हैं। 2026 में हमें जमीन का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा की परियोजनाओं को जानना चाहिए। जमीन नहीं होगी तो परियोजनाएं नहीं होंगी। ये एग्रीवोल्टाइक परियोजना कृषि जमीन और सोलर पैनल का मिलन है, इसलिए प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे, ये देखने के लिए कि क्या सुधार ला सकते हैं, कानून में क्या बदलाव ला सकते हैं, ताकि ये परियोजनाएं 1.5-2 साल में नेटवर्क में शामिल हो। हाउसहोल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक योजना के लिए पात्रता का मुख्य मानदंड है कि परिवार की मासिक आय 1,50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इच्छुक आवेदकों को सबसे पहले सीबी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। इसके बाद उन्हें डीबीएम से संपर्क करना होगा, ताकि वे अपने घर की छत पर सौर फोटोवोल्टाइक पैनल लगाने के लिए 25% सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सके।
1: मंत्री पत्रिका सियावादेन ने कहा कि स्थानीय स्तर पर बिजली उत्पादन बढ़ाने से कोयले और पेट्रोलियम पैदावार के आयात में बड़ी कमी आएगी। इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा

0: और आत्मनिर्भरता भी मजबूत होगी, उनको सुनते हैं।
1: La population peut souffrir à sa restriction là. D, CWA pas encore capable de lier un approvisionnement est fiable, coupé, chez OPAC, un service qui nous connaît. Là. Donc, on ne peut pas disposer à le monde de l'eau pour le domestique là. Mais, ça qui est capable de payer, bien capable de payer. Donc, c'est pour cette raison qu'on trouve sa augmentation qui nous vient là, l'in ciblée à non domestique. Et un secteur et une capacité depuis mon get value of water. Valeur de l'eau dans mon smart city et valeur de l'eau dans mon les autres places du monde dans Pince, pas pareil. C'est pour cette raison qu'ils m'ont demandé à ce qui CWA et Wastewater, tous les deux amènent une augmentation qui reflète la réalité du pays après nous get au domestique.
0: तो ये था मंत्री पैट्रिक असियावदन का बयान मॉरिशस में पानी की स्थिति को लेकर। कल रात क्यूबेक में मिस्र का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 23 जुलाई 1952 की क्रांति की याद के साथ साथ ये कार्यक्रम पोर्टवी और कायरो के बीच दोस्ती और सहयोग के मजबूत संबंधों को फिर से दोहराने का अवसर भी बना। इस समारोह में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। चर्चा का मुख्य विषय शिक्षा और प्रशिक्षण, आर्थिक सहयोग तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में नए अवसर रहे। सामाजिक समावेशन के लिए खेल का सहारा, गरीबी में रहने वाले लोगों की मदद करने वाली लव ब्रिज और सड़क की परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ काम करने वाली सफाई ने इस शुक्रवार को क्यूपिप के डॉक्टर जेम्स बटीरा जिमनेजियम में अपने 80 लाभार्थी किशोरों जिनकी उम्र 13 से 15 साल है उनको एक साथ लाया। एम्पावर जन जुई पुआवों से नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में फुटबॉल आपसी सहयोग और खुद को बेहतर बनाने की भावना को बढ़ावा दिया गया।
2: एक दिन के लिए डॉक्टर जेम्स बेटी डेविड जिमनेशियम अलग अलग पृष्ठभूमि से आए 80 किशोरों के लिए मिलने और बांटने का एक मंच बन गया। फुटबॉल के आसपास इकट्ठा हुए इन युवाओं ने लव ब्रिज साफिया की टीम्स और स्पोर्ट्स कोचेस द्वारा आयोजित कई गतिविधियों में भाग लिया। लव ब्रिज की प्रोग्राम अधिकारी सांथरिन आचुन कहती है, दोनों संगठनों का एक ही विजन है, युवाओं का सशक्तिकरण। प्रतिभागियों को एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक साथ आने का मौका मिला जहां टीम की भावना, आदर और भागीदारी गतिविधियों के केंद्र में थे। मैं यहां अपनी टीम का समर्थन करने आई हूं, साथ में खेल रही हूं। समस्या होती है तो वे हमारी मदद करते हैं, इसी कारण मैं इसमें शामिल हूं। इस सहयोग के माध्यम से दोनों एनजीओज ने अपने लाभार्थियों को एक सामान्य गतिविधि के आसपास इकट्ठा करने की इच्छा जताई जिससे युवाओं के बीच आपस में विचार विमर्श को बढ़ावा मिले। साफिया के प्रोजेक्ट अधिकारी एडले मोरिया कहते हैं, हमारा मिशन है मॉरिशस में सामाजिक समस्याओं को दूर करना, खासकर बच्चों में। मॉरिशस में ड्रग की समस्या बढ़ती जा रही है। हम इन्हें बताना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में भी खुशी मिलती है, समाज में अच्छी तरह जी सकते हैं। हाली बताती हैं कि हम बहुत खुश हैं और बच्चों को साफिया संगठन में शामिल होने की मांग करते हैं। मैंने यहाँ कई दोस्त बनाए। विलियम बताते हैं, हम आपस में बातचीत करते हैं, खेलते हैं, गतिविधियों में भाग लेते हैं। लव ब्रिज और साफिया इस तरह की पहल को जारी रखने का इरादा रखते हैं ताकि समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके और सबसे असुरक्षित युवाओं के सहयोग को मजबूत किया जा सके।
0: देश के उत्तर महफू में रहने वाली माही सोल शापलेन लांजवान पेशे से फाइटो एरोमाटोलॉजिस्ट है। उन्होंने यहाँ पुराने समय या कि एक क्रियोल बगीचे का निर्माण किया है जहां वे परमाकल्चर के सिद्धांतों के अनुसार सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती करती है। वैज्ञानिक और ट्रॉपिकल एरोमाथेरेपी में प्रमाणित मारिसोल शापलेन लांजवान 44 साल बाद मॉरिशस लौटी है। उनका उद्देश्य आम लोगों को मॉरिशस के पारंपरिक औषधीय पौधों से फिर से परिचित कराना है। कम उम्र से ही तैरना सीखना पानी

0: में सुरक्षित रहने का सबसे प्रभावी तरीका है स्विमिंग पूल में शुरुआती अभ्यास से लेकर खुले समुद्र में पानी की गतिविधियों तक स्विमिंग की अच्छी समझ धीरे धीरे और प्रशिक्षकों की निगरानी में विकसित होती है। वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे के अवसर पर इस महत्वपूर्ण कौशल पर विशेष जोर दिया जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि हम एक ऐसे द्वीप पर रहते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। और 18 जुलाई से प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा के विद्यार्थी छुट्टियों पर है। ये एक बहुत इंतज़ार की जाने वाली अवधि है जो छात्रों को कई महीनों की पढ़ाई के बाद आरंभ करने और एक ब्रेक लेने का मौका देती है। खेलकूद, परिवार के साथ समय बिताने और दोस्तों के साथ घूमने फिरने जैसी गतिविधियों के बीच हर कोई अपने खाली समय का आनंद अपनी पसंद के अनुसार ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय पूरे द्वीप में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान जारी रखे हुए है। इस अभियान के तहत आज शनिवार को त्रिबिका की पार्किंग में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये दिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज की स्क्रीनिंग के लिए समर्पित था ताकि लोगों में समय पर जांच और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। ज़्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: डायबिटीज के लिए जांच, मोटापे और ब्लड प्रेशर के लिए भी संतुलित भोजन के लिए सलाह, स्वास्थ्य मंत्रालय की इस पहल ने कई लोगों को आकर्षित किया जिन्होंने शनिवार की सुबह कुछ समय अपनी सेहत के लिए निर्धारित किया। गत साल फाइब्रॉइड के लिए सर्जरी की, मुझे इसका पता नहीं था, अब पहले ही मुआयना करना पसंद करती हूँ ताकि सावधानी बरत सकूँ। अपनी सेहत के लिए सजग हूँ, यहाँ सभी सलाह मुफ्त में प्राप्त हुई, साथ में गर्भाशय के पोलिप और स्तन कैंसर के भी जांच कराए। जांच करानी चाहिए ये जानने के लिए कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज आदि की समस्या है या नहीं, इस तरह सावधानी बरत पाएंगे। ये गैर छूट की बीमारी की जांच का तीसरा सत्र रहा जो स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल पर है। डॉक्टर दाविना सुप्रायन झगड़ू ने कहा, एक ही जगह पर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, खासकर निरोध सेवा, NCD हेल्थ प्रमोशन यूनिट द्वारा मुआयना किया जा रहा है, मुफ्त में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, यूटेरस कैंसर, स्तन कैंसर जैसी बीमारियों के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ यूनिट भी है। गर्भवती होने की इच्छा रखने वाली महिलाओं को सलाह दी जा सकती है। होम रिडक्शन यूनिट भी है। ड्रग्स, अल्कोहल लेने वाले लोग जो अपना पुनर्वास चाहते हैं उनकी भी मदद कर सकते हैं। आने वाले हफ्तों में देश के अन्य इलाकों में भी इस तरह के सत्र लगाए जाएंगे।
0: स्थानीय रचनात्मकता को बढ़ावा देना और हमारे युवा कलाकारों को पेशेवर बनाना पायुत के सौंद फॉर्मेशन आर्टिस्टिक ने आज सुबह फेनिक्स के इंदिरा गांधी इंडियन कल्चरल सेंटर में अपना ओपन डे और प्रमाण पत्र वितरण समारोह आयोजित किया। ये कार्यक्रम विद्यार्थियों की उपलब्धियों और कला की विभिन्न विधाओं में उनके काम को सामने लाने का अवसर था। इस अवसर पर कला और संस्कृति मंत्री महेंद्र गुंडिया, जूनियर मंत्री वेरोनिक ले कोविन और भारत की उप उच्चायुक्त अपर्णा गणेशन भी उपस्थित थे। विदेश में भारत के कॉकरोच प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अपनी हड़ताल खत्म कर दी। ये घोषणा आज शाम सरकार और CJP की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। ये फैसला धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद आया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा CJP की सबसे प्रमुख मांग थी।
1: कॉकरोच जनता पार्टी ने आज अपना विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की घोषणा की और दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद अपने समर्थकों से घर लौटने की अपील की। ये घोषणा आज शाम आयोजित एक संयुक्त सरकार CJP प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई। ये फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आया जो नीट पेपर लीक मामले को लेकर CJP की प्रमुख मांगों में से एक था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में CJP के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष राका, केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी ने सरकार के आश्वासनों पर भरोसा करते हुए और सद्भावना के आधार पर

0: आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि उनकी एक प्रमुख मांग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि छात्रों के खिलाफ दर्ज पुलिस मामलों को वापस लिया जाएगा, भविष्य में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और नीट पेपर लीक मामले के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को नियमों के अनुसार अधिकतम मुआवजा दिया जाएगा।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था, उसका लबोलबाव ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामलों में सख्त प्रावधान और कड़े दंड लागू करने के लिए एक व्यापक विधेयक का मसौदा तैयार किया है।
2: फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं।
0: उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके तहत प्रस्तावित कानून में फर्स्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया जाएगा। इस बीच कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन समाप्त कर दिया है, जो उन्होंने हिंसा के खिलाफ शुरू किया था।
2: थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था, उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।
3: देशी-देशी खबरों के बाद आइए अब मौसम का हाल सुनते हैं।
4: उत्तर पूर्व से आने वाले बादलों का असर आज रात से मौसम पर पड़ने लगेगा। आज रात मौसम अच्छा रहेगा, धीरे धीरे बादल घिरेंगे। उत्तर पूर्व और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 13 से 15 और साहिली इलाकों पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह बादल घिरे रहेंगे, ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। दोपहर बाद को ऊंचे इलाकों और दक्षिण पूर्व में बारिश होगी। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 23 से 25 और साहिली इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर पूर्व की ओर से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। लगुनों के परे समुद्र चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। कल सुबह 6:42 पर सूरज निकलेगा।
3: इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें फैजान और नीतूषा का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
5: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: Jawaharlal Nehru Avenue, Clear, phone number 8.

फिनिक्स में जवाहरलाल नेहरू एवेन्यूक्लियर फोन नंबर एक फिनिक्स में 87 साल के 87 ईयर्स ओल्ड के श्री सुंदत कुनार, श्री सुंदत कुनार जो कुनार नाम से ज़रा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी। अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे, कल दिन के डेढ़ बजे उनके घर जवाहरलाल नेहरू एवेन्यूक्लियर फोन नंबर एक फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले भैया।

मिसिज बीबी रुकाया राजा, मिसिज बीबी रुकाया राजा जो रुकाया नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कुछ ही समय पहले, यानी आज शाम 6:15 बजे, आज शाम 6:15 बजे मागों स्ट्रीट पोर्टवी के ला सोसाइटी अल ईसान से निकाल कर दफनाने के लिए रिश्ते के कब्रस्तान ले जाया जा रहा है। फिनरल टुडे एट 6:15 PM। नंबर 43 एम्पास रॉबर्टसन बोबासामी, नंबर 43 एम्पास रॉबर्टसन बोबासामी 71 साल के, 71 ईयर्स ओल्ड के श्री महेश गोबिन सिंह, श्री महेश गोबिन सिंह जो सुनील नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके घर नंबर 43 एम्पास रॉबर्टसन बबासा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबैल की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। अवनिजन के निधि वाकुआमी, अवनिजन के निधि वाकुआमी 91 साल की, 91 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मीरा आपाजी पैदाइशी नाम गनू और जो मीरा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी बेटी श्रीमती सोबा सुनू के घर अवनु जन के डी वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिर्फ अग्नि वाकुआ की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। रॉय रोड बबासामी 75 साल के, 75 ईयर्स ओल्ड के श्री डॉक्टर विनोद बाल गोबिंद की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल शाम चार बजे रॉय रोड बबासा के लाशा पेलाउदोंट एलियनसन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौन लव्यू की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 4 PM। टैगोर रोड खांगुप में 88 साल की, 81 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती आसमुन तिलुकचंद पैदाइशी नाम गुहा जो कृष्णावती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल सुबह दस बजे उनके बेटे श्री आर्यदत्त तिलुकचंद के घर टैगोर रोड खांगुप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खांगुप की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। कारोलालियन वाकुआमी 65 साल की, 65 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती दनमावती लक्ष्मा पैदाइशी नाम रासुकुल और जो नलिनी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी और जो LIC के एक पूर्व कर्मचारी थी, कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके पति श्री लक्ष्मा शिवचरण के घर का होलालियन वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: Desi Radio, 24 hours a day.
1: सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से कुछ विज्ञप्तियां सुनिए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से कुछ विज्ञप्तियां। वाक्वा और आसपास के रहने वालों को हॉलीवुड नंबर वन, रूट कैंस कॉन्टो नंबर दो, रूट जुवेग, रूट लमारी, रूट बेग, रूट बुनफिन, शुमे रिजर्वोर, दूधी लेन, शुमे लासूस, मोटुलेन और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि 26 जुलाई 2026 को सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। एक और विज्ञप्ति सुन लीजिए। कौशलो शुमे घुनी रिविया दिगाले और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि रविवार 26 जुलाई 2026 को सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। अल्बियों के रहने वालों को सूचित किया जाता है। अल्बियों फॉर गामा अल्बियों बिसेसो पंपिंग पोल्ट्री सैराली मोसलमो बेलव्यू और आसपास के रहने वालों को भी सूचित किया जाता है कि शनिवार 25 जुलाई 2026 को, जी हाँ, शनिवार 25 जुलाई 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच में मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती आ चुकी है और इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्षमा प्रार्थी हैं और बाकी असुविधाओं के लिए भी सीईबी क्षमा प्रार्थी है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: रविवार 26 जुलाई को बोनाकई टेंपल एसोसिएशन तथा अरुल मिगू महा मारियान तिरुकोविल द्वारा कांजी पूजा और काटी पुसाई का आयोजन किया गया है, सुबह के 6 से लेकर दिन के 1 बजे तक।

所收听的是毛里求斯广播电台819频道，你收听的是毛里求斯广播电台819频道。

सभी श्रोताओं को अनीता का करजोर नमन स्वीकार कीजिए। इस क्षण आप रेडियो मोशस की लहरों पर भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम सुन रहे हैं। श्रोताओं, कहा गया है कि सदाचार अर्थात अच्छे व्यवहार से ही धर्म, धन और ऊंच स्थान की प्राप्ति होती है। सदाचार ही मनुष्य के सभी दुर्गुणों का नाश करता है, तो हमेशा सदाचार रहना चाहिए। आइए इसी विचार के साथ हम कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं।

ही श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणिते प्रेयो मंदो योग क्षेमाद वृणिते। अर्थात धीर पुरुष श्रेय का वर्णन करता है जबकि मंद बुद्धि सुख सुविधा और संरक्षण के लिए केवल प्रेय को चुनता है।

प्रियजन, एक श्लोक इस प्रकार है कि नवनीतम घृतम दुग्धम दधि तक्रम च पंचमम सर्वमेक कुला जात

0: पाठक, कहने का तात्पर्य यह है कि दूध, दही, मक्खन, घी और पांचवी छाछ ये सब एक ही कुल में जन्मे हैं। फिर भी सब का मूल्य अलग अलग है। श्रेष्ठता कुल से नहीं अपितु कर्म से प्राप्त होती है।
1: भगवान का दर्शन जीवन को मोक्ष देता है। ईश्वर का दास, पुजारी या भक्त भगवान से दर्शन पाने की इच्छा करुणा व विनती के साथ भक्ति में लीन होकर अधिकार पूर्वक क्यों न करें।

भक्तों, कहा गया है कि जैसे फूल और फल बिना किसी प्रेरणा से स्वतः समय पर उग जाते हैं और समय का अतिक्रमण नहीं करते, उसी प्रकार पहले किए हुए कर्म भी यथा समय ही अपने फल अच्छे अथवा बुरे देते हैं, अर्थात कर्मों का फल अनिवार्य रूप से मिलता है।

श्रोताओं, जो कुछ भी दूसरों के नियंत्रण में है वह दुख है, और जो कुछ भी अपने नियंत्रण अर्थात आत्मवश में है वह सुख है। संक्षेप में यही सुख और दुख का मुख्य लक्षण है। तो इन्हीं विचारों के साथ श्रोताओं, कार्यक्रम समाप्त होने चला है। आपके ध्यान एवं साथ के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ रात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: अऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।

रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जब तक अल्लाह ताला हमारे साथ है, हम कभी अकेले नहीं होते। जो अल्लाह के करीब होते हैं वो कभी अकेले हो ही नहीं सकते, वो हमेशा उनके साथ होता है। मौजूद सामीन, उम्मीद है आप फजल खुदा खैर आफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात महफिल शब रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आइए

इन नुकसानात पर हर किस गमजदा ना हुआ करें, क्योंकि अल्लाह ताला आपसे उस वक्त कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अता ना करे। जो मिल रहा है वही हमारे लिए बेहतर है, बेशक हम नहीं जानते लेकिन देने वाला जानता है। बस खुद को अल्लाह के रास्ते सौंपते फिर चाहती हुई किस्मत देखें। محمد

इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ए सब्र देने वाले, गुनाहों पर पर्दा डालने वाले, हमारे मामलात से आप आगा हैं, हमें भी साबिर बना दें। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्र गुज़ार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में इन सैयदा सुबाई को भी

0: Precious. कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशियस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: भोजपुरी तड़का
3: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
2: भोजपुरी तड़का
4: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला हमर सब कोई श्रोता लोगन के स्वागत करत है रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। चला रात के 9:03 हो गल बा और 11 बजे ले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जे आप सब कोई के बहुते पसंदीदा कार्यक्रम हो। तो चला आज के कार्यक्रम में आप सब कोई के साथ देवत है और रत्ना आप सब कोई संगे जुड़ गल हवन अभी से लेके रात के 11 बजे रहब सब कोई के पसंदीदा गीत चलावे खातिर और जे तोहर मन में कोनो गीत बजता, जे तोरा मन करता कोनो गीत सुने के और जे तोहर हिया बा कोनो ऐसन खास मौका, जन्मदिन रही काहे का और जे तोरा मन में रही कोनो खातिर एगो गीत डेडिकेट करे के और संगे संगे जे तू हल्दी में गल हुआ और परिवार खातिर एगो गीत मांगे के खोजत हुआ तो जरूर हमनी के टेलीफोन करे सकबे 4028085। हाँ हो 4028085 और संगे संगे जे मिसाज विदा करे खोजत हुआ तो 5251-7005 चला हाली हाली जुड़ जाइए हमर संगे और ये ऐसन ठंडा करता तब मोल तो तरे ढूक के तनी गर्मा गर्म काफी पीते आरी ने तो चाय पीते और आजकल तो बहुत कोई लोग ग्रीन टी पिएला। चला सेहत के ध्यान रखिए और मजेदार गीत संगे जुड़ जाइए भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रत्ना संगे और चला शुरू करब जा आज के है पहला गीत और जो पहला गीत है भोजपुरी बाजा बाजे बॉयज एल्बम से लेवल गए

भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जलसा के संगे जुड़ गल हवन हमन हमनी के सब कोई श्रोता लोगन और हईजा पर रिहाना साथ देवत हवन हमनी के फेनिक्स बगल से। तो चला मिसास तू विदा करे सकबा सेकंदे सेकोतियन स्वासंजी जेहो सेक पर और टेलीफोने करे सकबा 4028085 पर। चला आगे बढ़ब जा और हमनी के संगे जुड़ गल हवन छोटी पोलो जे से साथ देवत हवन और भाई आत्मा राम जे तनी मलाद हो गल हवन अभी लोपिताल में हवन पर भोजपुरी तड़का के वो बहुते खुशी रहेलन। तो चला अगला गीत करब जा उनकर खातिन और छोटी ही घाई गीत मंगले हवन।

दीदी ललिता खातिन जे त्रियोले से हमनी के हमेशा साथ देवेलन दादी प्रभावती और हरीश भैया खातिन जे बुबासे से साथ देवेलन। तो चला साथ देते रहिए बसंत सुपोल के आवाज में रखल अगला गीत करब जाए इन सब कोई खातिन और साथ देते खुशियाली के साथ आगे बढ़ब जा चचा चाची के किस्सा। जाने ल है महंगा के जमाना में चाची कौन ची बोले हमर चचा के बहुत परेशान करे ल हमनी के हमर चचा के बोले अहो सुनत हव जे तू हमनी के गो हीरा के हार लेके देब तो हम तोहरा वादा करत हई तोहर से सात जन्म ले प्यार करब। तो चचा भाली से फट से बोले देख तोरा हीरा के हार खाली नहीं हीरा के कंगन भी लेके देवब लेकिन हाई जोन प्यार व्यार के बात है ना हाई ये जन्म ले रखिया सात जन्म ले हमनी के बहुत पाशांस नहीं बा।

भोजपुरी तड़का। भोजपुरी दड़का कार्यक्रम और चल सब कोई आतान करता कि चचा गजोधर कौन कांड करता हुआ। हाँ बताओ अब तो अभी थोड़ा घड़ी में और ही चला अगला गीत जो ना है बढ़िया सन गीत बसंत सुपोल के आवाज में रखल है गीत और मजेदार गीत के बाद सुनब जाएगो और ही बढ़िया गीत। और अगला जो गीत है रिहाना हमनी के बोले तनी बड़ की मसाला पिसेला है गीत वह हमार खातिन चला द हो काहे नहीं हो ठंडा के मौसम में गर्मा गर्म मसाला और चाय के मसाला तनी चाय में डाल के पिए के नहीं हो हाउ काही के मसाला चाय में नहीं डलिया चाय के मसाला दूसर रहेला इलायची होला गर्मा गर्म चाय पिए के बहुत मजा लगेला ठंडा के मौसम में तनी गर्मा गर्म चाय के चुस्की मारते मारते भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के आनंद लिया जा और 11 बजे ले सब कोई के साथ देव जाता चला हैजा पर 9:19 हो गल बा और का बोलब चचा गजोधर के कमाल चला रिहाना जी है गीतवा तोहर खातिन जरूर चलाओ अब जा कृष हृदय की आवाज में रखल है अगला गीत तोहर खातिन तोहर सब परिवार खातिन और जाने ल चचा त खिसिया गल नई किन के देलंग हरवा त चाची तनी मलाद मलाद हो गल त कौन दिन लोपिताल गल रहल चाची त जैसे लोपिताल से आल त चचा बोले हाँ कौन सी बोल दोक्तियावा बोले हाँ दोक्तिया बोल देले बा हमनी के पथरी हो गल बा हमनी के लेगा में तनी पिया हो गा बा बोले अरे कैसे बोले याद बा उ दिन तोरा हम बोलले रहली हमर खातिन हार कीन दिया जब तू नहीं कीन के देलक तो हम अपन दिल पे पत्थर रख लेनी बुझाता है पत्थर घिसक घसक के घसक घसक के हमर लेगे में ढुक गल है ऐसे हमनी के पथरी हो गल बोले बैल बुद्धि पथरी ऐसे नहीं होला हो पानी पिए के चाहिला जस्ती तू हमार कपार पियत हवा हमार खून पियत हवा हैये से तोहरा पथरी हो गल बा।

भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में फेरो से आप सबको के स्वागत बा। और लाजवाब गीत संगे आप सबको हमनी के बहुत प्यार से साथ देवत हवा, बहुत बहुत धन्यवाद है जापर सुदेवी जी हमनी के साथ जुड़ गल हवन वाकवा बगल से। और वाकवा देने से हमनी के बोले है एगो बढ़िया गीत चला दा हमार खास कर दीदी ललिता खातिन जे कुशल परिवार से हवन त्रियोले है आत्माराम दीदी सुनीता शोभा देवीना माला और मालेगा से हवन सब राम रतन परिवार। और ऊ गीत के मांग कले हवन बैगन बागी में कुणाल बाबूलाल के आवाज में। तो चला है चलाओ अब जा है बढ़िया संगीत तोहर खातिन। और हाइजा पर सुनीता जी भी हमनी के साथ देवत हवन गाँव गो बगल से। उनकर चार गो बहिन विमला जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन कोंगो माँ से। बहिन अमृता हवन गाँव गोब से और गुडलैंड बगल से हवन वीना जी और गाँव गोब से सुनीता जी हमनी के साथ देवत हवन। तो चला है बढ़िया गीत तोहरों खातिन भी चलावत है। और हाइजा पर मेविन बगल से मेविन एगो बढ़िया संगीत के मांग कल हवन उनकर खास संगतिया जानवी खातिन जे बुनतिया से हमनी के अभी सुनत हवन। तो चला जानवी जी तोहर खातिन है बढ़िया गीत चलावत है। और आज तामदी के रात है जलसा के रात है तो मजेदार गीत संगे कुणाल बाबूलाल के आवाज में रखल है गीत तोहर खातिन करब जा। आउरी जाने ल हमर जोन चचा ह ओकरा जाबे धर ले ले बा और इसलमा कोई के बात नहीं सुनेला। कौन दिन डोकतिया हिया गल तो डोकतिया बोले हाँ चचा जी कितना मीठा खात हो हई देखा तोरा जाबे हो गल बा। बोले कितना मीठा खाला बोला था बोले कुछो नहीं दिन में दू गो लड्डू हम खा लेला बड़का लड्डू हमर

हमर बुढ़िया बनावेलन सब बहुत मजेदार लड्डू, तो बस खाली एगो फजीर के और एगो सांझ के। बोले चचा जी है अच्छा नहीं है तोहर खातिर इतना मिठाई नहीं खाई के इतना बड़का बड़का लड्डू काहे खात हुआ। बोले चला माफ कर दिया डॉक्टर जी, बड़का लड्डू नहीं खाब, दूगो छोटा छोटा लड्डू खाब, उतना तो ठीक बा ना, उतना तो पेमिशन दे दिया हमी के। बोले अरे बड़का लड्डू नहीं खाई के मना करत है, तू बोला था दूगो छोटा लड्डू खेब तो पारे नहीं हो गल, कैसे समझाव भोज चचा।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम बिजमावती संपत की आवाज में रखल हाई गीत अभी हम सुन ली जा और चला आगे बढ़ब से एगो बढ़िया गीत चाची ललिता कुशल खातिन चलाओ अब जा त्रियोले से वो हमनी के सुनत हवन और अगला गीत जोन है उनकर सब कोई बहिन लोग सुदेवी देवीना ज्ञानी संगे हवन दीदी छोटी दादी प्रभावती साथ हवन भाई आत्मा राम और भाई हरीश खातिन माला राम जावन और सुखलाल मौसी और संगे हवन आज उनकर तीन गो नातिन आयुषी आलिया आलीना तो चला चलाओ अब जा है तीन गो गुड़िया खातिर बढ़िया सा गीत और संभावती दुमन के आवाज में रखल है गीत चाची ललिता पसंद कर ले हवन तो जरूर चलाओ अब जा है अगला गीत औरी जाने ल हमर चचा के त जब कबो बोले लन सका जानी हमनी के बोले जाने ल है दुनिया में सबसे बड़का जादू कौन है कौन ची कौन कौन कौन जादू सबसे बड़ा जादू है। हम बोली नहीं चाचा हम जब छोटा रही तब एगो जादू के शो देखले रही हाउ ऐसे पकड़ के आँख में पट्टी बांध के ऐसे कूतो फेंके का जनी कैसे उकरा तो तन को लौके नहीं और ऐसे ऐसे जादू हम देखले बोले नहीं हो है तो सब कोई देखले बा एकर से भी बड़का जादू। हम बोले नहीं चाचा तू तो सबसे ज्ञानी आदमी हवा तू ही बता दे हमनी के बोले सबसे बड़का जादू चलेला ब्यूटी पार्लर में एगो करिया औरत चल जाई हो जा एगो करिया महिला ढुकी हो जा पर तो कैसे गोरा गोरा अप्सरा बन के निकली

बहुत जादू और जब रात के मान लो एगो दुलिन के पारे कर देले हवन और दुलन दुलिन सूते के आगे जब अपन चेहरा जाके धोई तो ओकर आदमी के दिल पे कौन ची गुजरी कबो सोचले हवा हार्ट अटैक से मर जाए आदमी का हो चाचा डिड़ावत हवा सब कोई के।

चलो 9:42 हो गल बा और मजेदार भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और बढ़िया बढ़िया गीत जे तू चुन के अनले हवा हमर खातिन और हम तो चलावत है हैजा पर नाचत है तनी थपरी बजावत है तोहर संगे संगे और चला हैजा पर हमनी के प्यारी चाची शांता सुखागी भी।

जुड़ गल हवन से जमील फोरे साइड से उसाथ देवत हवन और वो भी बहुत खुशी हवन भोजपुरी गीत सुने के और ये बोले से जमील फोरे साइड तब बुझाला को मजा कैसे बोल बा पोल नो हो गल बा इतना ठंडा इतना पानी बरसे हो जा तो तनी तोप ताप के रहिए तनी सोसे तर तनी पोलो डाल के रहिए काहे के ऐसन मौसम में खोकी धरे के देरी नहीं लगेला हो और अदरक के चाय पीते रहिए। तो चला आज के कार्यक्रम में हमनी के चाची बोले विनोद सिंह उदत के हौ गीतवा तनी चला द संगत कर जान के तो जरूर चलावब जा चाची विनोद सिंह उदत के आवाज में रखल है अगला गीत तोहर खातिन चलावत हई और हई गीत तोहर पतो किरण खातिन तोहर चार गो बेटा सुदेश गाविन सुजीत और अशोक खातिन और नाती हवन भावेश नातिन संजना और सब सुकाही परिवार खातिन और जाने लागिप के पिक्य कराई खातिन हमर जुन चाची है का बोलब इतना बड़का बड़का पालतो डाल देले बात कैसे कहाँ से पिक्य करी तो कौन दिन चाचा के बोले हाँ हम जाब एगो नवा लुगा किने तो दुकान में जाके हौ आदमी के बोले भैया एगो बढ़िया हमनी के चोली बतावा अरे नहीं तो एगो अच्छा सन कुर्ती बतावा जे किमोनो बा तो दुकानदार बोले चाची कौन कौन लोकाजियो खातिन एगो फियोसाई बा या शादी बा या चौथारी खातिन बोले नाय हो बुड़बक हमनी के पिकिया कराई के बा हये खातिन अब बोला था चाची पिकिया कराई खातिन नवा लुगा किन के समझाई है बुढ़िया की

0: भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और ही चला आगे बढ़ब सा। और अगला जोन गीत है गायत्री जी खातिन चलाओ अब जा है गीत है लागी ना ही छूटे राम नोबेल फोन से उस साथ देवत हवन हमनी के बेटा आ जाए हवन मामी कल्याणी मोहन और उनकर भौजी हवन शकुंतला मोताई लोंग से और खास सखी गीता बाई खातिन जे हमनी के हमेशा बहुत प्यार से साथ है देते रहेलन। औरी चचा कौन दिन चल गल शिवाला। अब शिवाला में पूजा करत हवन। अब पूजा करते करते करते करते का जनी ओकर कपार में कहां से ऐसन सवाल चला। तो हौजा जन पंडित जी रहल पंडित जी से बोले पंडित जी एगो मन में बहुत एगो सवाल आवता। तब पंडित जी बोले हाँ चाचा जी बोला कौन सवाल आवता। बोले जाने ला पंडित जी आज तो दुनिया भर में जहाँ देख महिला लोग बहुत काम करेलन सब बहुत आगे बढ़ गल हवन और जोन पहला पुरुष काम करत रहलन वो काम आज महिला भी करता। अभी जैसे कोंथो ले के काम करता सोफिया बीस के काम करता लाबोंक में काम करता अरे है का लोपिताल में काम करता दोकिया के काम करता और चांद पर चल गल हवन हो आवियों सब चलावता। तब पंडित जी तनी खिसिया गल। पंडित जी बोले कौन सवाल है सवाल बोला फजेरे फजेरे हमर कपार नहीं खाली कर। बोले तो हाँ ये पूछा था पंडित जी कि आज ले मंदिर में पंडित के काम काहे महिला नहीं करेला। बोले ओ बुड़बक जे पंडित के काम महिला करी तो आदमी लोग भगवान के नहीं खाली पंडित के देखी समझ गए ला। आइए खातिन तेहर तोहर नियर बेफजूल के सवाल करते रही पुनारिये के पूजा में ध्यान लगावो। अरे गीत सुना

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चलन 9:54 हो गल बा और ये भी पीती मामा में 10 बज जाए और जरूर कार्यक्रम तो जारी रही रात के 11 बजे ले तो चला है जा पर हमने के साथ देवत हवन फुलवंती जी बाकवा बगल से और उनकर पति हवन देवानंद बेटी उभावना बेटा उषा नीता जी भी हमने के संगे जुड़ गल हवन सेंट जूलिया विलास बगल से बोले हरदी से आवत हई और प्रोग्राम में भाग लेवत हई बहुत अच्छा कार्यक्रम चला साथ देते रहिए जा है जा प्यार से और स्वादिका जी तो खास संगतिया जे बिलवेदिया से हमनी के हमेशा साथ देवेलन और सब खेदनी परिवार खाती नाम जोड़त हैं और अगला गीत जो है भाई आबू के पसंद पर चलाओ अब जा भाई आबू हमनी के संगे जुड़ गल हवन संगे हवन उनकर बेगम आफेज असलम आया जायान जहीरा रईस खाला छोटी और उनकर भगिनी हवन रकीबा जे तनी उनका तबीयत तनी अच्छा नहीं बा और बिल्कुल चला दुआ करब जा उनकर खातिर और उनकर खास संगतिया हवन आपी और उनकर पत्नी और खाला छोटी खातिन अगला गीत चलाओ अब जा विक्रम कोलाचन के आवाज में धोती पोथी पगड़ी और जन हमर चचा हवन शिवाला जाके पंडित जी से हमेशा अपन दुखड़ा रोईते रहेला त जाने ल बाबाजी कौन ची बोले अच्छा बताओ तोरा कौन ची चाही चचा बोले पैसा तला दे बोले पैसा के बाजू में रखा पहला हई बोला तोरा कौन चीज चाहिए तो चचा बोले बाजू में रखल पैसा

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: कभी सोचा है
2: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
2: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ, तो फिर ये है आपका मौका।
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
2: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
2: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस,
2: डोंट मिस इट।
3: भोजपुरी तड़का।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रात के 10:05 हो गलवा और साथ देवा अपना 11 लिए और मजेदार कार्यक्रम के संगे हैजा पर हमने के साथ देवा धवन साजिद जी रोजिल बगल से और आज बहुत ही खुशी हवन एगो बढ़िया गीत सुने के उनकर खास संगत या हवन दीना सरोवर जे विदेश से हमने के साथ देवत हवन और कुणाल बाबूलाल के हये गीत करब जा भाई माहिन खातिन जे हमने के संगे साथ देवत हवन और उनकर सब जगमोहन परिवार खातिन और भोजपुरी गीत के जो प्रेमी हवन उन सब कोई खातिन हये गीत करब जा खासकर दीदी मान खातिन तो चला बस प्यार से साथ देते रहिए जा सुनते रहिए जा औरी का बोल अब ठंडा जितना करता औरी जाने ला हमर जोन पप्पू भैया हा एगो ऐसन आदत लगल बा ओकरा धूम्रपान करे के सिगारेट जितना पिएला तो ओकरा दोखतिया हिया लेके गल चाचा अब जब दोखतिया हिया लेके गल तो चाचा बोले दोखतिया ओकरा बोले कि देखा ओकरा योगा करैया योगा अच्छा बा फजीर के उठ के ओकरा तनी योगा करैया और जाने ला हो रामदेव जी के शिविर फजीरे फजीरे टेलीविजन में मिलेला जहाँ पर बतलावेला कैसे योगा करे के और एक महीना तो इतना निमन से योगा करलन पप्पू भैया जाने ला नाई हो कहाँ सिगारेट छोड़क पहला तो हाथ से सिगारेट पियत रहलन अब जब से योगा करता टंगड़ी उठा के अपन टांग से सिगारेट फूके के शुरू कर देलक बोला था हमनी के बतलावे अपन टंगड़ी में सिगारेट ढुका के फूके लन सब कैसे समझावा पप्पू भैया के

भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 10:10 और मजेदार गीत के संगे चला है। जा पर जन्मदिन मनाई मनयन रानीश जी और 27 तारीख के ओकर जन्मदिन बा, यानी लेंदी के वो अपन जन्मदिन मनयन, और उनकर पत्नी हवन अनुषा, संगे हवन दूगो बेटी मितिशा और गिरिशा, और साथ देवत हवन उनकर बेटा हितांशु, भैया हवन निवेश और पत्नी हवन उर्वशी, और दूगो लयका पुष्कल और भव्या, और पुपू मानती उनकरा बहुत बहुत प्यार से आशीर्वाद देवत हवन, पापा आनंद हवन और पुपू अनंती और पुपू आरती के ओर से रानीश जी के बहुत बहुत जन्मदिन के बधाई देवत हवन। और चला अगला गीत हमर थीम देने से, तोहर खातिन चलाव जा, और हई गीत है जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई तोरा बोलब जा, और बस जन्मदिन जब आवेला त एगो बहुत खास अवसर हो जाला, और बस सब कोई आशीर्वाद देवेला, त हम भी हये बोलब जा, तू हमेशा स्वस्थ रहिय, खुश रहिय, अपन परिवार के संगे निमन से जीवन बितैया, और हई गीत हमारी टीम देने से

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
1: भोजपुरी
0: भोजपुरी
1: तड़का
0: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चला हाई जा पर हमनी के संगे जुड़ गल हवन माहिन जी और साथ

जहाँ पर राजन जी भी हमने के साथ देवत हवन, राजन लक्ष्मण लाफलोगा से उस संगे जुड़ गल हवन। और अगला गीत जो न चलाओ अब जाओ उनकर प्यारी पत्नी माला, दूगो बेटी हवन प्रार्थना और प्रगति, बहिन मानती और संगे हवन उनकर भगिनी उर्मिला तुलसी खातिन और सब लक्ष्मण परिवार जी हमने के अभी साथ देवत हवन। हंसते मुस्कुराते बस जुड़ल रही अभिमन्यु हरपाल के आवाज में रखल है अगला गीत चलाओ अब जा तो हर खातिन। और का बोला हमर जोन चचा है ऐसे उदास कौन दिन ऐसे कपार पे हाथ रख के तेरास पर बैठल रहल। तो हम बोली कौन जी होल चचा काहे ऐसन मुँह लटका के बैठल हव। बोले हाँ जीवन भर हम एक गो सपना देखले रहली। हम बोली कौन सपना। बोले एगो दिन जाके पहाड़ी में घूमब, एगो हौ हिमालय चल जाब, तनी लानेस देखब, तनी घूमब। पर जैसन हालात हो गल बा बुझाता जाके पहाड़ी के जा ऊपर जाके कूद जाब, कूद जाए के मन करता। बोली काहे ऐसे बोलब। बोले बहुत महंगाई बढ़ गल बा, कहाँ जाब हम पहाड़ी में घूमे। बुझाता पहाड़ी के ऊपर जाके कूदे के और जान दे के। का हो चचा ऐसन बात करत हुआ, देखा चल जाइए तनी क्योंपी बगल चल जाई जा। हौजा पर जितना ठंडा करता ना थोड़ा बुझाई जैसे लानेज चलता। चला देखा है बहुत मजेदार गीत चलता है, सुना हो।

0: भोजपुरी तड़का
1: मजेदार कार्यक्रम 10:22 हो गल बा और हईजा पर रतन भैया हमनी के संगे जुड़ गल हवन गांव बे बगल से उनकर पत्नी हवन करुणा और सब परिवार संगे वो हमनी के साथ देवत हवन त चला करुणा हमनी के बोले बीच सीमा में

तब पप्पू भैया कोन दिन लाबोंक लाबोंक में मैनेजर के जाके बोले ओकरा मन बात जॉइंट अकाउंट खोले के। तब बैंक मैनेजर बोले अच्छा बात है तो केकर संगी खोलब। बोले हाँ जोन मर्जी जेकर जेकर अकाउंट में जस्ती से जस्ती पैसा रही ओकर ओकर अकाउंट में हमर नाम भी संगे जोड़ द। बोले अरे बुढ़बा कैसे नहीं होला जॉइंट अकाउंट हो, तो हर परिवार के कोनो व्यक्ति रही तो दोनों जन संगे मिल के जॉइंट अकाउंट खोले सकब, ऐसे कोई कोई के भी अकाउंट में तोहर नाम नहीं जोड़े सकब। बुढ़बा आदमी

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम संगे चला है जा पर लागे ना ही छूटे राम के एगो बढ़िया गीत है और है गीत जो है श्यामा जी के मांग पर चलावत है। श्यामा रघुनंदन जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन घोंगो बगल से उनकर सब परिवार रघुनंदन परिवार खातिर भैया हवन जय प्रकाश भौजी नम्रता केशव और युधीश और साथ देवत हवन उनकर खास सखी वीना रामफल और विश्वानी जी तो चला चलाओ अब जा है अगला गीत उनकर खातिन खास करके

0: आज है भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चला है जहाँ पर अनीता जी फ्लिक ऑफ फ्लाग बगल से हमनी के साथ देवत हवन और उनकर पति हवन राज बेटा आंतिश और साथ अंग हवन अंकुश पतो हवन मनीषा और अशीमा और उनकर नातिन हवन हिमेश और आध्या नाती हवन आंच और सब रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस के टीम खातिन अगला गीत के मांग करत हवन सोना नोयन के आवाज में रखल है अगला गीत जरूर चलाओ अब जाओ उनकर खातिन उनकर सब परिवार खातिन और हमनी के पप्पू भैया त अधा बुड़बक के बुड़बक हवन काहे के जाने ल हमनी के बोले आज टू यू के बर्थडे है टू यू भैया भैया जोन है ओकर जन्मदिन है बोले कौन टू यू बोले हाँ वो जोन हमर पड़ोस में रहेलन सर टू यू भैया बोले हाई कौन कली थे के नाम है बोले हाँ हम सुनले हाई सब कोई ओकरा बोला था हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू तो हम बोलने अरे बुड़बक पप्पू भैया का बोला था वह टू यू मन मतलब उनकरा सब कोई हैप्पी बर्थडे बोला था वन है ये से ओकरा टू यू बोला था टू यू ओकर नाम नहीं हो बोले अच्छा हम तो सोच ली टू यू ओकर नाम हो पप्पू भैया है ये से तो कब से बोला था तनी लेकोल जाइया तनी पढ़िया तनी शिक्षा ग्रहण करिया हो तो नाम बहुत चुन के रख दिले हवन कोई नो

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम बहुत मजेदार कार्यक्रम और चला है, जहाँ पर हमनी के संगे जुड़ गल हवन सब नेमन परिवार वैष्णवा बगल से। खासकर धनंजय नेमन जी हवन, उनकर पत्नी नीला और साथ हवन उनकर बेटा नवीन, पतो हवन पूनम, बेटी हवन सुनीता और सब नाती पोती, उनकर नातिन हवन कृषि, नाती हवन कृषि और नातिन हवन कीर्ति। तो चला अगला गीत मांग कर ले हवन, सुना नयन और बसंत सुपल की आवाज में रखल है लाखोश। तो चला है ये लाखोश निमन परिवार खातिन, जे खुशनुआ बगल से हमने के साथ देवत हवन उनकर खातिन चलाओ आप जा।

0: मेमोरी हॉल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का,
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के समाप्त करेंगे। समय हो गल रात के 10:55 और आज के कार्यक्रम के है आखिरी गीत नीरज गुप्त मधु। और हाँ, ये गीत के साथ आज के कार्यक्रम के हाई चाप पर फुल स्टॉप लगाओ अब सर। तो चलो आशा कर अब सर कि आज के हाई कार्यक्रम तोरा बहुत अच्छा बुझा और जीवन में हमेशा हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, फेरों से साथ देव अब जाएगो और बढ़िया कार्यक्रम संगे आवत सामदी के रात के 9 से लेके 11 ले। उसे तो देख बता रोज रात के 9 से 11 भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चलते रहेला और तोहर मनोरंजन रोज रात के रेडियो मनोरंजन और रेडियो मनोरंजन के साथ साथ रेडियो मॉरिशस पर भी होते रहेला। तो हम तोहर से भेंट करब आवत सामदी के। चले एकर संगे अपन पूरा ख्याल रखिया, हंसते रहिया मुस्कुराते रहिया और रत्ना को रत्ना के अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि सब कोई के। चला हमर बाद आवता नीतुषा सुनहरे पल कार्यक्रम के लेके रात के 11 से 12 के बीच उनका प्यार से साथ दीजिएगा और हमें दीजिए अनुमति।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: आप सबका हार्दिक अभिवादन, स्वागत है श्रोताओं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। इस समय आप सुनहरे पल कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, तो स्वीकार करें नितोषा का कर जोड़ प्रणाम। आज किन के बारे में बात करेंगे, किन की दुनिया में आपको ले चलेंगे? बहुत बड़े फैन हैं आप इनके, इनका नाम है देव आनंद। जितने भी गाने, जितने भी फिल्मों में उन्होंने काम किया है वो सब अविस्मरणीय, एवरग्रीन है। इसीलिए आज की इस रात को और खूबसूरत बनाते हुए यादों की दुनिया में एक बार फिर आपको ले चले हैं।
1: अभी न जाओ छोड़ कर

देव आनंद सिर्फ एक एक्टर का नाम नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के ऐसे युग का प्रतीक है जहां स्टाइल, रोमांस, ऑप्टिमिज्म और इंटेलेक्चुअल चार्म एक साथ स्क्रीन पर जिंदा होते थे। उनका असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। 26 सितंबर 1923 को उनका जन्म शकरगढ़ अब पाकिस्तान में हुआ था। बंटवारा के बाद उनका परिवार भारत आ गया और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो सिनेमा के इतिहास में अमर हो गई।

देवानंद ने अपनी पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इंग्लिश लिटरेचर में की। शुरुआत में उनका सपना फिल्म से जुड़ा नहीं था, लेकिन बॉम्बे आने के बाद उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। उन्होंने पहले मिलिट्री सेंसर ऑफिस में काम किया, लेकिन सिनेमा का जुनून उन्हें स्क्रीन की तरफ खींच लाया।

1946 में फिल्म हम एक है से उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, लेकिन उन्हें पहचान मिली 1948 की फिल्म जिद्दी से। इस फिल्म की सफलता के बाद देवानंद का करियर उड़ान भरने लगा। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक, चेहरे पर हमेशा एक कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट और आवाज में यूथफुलनेस थी।

देवानंद ने अपने भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर नवकेतन फिल्म्स की स्थापना की। यहीं से हिंदी सिनेमा को मिले कुछ यादगार और बोल्ड फिल्म्स, बाजी, जाल, टैक्सी ड्राइवर, सीआईडी, गाइड, जुअल थीफ, जॉनी मेरा नाम। ये सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि ट्रेंड सेटर्स भी थी। 1965 की फिल्म गाइड देवानंद के करियर का शिखर मानी जाती है। राजू गाइड का किरदार उनकी एक्टिंग का बेहतरीन उदाहरण है। एक फ्लोट इंसान जो अपनी गलतियों से सीखता है। ये रोल उनके एक्टिंग रेंज को पूरी तरह दर्शाता है।

0: जाएगा।
1: देवानंद की एक्टिंग का अंदाज बिल्कुल अलग था। थोड़ा तेज बोलना, डायलॉग डिलीवरी में फ्लो, हमेशा चलती हुई बॉडी लैंग्वेज, आंखों से रोमांस और कॉन्फिडेंस। उन्होंने कभी ड्रामेटिक ओवर एक्टिंग नहीं की। उनका चार्म नेचुरल था। वो हीरो होने की दावा नहीं करते थे, वो बस हीरो लगते थे।

देवानंद अपने दौर के सबसे बड़े स्टाइल आइकॉन्स में से एक थे। स्कार्फ को गले में लपेटना, जैकेट और कैप का अंदाज, साइड प्रोफाइल में कैमरा से बात करना। कहा जाता है कि उनके नेक मूवमेंट और स्कर्व स्टाइल की वजह से एक समय उन पर क्लोजअप शॉट्स लेने पर भी पाबंदी लगाई गई थी, क्योंकि लड़कियां उन पर दीवानी हो जाती थी।

देव आनंद ने स्क्रीन पर रोमांस को क्लासी और रिस्पेक्टेबल बनाया। उनकी जोड़ी सुरैया, वहीदा रहमान, कल्पना कार्तिक, साधना, आशा पारेख जैसी एक्ट्रेसेस के साथ बेहद मशहूर थी। उनका प्यार हमेशा आंखों और मुस्कुराहट से बयां होता था।

वैसे देवानंद सिर्फ एक्टर ही नहीं थे बल्कि डायरेक्टर और राइटर भी थे। उन्होंने कई फिल्में डायरेक्ट की और लिखी जिनमें सोशल इश्यूज, यूथ प्रॉब्लम्स और पॉलिटिकल थॉट्स भी शामिल थे। उन्होंने हमेशा नए लोगों को मौका दिया, चाहे वो गुरुदत्त, आरजी बर्मन, किशोर कुमार या जीना तमान हो। देवानंद जिंदगी भर पॉजिटिव रहे। बुढ़ापे में भी उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। उनका मानना था कि जब तक सपने जिंदा हैं, तब तक जिंदगी जिंदा है। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड जैसे सम्मान मिले। 3 दिसंबर 2011 को लंदन में उनका निधन हुआ, लेकिन देवानंद कभी गया ही नहीं। वो अपनी फिल्मों, गीतों और अंदाज के जरिए आज भी जिंदा है। वे हिंदी सिनेमा के वो सितारे हैं जो कभी फेड नहीं हुए। उनकी फिल्में देखकर आज भी लगता है कि जिंदगी खूबसूरत है, प्यार सच्चा हो सकता है और सपने पूरे किए जा सकते हैं, क्योंकि देवानंद नाम ही काफी है स्टाइल, चार्म और इटर्नल यूथ का। प्रणाम, शुभ रात्रि।

मन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल का

ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम, देखो देखो देखो।